सुप्रभात, ये आकाशवाणी का चाय बसा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948, श्रावण माह की तिथि 10, तदनुसार अगस्त 1, ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: अभी आप सुन रहे थे, आइए अब सुनते हैं
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सबके साथ ये वीविन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion towards misguided youth who have gone astray, saying that they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in national capital where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode had been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in society over such conduct were understandable, childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them.
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है. एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है. उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे. मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं. समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे. मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े. देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है.
4: Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. Mr. Modi will first travel to Andhra Pradesh, where he will lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation multiple development projects worth nearly 18,000 crore rupees at Bhogapuram in Vizianagaram district. The Prime

अपने स्वामी के साथ रहकर वन प्रवास के सारे कष्ट सीता जी की कल्पना में उस पीड़ा से कम दुखदायी होंगे जो पति के वियोग में अयोध्या में झेलनी होगी। यदि श्री राम से 14 वर्षों तक अलग उन्हें अयोध्या में रखा गया तो निश्चित ही वो जीवित नहीं रह सकेंगी। भला स्वामी को वनवास का कठिन जीवन और उन्हें राजमहलों का भोग विलास उचित है? सीता जी ने अत्यधिक व्याकुल होकर ये वचन कहे। पति वियोग की वो कल्पना तक नहीं कर सकती। सीता जी की विकलता देख श्री राम का ये विचार दृढ़ हो गया कि हठ पूर्वक उन्हें अयोध्या में छोड़ देने से वो जीवित नहीं रह सकेंगी। अतः उन्होंने सीता जी को विषाद भूलकर वन प्रस्थान के लिए तैयार हो जाने की अनुमति दे दी। माता के चरण छूकर श्री राम ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पुत्र को कातर नेत्रों से देखते हुए माता अधीर हो गईं। जब सीता जी ने सास के चरण छुए तो उन्हें हृदय से लगाकर सास ने आशीष दिया, जब तक गंगा जमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थी अनुराधा पौडवाल। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। सबसे पहले आपको सुनाते हैं सुमन कल्याणपुर के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण अनुराधा पौडवाल के स्वर में। आइए अब सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ देर बाद यानी कि सुबह के 6:45 का समय होगा सुगम संगीत का। आप सुनेंगे आनंद मोहन पाठक के स्वर में। सुबह के 7 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाय वसा का। सुबह 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से ही सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार सुबह के 8:15 पर। सुबह 8:30 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। सुबह के 8:40 का समय होगा लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे संथाली लोकगीत। सुबह के 9 का समय होगा कार्यक्रम विविधा का। सुबह 9:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। सुबह 10 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह के 10:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर के 1:10 पर आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का प्रसारण होगा दोपहर के 1:20 पर। दोपहर के 2:55 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। 3 आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 3:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। शाम के 4 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम के 4:02 पर। 5 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से।

शाम के 5:02 का समय होगा कार्यक्रम विवरण का। 5:05 का समय होगा कार्यक्रम गुलदस्ता का, जिसमें आज आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। शाम के 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 6:02 का समय होगा बांग्ला कार्यक्रम सातरंग का। शाम के 6:30 का समय होगा आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम। शाम के 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची से सुनेंगे जिले में आजकल। शाम के 7:15 का समय होगा श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। शाम के 7:30 का समय होगा किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा वर्षा जल का समुचित प्रयोग। उसके बाद आप सुनेंगे होलोगीत बाबूराम सोई और साथी को। मौसम की जानकारी के बाद आप सुनेंगे भेंटवार्ता। रात्रि के 8:00 सुनेंगे इस सप्ताह संसद में आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि के 8:15 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि के 8:45 का समय होगा समाचार संध्या का आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 9:00। रात्रि के 9:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। रात्रि के 10:00 आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि के 10:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 11:05 पर। और रात्रि के 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब हम सुनते हैं सुगम संगीत आनंद मोहन पाठक के स्वर में।

कोई सच डरा

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत आनंद मोहन पाठक के स्वर में। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है। पेश है कार्यक्रम जोहार चायबासा। कार्यक्रम जोहार चायबासा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के गीत से, लता मंगेशकर के स्वर में।

अभी आपने सुना फिल्म राजकुमार का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म रजनीगंधा से लता मंगेशकर के स्वर में।

0: अभी आपने सुना फिल्म दूसरा आदमी का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चाईबासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। आइए अब सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: आले नवागे नेहर में ना बले नवा नुकान परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहेगी आम बले

0: मेरा
1: नाम मंगलोर राय को गांव बारगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउका कहाँ बना है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
2: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आई में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए है
3: ये तुम लोग बुरंग सिंह तमसा है अनिता तमसा है भरुपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आया यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा निका
4: अन्य न तुम लोग बुंबई कोड़ा पटन तुम घूमते कोड़ा अन्य हम लोग कोदमरी कोड़ा लो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने में बुरी ने बागिया तो कि दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमा दुर्गम गई यहाँ तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
5: अलिंग मुनि सुरेन तो ऐसे आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिटा हुरा इनका अले आया न तुम कहीं ना मिले आप ही लेता ना
6: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
7: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
8: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
7: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
8: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
7: डायल कीजिए 8700014242।
8: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
9: इस संदेश के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत मोहम्मद रफी के स्वर में। फिल्म का नाम है दोस्ताना।

भास्कर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल है कि मानता नहीं से, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजों में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहर चायवासा। ये आकाशवाणी का चायवासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।

0: यार सच अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्य निष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
3: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
2: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
5: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
2: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
6: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल sec.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथा कथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। जैगथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
3: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं।
5: लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते दो गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोक सत्ता में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for compassion and guidance for misguided youth. Says hatred and abuse never solve anything. President gives assent to anti-paper leak bill, introducing stricter punishment and setting up of fast-track courts. Prime Minister to launch multiple development projects in Andhra Pradesh and Karnataka today. India raises concerns over ongoing hostilities in West Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis. And at Commonwealth Games, India clinched 2 historic gold medals in judo, secured double podium finish in men's javelin throw, and win a first ever bronze in decathlon. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion toward misguided youth who've gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than be punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in national capital, where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode has been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in the society over such conduct were understandable, childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them.
7: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
6: President Draupadi Murmu has given assent to the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill was passed by Parliament on Thursday. The Act aims to curb unfair practices in public examinations by introducing stricter punishments and establishing fast-track courts. It seeks to strengthen transparency, fairness and integrity in the examination system by creating a robust legal framework while protecting the future of students. The Act includes several key provisions, including stringent penalties such as imprisonment of up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the confiscation of properties belonging to convicted offenders. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. Mr. Modi will first travel to Andhra Pradesh, where he will lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation multiple development projects worth nearly 18,000 crore rupees at Bhogapuram in Vizianagaram district. More from our correspondent.
8: The Prime Minister will take a walkthrough of the passenger terminal before inaugurating the Greenfield Allur Sitaramaraju International Airport at Bhogapuram. Built under the public-private partnership mode at a cost of over 5,600 crore rupees, the airport has the capacity to handle 6 million passengers annually. The Prime Minister will also lay the foundation stone for Andhra Pradesh's first semiconductor manufacturing facility under the India Semiconductor Mission at Visakhapatnam. The ASIP project, involving an investment of over 460 crore rupees, will have the capacity to produce about 96 million chips every year. In addition, he will dedicate to the nation and lay the foundation stone for renewable energy transmission projects worth about 9,920 crore rupees and national highway projects worth over 1,880 crore rupees. Allu Murli, Akashwani News, Visakhapatnam.
6: In Karnataka, Mr. Modi will inaugurate Swami Vivekanand Cultural Youth Center, Viveka Samarka, at Mysuru in Karnataka today. Our correspondent has the details.
9: Viveka Smaraka, to be inaugurated by Prime Minister in Mysore today, is dedicated to promoting the teachings and philosophy of Swami Vivekananda. The 75,300 square feet facility houses a 4D experience center, exhibition hall, amphitheater, classrooms, conference halls, library, reading room, and a meditation and yoga hall. Sri Ramakrishna Ashrama in Mysore will offer short-term courses and workshops for youth at the Swami Vivekananda Cultural Youth Center. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
6: The Union Cabinet has approved an expanded Khelo India scheme and enhanced assistance to National Sports Federations, ANSFS, with a combined outlay of 36,441 crore rupees for the period 2026-27 to 2030-31. Addressing the media in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the decision reaffirms the government's commitment to harnessing the power of sports for youth development and nation building.
10: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा स्टेडियम हो इंफ्रास्ट्रक्चर हो ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो मेंटोरशिप हो उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 इयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में उन सब के साथ ये वीविन करेगी
6: West Bengal begins the process of census today, which will be conducted digitally in two phases. The exercise aims to collect updated demographic data through a technology-driven approach, with a two-phase process designed to ensure comprehensive coverage across the state. More from our correspondent.
11: In the first phase, citizens can complete the self-enumeration process online from today until the 15th of August by submitting their details through the official census portal. Citizens can log on to ac.census.gov.in and complete their own details through the self-enumeration system. The second stage of this phase will run from the 16th of August to the 14th of September. During this period, census officials will visit households for house listing and preliminary enumeration. The final phase is scheduled for February next year, when enumerators will collect detailed information on every member of each household, including name, age, gender, caste and religion, for the actual population count. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
6: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in POJK. He said the crackdown has resulted in the tragic death of over 40 civilians and serious injuries to many. The spokesperson said, facing a violent regime, the people have requested international organizations for an independent investigation into the unlawful killings. India has urged the international community to scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities.
2: The so-called elections stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment facing a violent regime. The people there have requested international organizations for an independent investigation into the unlawful killings. We urge that the international community should scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities.
6: India and China will resume

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अभद्र भाषा और नफरत का रास्ता छोड़ने की अपील की। कहा, भटके हुए युवाओं को दंड देने की बजाय सही मार्गदर्शन और सहानुभूति की जरूरत। 14वीं जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से लगातार तीसरे दिन की 8 घंटे लंबी पूछताछ, 3 अगस्त को दोबारा पेश होने का समन। राज्य के सरकारी अस्पतालों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा इलाज। एनएचएम की बैठक में भीड़ प्रबंधन, दवा वितरण और क्षेत्रीय भाषाओं में हेल्थ चैटबॉट बनाने पर मोहर। राज्य की सभी पंचायतों में 15 नवंबर से पहले शुरू होंगी आधार सेवाएं। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रज्ञा केंद्रों को और सशक्त बनाने का दिया निर्देश। और झारखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी रवि केसरी का भारतीय खेल प्राधिकरण में कोच पद पर हुआ चयन। देश भर के टॉप 20 उम्मीदवारों में बनाई जगह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। एक वीडियो संदेश में जंतर मंतर की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने भटके युवाओं के प्रति सहानुभूति जताने और उन्हें दंड की बजाय सही राह दिखाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इसमें शामिल बच्चों को माफ करना चाहते हैं। उन्होंने युवाओं से अपनी गलतियों से सीख कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 से 2031 तक के लिए खेलो इंडिया योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस पर 36,441 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे युवाओं को खेलों में उत्कृष्टता का मार्ग मिलेगा। यह योजना जमीनी स्तर से ओलंपिक स्तर तक प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करेगी।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 इयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा गड़बड़ी मामले में आयोग के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से सीआईडी की पूछताछ जारी है। अधिकारियों ने कल लगातार तीसरे दिन उनसे करीब 8 घंटे तक लंबी पूछताछ की। सीआईडी ने उन्हें 3 अगस्त को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को रिमांड पूरी होने के बाद जेल भेज दिया गया है, जबकि 3 अन्य से पूछताछ जारी है। रांची के नामकुम स्थित एनएचएम मुख्यालय में अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें अस्पतालों में मरीजों की सुविधा, डेटा कलेक्शन, क्राउड मैनेजमेंट और क्यू सिस्टम को सुगम बनाने में एआई की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई। अभियान निदेशक ने कहा कि एआई की मदद से ग्राउंड लेवल डेटा का सटीक विश्लेषण होगा, जिससे क्षेत्रवार बीमारियों के बोझ का तुरंत अंदाजा मिल सकेगा। देश भर में कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से युवाओं को संबोधित करेंगे। धनबाद आईआईटी आईएसएम परिसर से इसका सीधा प्रसारण होगा, जहां छात्र नशा मुक्ति की सामूहिक शपथ लेंगे। युवाओं से आज तक पोर्टल पर डिजिटल संकल्प लेने की अपील की गई है। धनबाद के पॉलिटेक्निक उप डाकघर घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने कल लोयाबाद निवासी पंकज चौहान के घर छापेमारी की। समन के बाद भी पूछताछ में शामिल न होने पर ईडी उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी। जांच में उसके खाते से 2,89,00,000 रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जामताड़ा में सदर अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद हुए हंगामे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान श्री मरांडी ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है।
3: झारखंड के छात्र और नौजवान धरने पर, हमारी पार्टी पूरी तरह से छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी। सरकार यदि छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय छात्रों और नौजवानों की जो मांगे, उन मांगों को गंभीरता से सरकार को सुनना चाहिए और समाधान करनी चाहिए।
2: दिशम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि 4 अगस्त को पूरे राज्य में श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। मुख्य कार्यक्रम राम

0: सीएससी के साथ पंचायती राज बहुत स्ट्रांगली काम करते हुए आज डिजिटल पंचायत का जो हम लोगों का विजन था वो हम लोगों ने पूर्ण किया है। पिछले दिनों ही जो बैंकिंग और झारनेट की जो सुविधाएं उन सब से आगे बढ़ते हुए आधार की सेवा अब पंचायतों के माध्यम से मिलने लगी है।
1: पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम से हुई करीब 45 लाख रुपए की मोबाइल और लैपटॉप चोरी मामले का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. सैयद मुस्तफा हाशमी ने बताया कि वैज्ञानिक और तकनीकी जांच के आधार पर साहिबगंज के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य में आज से 3 अगस्त तक मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात के साथ तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के रवि केसरी का भारतीय खेल प्राधिकरण साई में बैडमिंटन कोच के पद पर चयन हुआ है। हाल ही में जारी चयन सूची में देश भर के 20 उम्मीदवारों में रवि को यह स्थान मिला है। उनकी इस उपलब्धि से राज्य के खेल जगत और युवा खिलाड़ियों में हर्ष का माहौल है। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेपीएससी भर्ती घोटाला मामले में पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से लगातार तीसरे दिन सीआईडी पूछताछ की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जेपीएससी के कुछ सदस्य की भी भूमिका संदिग्ध, समन जल्द। प्रभात खबर की सुर्खी है, 1,08,00,000 रूपये का राज छिपा, वापस मांगी जमीन, हाईकोर्ट ने प्रार्थी पर ठोंका, 12,00,000 रूपये का जुर्माना। सड़क हादसे से दिव्यांगता के एक मामले में हिंदुस्तान के शब्द हैं, हादसे ने छीनी तरक्की, कोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा। दैनिक जागरण लिखता है, धड़कता दिल लेकर जिंदगी बचाने चली वंदे भारत एक्सप्रेस। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अभद्र भाषा और नफरत का रास्ता छोड़ने की अपील की। कहा, भटके हुए युवाओं को दंड देने की बजाय सही मार्गदर्शन और सहानुभूति की जरूरत। 14वीं जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से लगातार तीसरे दिन की 8 घंटे लंबी पूछताछ, 3 अगस्त को दोबारा पेश होने का समन। राज्य के सरकारी अस्पतालों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा इलाज। एनएचएम की बैठक में भीड़ प्रबंधन, दवा वितरण और क्षेत्रीय भाषाओं में हेल्थ चैटबॉट बनाने पर मोहर। राज्य की सभी पंचायतों में 15 नवंबर से पहले शुरू होंगी आधार सेवाएं। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रज्ञा केंद्रों को और सशक्त बनाने का दिया निर्देश। और झारखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी रवि केसरी का भारतीय खेल प्राधिकरण में कोच पद पर हुआ चयन, देश भर के टॉप 20 उम्मीदवारों में बनाई जगह। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का

सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है, वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे उड़िया लोकगीत। कलाकार हैं सुरोवि पान और साथी।
1: कौन कौन काचो आनी छो, देखाओ नी बाटी के।

अभी आपने सुना लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आपने सुना उड़िया लोकगीत कलाकार थे सुरोबी पान और साथी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है 1 अगस्त। जी हाँ, आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि है। श्रोताओं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक महान स्वतंत्रता सेनानी, सेनानी थे जिन्हें स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देने और लाल बाल पाल की तीकड़ी के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था तथा 1 अगस्त 1920 में उनका निधन हुआ। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक चित्पा पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता गंगाधर तिलक संस्कृत के विद्वान और शिक्षक थे। पुणे के दक्कन कॉलेज से गणित में स्नातक और वर्ष 1879 में सरकारी लॉ कॉलेज से वकालत की डिग्री पूरी की। उन्होंने प्रसिद्ध उद्घोष किया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर वे लाल बाल पाल तिकड़ी के प्रमुख उग्रवादी नेता रहे। जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन भी किया। लोगों को एकजुट करने के लिए महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की भी शुरुआत उन्होंने की। इस तरह से मांडेला जेल में अपने कारावास के दौरान प्रसिद्ध ग्रंथ गीता रहस्य की भी रचना उन्होंने की। बातें हम आपसे और भी करेंगे, सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: ಸ್ವಯಂ ಹಿ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: इस संदेश के बाद सुनते हैं भेंटवार्ता. मलेरिया कारण लक्षण और उपचार. भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद. उनसे बातें कर रहे हैं अवनीश सिन्हा.
2: जानने के लिए आज हम मिल रहे हैं शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद जी से, जो हमें बताएंगे मलेरिया कारण लक्षण एवं उपचार के बारे में. तो आइए जानते हैं मलेरिया के बारे में. तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है. नमस्कार.
3: नमस्कार, धन्यवाद.
2: सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मलेरिया क्या है.
3: मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो मनुष्य के शरीर में मलेरिया के परजीवी की उपस्थिति में उत्पन्न होती है.
2: जी,
3: ये परजीवी एनोफिलीस मच्छरों के द्वारा संक्रमित होते हैं, और अगर इसका इलाज सही समय पर नहीं हुआ

0: उसको मृत्यु भी हो सकती है।
1: जी ये मलेरिया का संक्रमण कैसे होता है?
0: मलेरिया का संक्रमण एनोफिलीस मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया के परजीवी मच्छरों के जरिए इंसानों के शरीर में प्रवेश करते हैं।
1: जी, और ये मलेरिया के परजीवी में कौन कौन से होते हैं?
0: मलेरिया के परजीवी चार प्रकार के होते हैं।
1: जी,
0: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल।
1: तो हमारे इस क्षेत्र में ज़्यादातर कौन से मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं?
0: हमारे देश में मुख्यतः प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम का संक्रमण पाया जाता है।
1: इस क्षेत्र में ज़्यादातर इसका ही प्रकोप है?
0: हाँ, इस क्षेत्र में ज़्यादातर फॉल्सीपेरम और वाइवेक्स का ही प्रकोप है।
1: जी, तो ये जो आपने जो जिनका जिस परजीवी का नाम बताया, ये पैदा कहाँ होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादातर?
0: मलेरिया के मच्छर जो है रुके हुए साफ पानी या धीरे धीरे बहते हुए पानी, जैसे तालाबों किनारे, नदी किनारे, सिंचाई के स्रोत, धान की खेतों, कुओं, पोखरों, धीरे बहने वाले नदियों में पनपते हैं।
1: घर के जहाँ पे रुके हुए जल वगैरह मतलब कि
0: पनपते हैं, और घर में है जो घर के आसपास जहाँ भी पानी, जैसे मटका हुआ, कुल्हड़ हुआ, लोग गमला वगैरह रख देते हैं छत पर, है ना, टंकी वगैरह हुआ, टूटे हुए बेकार कनस्तर हुआ, या पशुओं के पानी पीने के जो नादें होती हैं, रद्दी टायर में पानी जमा रहता है उसमें पनपते हैं।
1: तो
0: मलेरिया के मच्छर घरों तथा पशु पालन में रहते हैं। अपनी जाति की आदत के अनुसार ये घरों के भीतर या घरों के बाहर विश्राम करते हैं। ये मच्छर विश्राम के लिए अंधेरी और छायादार जगहों, जैसे टेबल के नीचे, पर्दे के नीचे इत्यादि को पसंद करते हैं, जो हमारे घरों में हमेशा उपलब्ध हैं।
1: जी, तो ये इनका पनपने का समय क्या होता है, ज़्यादातर किस समय मतलब कि इनका प्रकोप होता है?
0: मलेरिया के मच्छर ज़्यादातर शाम को काटना शुरू करते हैं
1: जी,
0: और सारी रात काटते हैं
1: जी।
0: जब
1: और
0: याद रखें मौसम
1: जी,
0: और याद रखें मौसमी बारिश के बाद मच्छरों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है।
1: यानी कि मौसम जब बदलता है, यानी कि मौसमी बारिश, अभी का जो समय है, इस समय मतलब कि मच्छरों का प्रकोप जो है वो ज़्यादातर हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पानी जो है, वर्षा जो होती है तो हर जगह छोटे छोटे गड्ढे होते हैं
1: जी,
0: तो उस गड्ढों में पानी जो जमा हो जाता है
1: जी,
0: तो वो अनुकूल जो होता है वातावरण होता है
1: जी,
0: मलेरिया के मच्छरों को पैदा होने के लिए या पनपने के लिए।
1: तो इसका संक्रमण कैसे होता है?
0: जब मच्छर संक्रमित रोग काटते हैं
1: जी,
0: जब संक्रमित मच्छर
1: मतलब
0: रोगी
1: कोई,
0: हाँ,
1: कोई जो
0: मच्छर जो है, कोई माली मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति है
1: जी,
0: अगर उसको काटता है, उससे खून चूसा
1: जी,
0: तो वो जो खून चूसता है अपने उस खून में जो मलेरिया से ग्रसित आदमी के साथ साथ, जो खून के साथ साथ मलेरिया कीटाणु भी मच्छर में प्रवेश कर जाते हैं, और वे मच्छर वहाँ से उड़ के जब दूसरे आदमी को काटते हैं तो वो जो मच्छर है अपने जो लार्वा के साथ उस खून में जो है मच्छर कीटाणु छोड़ देते हैं, और इस तरह से मच्छर के शरीर में प्रवेश करता है।
1: यानी कि वो दूसरे को काटेगा तो फिर उसको भी
0: उसको
1: मलेरिया हो जाता है। तो ये डॉक्टर साहब, इस क्षेत्र में जो है ज़्यादातर किस तरह के मलेरिया के रोगी देखने को मिलते हैं? फॉल्सीपेरम के रोगी ज़्यादा
0: दोनों रोगी आते हैं, और विशेष करके यहाँ फॉल्सीपेरम जो है, क्योंकि फॉल्सीपेरम मलेरिया जो है और वाइवेक्स मलेरिया में, वाइवेक्स साधारण मलेरिया है
1: जी,
0: फॉल्सीपेरम मलेरिया ये जो है इसको हम लोग ब्रेन मलेरिया भी कहते हैं
1: जी।
0: फॉल्सीपेरम मलेरिया भी यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इसके जो मलेरिया के जो लक्षण हैं वो क्या हैं?
0: मलेरिया में ये जो सबसे पहले इसे बुखार लगता है
1: जी,
0: बेचैनी हो सकती है, क्योंकि बुखार बहुत तेज होता है, बेचैनी होती है, उल्टी हो सकता है
1: जी,
0: और जैसे ही बुखार लगेगा तो आप महसूस करेंगे कि जिस आदमी को मलेरिया होगा उसको कपकपी के साथ बुखार आता है
1: जी,
0: और ऐसी स्थिति में क्या है, मरीज जो है ओढ़ने के लिए मांगता है, यहाँ तक कि कम्बल रजाई जाके ओढ़ता है, तब जाके उसको कपकपी दूर होती है।
1: मतलब कि जिसे भी मतलब हम कहें कि बहुत तेज बुखार होगा और कपकपी के साथ में मतलब कि उसको
0: ठंड के साथ में जो बुखार आएगी
1: जी,
0: तो उसको हम लोग फिर उसके बाद क्या होता है, आधा घंटा या 15 मिनट के बाद देखिएगा कि वो उसको गर्मी महसूस होने लगती है
1: जी,
0: और जो भी चादर या रजाई आप ओढ़ा

0: रखते हैं वो स्वतः हटा देता है जी। गर्मी के बाद देखिए थोड़ा देखा उसको पसीना चलने लगता है और इस तरह से बुखार जो है घट जाता है जी। उसके बाद आदमी कमज़ोर महसूस करने लगता है। ये मुख्यतः लक्षण इसमें बुखार है जो कि।
1: तो ये कितने समय में दिखाई देता है सर?
0: ये 10 से 14 दिन के बाद, अगर आज मच्छर मलेरिया के किसी आदमी को मच्छर आज काटता है तो उसके काटने के 10 से 14 दिन के अंदर उसको ये लक्षण प्रकट होने लगता है मलेरिया बुखार
1: जी। मतलब ये बार बार, मतलब कि वो
0: हाँ बार बार हमेशा जो है क्या कहते हैं दिन में हो सकता है कि आज भी हो, एक रोज छोड़ के हो, या कभी कभी अगर मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है दो तीन कीटाणु जो है एक साथ काटता है तो इसी स्थिति में डेली भी बुखार आ सकता है
1: जी। तो सामान्यतः मलेरिया के लक्षण जो हैं वो एक बार फिर से आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: हाँ, मलेरिया के लक्षण में सबसे बड़ी है कि बेचैनी होगा
1: जी,
0: कमजोरी होगा, सुस्ती होगा और बहुत तेज बुखार आएगा
1: जी,
0: उल्टी भी हो सकता है
1: जी।
0: बुखार का सबसे पहचानने का तरीका क्या है कि सुस्ती अवस्था में होता है
1: जी।
0: पहला तो होगा कि कपकपी के साथ बुखार होगा
1: जी,
0: थोड़ा देर तक तो जिसमें आप चादर वगैरह रजाई वगैरह ओढ़ते हैं
1: जी,
0: थोड़ा देर के बाद आपको गर्मी महसूस होगा, इससे आप चादर रजाई हटा देते हैं और फिर थोड़ा देर के बाद देखिए ठंड महसूस होने लगता है और ठंड पसीना सारे शरीर से पसीना चलने लगता है, बुखार आपको उतर जाएगा, आपको राहत महसूस होगी
1: जी। ये डॉक्टर साहब, इस मलेरिया में सबसे ज़्यादा खतरा किससे है?
0: सबसे ज़्यादा खतरा प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम से है जिसे हम लोग ब्रेन मलेरिया कहते हैं
1: जी।
0: और
1: क्या होता है
0: इसमें? होता है कि एक बुखार जो है मलेरिया का जो जो कीटाणु जो है ब्रेन में चला जाता, सारे शरीर में चला जाता है, क्योंकि ब्लड से होते हुए सारे शरीर में चला जाता है, तो आपको उसमें जो है ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, समझ आदमी बेहोश हो जाता है
1: जी,
0: तो इसलिए इस खतरा बना रहता है उसमें
1: जी। इसके पहचानने का क्या?
0: इसके पहचानने का कि तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं, लेबोरेटरी टेस्ट ब्लड टेस्ट करते हैं
1: जी।
0: हम लोग आजकल हर जगह सुविधाएं उपलब्ध है
1: जी।
0: दो तरह के टेस्ट है, एक है कि कीट के द्वारा भी करते हैं हम लोग, दूसरा है रैपिड टेस्ट भी करते हैं और माइक्रोस्कोप टेस्ट भी करते हैं।
1: यानी कि कोई भी अगर बुखार हो तो उसको सही हल्के में नहीं लेना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, खास के
1: और अगर खास कर करके अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: गर्भवती महिला को बुखार के बारे में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मलेरिया की अगर गर्भवती महिला को मलेरिया होता है
1: जी,
0: तो उसके गर्भपात होने का डर रह सकता है
1: जी,
0: या अगर जो प्रसव है समय के पहले हो जाएगा
1: जी,
0: और अगर बाले समय के अनुसार भी होता है तो बच्चे का जन्म पर बड़ा असर पड़ता है, उस पर हो सकता है उसे वजन वगैरह की कमी हो जाती है, क्योंकि मलेरिया जो ब्रेन मलेरिया होता है उसमें खून की कमी होती है, खून की कमी होने से मादा जो होता है जो प्रसव महिला है उसमें भी खून की कमी हो जाती है, और जब मादा महिला में जब प्रसव वाली महिला में खून की कमी होगी तो विशेषतः जो बच्चे उसके पेटे पलर रहे हैं उसमें भी खून की कमी हो जाती है,
1: तो ऐसे में दोनों को नुकसान हो सकता है,
0: दोनों को नुकसान होता है, माँ बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, ये मलेरिया की स्थिति गंभीर होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं?
0: मलेरिया की स्थिति गंभीर होने पर, चूँकि अगर आप इलाज नहीं कराते हैं और बहुत दिन से मरीज बुखार से पीड़ित है
1: जी,
0: तो ब्रेन मलेरिया में जो लाल रक्त कण हम लोग के शरीर में है
1: जी,
0: जो टूटते जाता है, जो लाल रक्त कण के टूटने से हम लोग शरीर में खून की कमी होना शुरू हो जाती है
1: जी,
0: तो जो मरीज मलेरिया से ग्रसित है
1: जी,
0: उसको बैठने में तकलीफ
1: जी,
0: थकावट जी, सांस लेने में परेशानी
1: जी,
0: खून की कमी के चलते बेहोशी, उल्टी वगैरह, पेशाब का रंग बदलना शुरू होता है, और अगर इलाज नहीं कराया गया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है
1: जी। यानी कि बहुत ही खतरनाक,
0: बहुत ही खतरनाक है, मलेरिया से हमेशा सावधानी बरतनी होगी।
1: तो शीघ्र पहचान करना यानी कि बहुत ही जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है, शीघ्र मलेरिया के शीघ्र जांच करना, बहुत पहचान होनी चाहिए, और शीघ्र पहचान करने के लिए मलेरिया की जाँच होनी चाहिए जिसे हम लोग ब्लड टेस्ट के द्वारा करते हैं
1: जी। यानी कि इसकी जांच की सुविधा तो सभी जगह उपलब्ध है?
0: मलेरिया की जांच की सुविधा हर जगह, हर हमारे सरकार के द्वारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है
1: जी,
0: जो हमारे सदर अस्पताल में है
1: जी,
0: और प्राइवेट जो क्लिनिक है नर्सिंग होम में, हर जगह मलेरिया टेस्ट करने की सुविधाएं उपलब्ध है
1: डॉक्टर।

0: इसके उपचार की क्या, इसमें क्या कैसे?
1: उपचार के लिए विशेषतः गोली उपलब्ध है। साधारण जो मरीज जो है मलेरिया से पीड़ित है उसके लिए हम लोग गोली दवा देते हैं। साधारण दवा जो है क्लोरोक्वीन है, और आजकल क्लोरोक्वीन जो टैबलेट है वो रेजिस्टेंट हो गया, तो क्विनिडीन वगैरह टैबलेट आ गया वो देते हैं। और अगर मरीज ज़्यादा सीरियस है तो इंजेक्शंस है, हम लोग आर्टिसोनेट इंजेक्शन, ईमाल इंजेक्शन वगैरह देते हैं, पानी भी चढ़ाते हैं। अगर उसको खून की कमी है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है।
0: डॉक्टर साहब, ये आप वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, अगर बुखार है तो उन्हें हल्के में वो लेते हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे?
1: उनसे हमारा यही सलाह है कि किसी भी, खास करके ये जो हमारा जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, ये सिंहभूम क्षेत्र है, यहाँ हम लोग जो है बुखार को हल्के से नहीं लें, क्योंकि ये जो मलेरिया पीड़ित जोन है
0: जी,
1: वैसे स्थिति में जैसे ही बुखार होता हो आप अपने निकटतम जो स्वास्थ्य सुविधा जहाँ है वहाँ जाएं और डॉक्टर से अपने खून की जांच कराएं और उचित दवा लें।
0: इसमें खान पान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
1: खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, चूँकि खून की कमी हो जाती है इसीलिए हम लोग को वैसे खाना खाना चाहिए जिसमें खून बने। दूध, अंडा, मांस, मछली सब खा सकते हैं इसमें।
0: इसकी मलेरिया की रोकथाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, मलेरिया के रोकथाम बहुत ज़रूरी है।
0: जी।
1: हम लोग ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो कि हम लोग को मलेरिया हो
0: जी।
1: आपको जैसे हमने बताया कि मलेरिया का जो अंडे जो है, मलेरिया पनपते कहाँ हैं? मलेरिया पनपते हैं धीरे धीरे बहने वाले पानी में या घर के आसपास जो पानी जमा हो गया उसमें। तो हम अपने घर के जो आसपास जितने भी जो गड्ढे हैं या जो छत पर जो बर्तन हैं टूटे फूटे से पानी जमा हो, टायर हो, उस सब में हम लोग जो है पानी नहीं रहने दें। और अगर पानी है तो उसमें केरोसिन तेल वगैरह छिड़क दें, चूँकि लार अंडा जो है पानी पर जो पैदा होगा, करासन तेल जलने से करासन तेल जो है वो अंडे को मार देता है। और अगर आपके नज़दीक में छोटे छोटे गड्ढे हैं जिसमें, तो उसमें आप गनापूसी या मछली आजकल सरकार के द्वारा उपलब्ध है वो दे सकते हैं, जो छोटे छोटे अंडे को वो खा जाता है। ये अगर आपके इर्द गिर्द सफाई जो है कूड़ा करकट है तो उससे आप साफ़ सुथरा रखें। रात में विशेष करके सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि मच्छर जो है रात में ही काटते हैं, इसलिए मच्छरदानी का प्रयोग करना न भूलें। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी गरीबों के लिए मच्छरदानी उपलब्ध मुहैया कराया जा रहा है, और बाकी सारे लोग मच्छरदानी जरूर उपलब्ध करें। घर को साफ सुथरा रखें, गंदगी से दूर रखें, अपने घर के आसपास जो है पानी जमा नहीं होने दें, गंदगी नहीं पनपने दें। मैं समझता हूँ कि ये सब करने से हम लोग मलेरिया से बचाव कर सकते हैं, मलेरिया नहीं होगा हम लोग।
0: तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को मलेरिया के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, धन्यवाद अवनीश जी आपको भी।
2: अभी आपने सुना भेंट वार्ता, मलेरिया कारण, लक्षण और उपचार। भेंट वार्ता का अर्थ है डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद, उनसे बातें कर रहे थे अवनीश सिन्हा। ये आकाशवाणी का छाया बसा केंद्र है। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं यह जरूरी संदेश।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: परिवार जो बेटा क्रांति बेसरा अले नेहर में बोले नुकान परिस्थिति बोले सब वापस को रुड़ा
6: नाम मंगलो राय को गाँव बड़गड़ा आड़की थाना। तो जंगल गया है तो आउका कहाँ मैंने है वो लोग आउका वो जिंदा है ना, मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते।

अभी आपने सुना फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। अब सुनते हैं ये जरूरी संदेश।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
2: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे। लगता था ऐसे ही चलेगा, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी। आयुष्मान वह वंदना कार्ड से आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वह वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

इस संदेश के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत, अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज़ों में फिल्म मुकाबला का ये गीत।

अभी आपने सुना फिल्म राधा का संगम। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और सब्बीर कुमार की। इस गीत के साथ ही आज का हमारा रसरंजन कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म राम जाने के इस गीत से, उदित नारायण, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं का ये गीत अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज़ों में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने को हैं। आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: MHz पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। 10:30 हुए हैं और ये वक्त होता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची का। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास रखना। रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, यदि हौसले बुलंद है तो मंजिल दूर नहीं रहती। इन बातों के साथ अस्मिता है आपके साथ और मेरे साथ है
1: रजनी।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारा
1: नमस्कार
0: नमस्कार और जोहार।
1: अस्मिता, क्यों ना आज के कार्यक्रम की शुरुआत इस मोटिवेशनल गाने के साथ करें। हाँ। ताकि हमारे श्रोतागण भी मोटिवेट हो जाएं।
0: बिल्कुल।

0: इस अच्छे से मोटिवेशनल गाने के बाद क्यों ना अस्मिता अब अपने श्रोताओं को एक सुविचार बता दे। तो क्या है आज का सुविचार?
1: तो आज का सुविचार है कि जीवन में एक लंबी यात्रा है जिसमें कभी खुशी के पल आते हैं तो कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर छोटी कोशिश हमें अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले आती है।
0: बिल्कुल, हमें ये याद रखना चाहिए कि असफलता अंत नहीं है बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम होती है। हर गलती हमें कुछ सिखाती है और आगे बढ़ने का हमें अवसर भी देती है। इसलिए यदि कभी जीवन में कठिन समय आए तो निराश होने के बजाय उसे सीख लेने का प्रयास करें, क्योंकि असफलता के बाद सफलता आनी ही आनी है।
1: बिल्कुल।

0: फिर अपने श्रोताओं को अब हम बताते हैं मौसम के बारे में। मौसम का हाल भी जानना बहुत ही जरूरी
1: है। बिल्कुल।
0: झारखंड में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। आज के दिन आकाश में बादल छाए रह सकते हैं, कहीं कहीं हल्की भी बारिश हो सकती है। अगर मौसम विभाग का हम बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार रांची सहित कुछ जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है, लेकिन अभी भी राज्य में 26% कम बारिश हुई है। इस अवधि में झारखंड में सामान्यतः 508.2 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि अभी तक 376.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। बहुत ही चिंता की बात है।
1: लेकिन सबसे अच्छी स्थिति पश्चिम सिंहभूम की है, जहाँ यहाँ सामान्य से 16% अधिक बारिश हो गई है। वहीं रांची में अब तक 16% कम बारिश हुई। सबसे खराब स्थिति बताए तो अगर तो गढ़वा, चतरा, देवघर, पाकुड़ और कोडरमा की है।
0: मतलब कि कुछ अगर कहीं कम बारिश हुई है तो कहीं अच्छी स्थिति भी है। मतलब मिला जुला है इस बार अनुमान। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी

0: जहाँ जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
1: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 की मेजबान।
0: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर एफसी सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
1: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
0: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
1: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
0: जहाँ जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
1: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 की मेजबान।
0: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर एफसी सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
1: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
0: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
1: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची। तो रजनी आगे बढ़ते हैं और आज कौन सा दिवस है ये हम श्रोताओं को बताते हैं।
4: बिल्कुल, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज यानी 1 अगस्त से विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हो रही है। यह सप्ताह हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य माताओं और परिवारों को स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूक करना और शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सही जानकारी पहुँचाना है।
3: स्तनपान एक नवजात शिशु के लिए प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण आहार होता है, जिसमें सभी पोषक तत्व और रोगों से लड़ने की शक्ति होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जन्म के बाद 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना चाहिए और 6 महीने तक स्तनपान कराना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है।
4: स्तनपान न केवल बच्चे को मजबूत बनाता है और स्वस्थ बनाता है, बल्कि माँ के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। और सुनने में ये भी आता है और ये सही भी है कि स्तनपान कराने से माँ और बच्ची का जो रिश्ता है वो बहुत ही मजबूत होते जाता है।

0: बच्चा उसी वक्त से अपनी माँ को माँ के करीब महसूस करने
1: बिल्कुल
0: लगता है। इसलिए विश्व स्तनपान सप्ताह हमें यह संदेश देता है कि स्तनपान के लिए माँ को सही जानकारी और परिवार का सहयोग मिलना बहुत ही
1: बहुत ही
0: जरूरी है।
1: जरूरी है, बिल्कुल।

0: जहाँ जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
1: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 की मेजबान।
0: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर एफसी सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
1: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
0: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
1: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: श्रावणी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
3: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
4: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
3: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
2: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोले।
1: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मी का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: विराम के बाद सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है कार्यक्रम जोहार रांची में। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, जानते हैं आज के दिन में क्या है खास। तो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। जर्मनी द्वारा रूस में इस युद्ध की शुरुआत

0: गई थी। 1995 में आज ही के दिन हब्बल दूरबीन ने शनि के एक और चंद्रमा की खोज की थी। 2006 में जापान ने दुनिया की पहली भूकंप पूर्व चेतावनी सेवा शुरू की थी।
1: और बात करें 2007 में वियतनाम को के हगोई हनोई शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारतीय दल के 6 सदस्यों ने 3 रजत पदक जीते। 2008 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के बोर्ड ने भारत के विशेष निगरानी समझौते को हरी झंडी दी।
0: अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया में कदम रखा, यानी जिनका है आज जन्मदिन। भारतीय मुक्केबाज रोहित टोकस का जन्म आज ही के दिन यानी 1 अगस्त 1993 में हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास स्थान रखने वाले राजनीतिज्ञ रामवीर उपाध्याय का जन्म भी आज ही के दिन सन 1997 में हुआ था।
1: और पूर्व भारतीय क्रिकेटर अरुणा लाल का जन्म भी आज ही के दिन यानी 1 अगस्त 1955 में हुआ था। और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं फिल्म निर्माता निर्देशक भगवान दादा का जन्म अभी आज ही के दिन यानी कि 1 अगस्त 1913 में हुआ था।
0: प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद मिश्र का जन्म 1939 यानी 1939 में आज ही के दिन हुआ था। पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म आज ही के दिन यानी 1 अगस्त 1882 में हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। लोग उन्हें सम्मान से राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन भी कहते थे।

0: हम बातें कर रहे थे उनकी जिनका आज है जन्मदिन. इसी कड़ी में हम एक एक शख्सियत का नाम और जोड़ना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले उनके बारे में कुछ बातें. तो श्रोताओं, कुछ कलाकार पर्दे पर सिर्फ किरदार निभाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो किरदार में इस तरह से उतर जाते हैं कि उनकी कहानी पर्दे से निकलकर हमारे दिलों तक पहुंच जाती है. जी हाँ, हम ऐसी ही एक अदाकारा की बात कर रहे हैं जो हमारी बहुत ही पसंदीदा है, हमारे दिलों में बस गई है, और वो है मीना कुमारी.
1: दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में मीना कुमारी का नाम एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में लिया जाता है जिन्होंने अभिनय को सिर्फ अभिनय नहीं रहने दिया बल्कि उसे भावनाओं की भाषा बना दिया. उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी जिसमें खुशी भी दिखाई देती थी और खामोशी भी, मुस्कान भी थी और एक अनकहा दर्द भी.
0: दोस्तों, आपको बता दें कि मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को हुआ था. बहुत ही छोटी उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था. बचपन में कैमरे के सामने आने वाली यह बच्ची आगे चलकर हिंदी सिनेमा की महान

0: अभिनेत्रियों में शामिल हुई। उनका असली नाम महज़बी बानो था, लेकिन सिनेमा की दुनिया में उन्हें जो नाम दिया वह हमेशा के लिए अमर हो गया, और वो है मीना कुमारी।
1: और उनकी अभिनय यात्रा में कई यादगार फिल्में आई, उनमें से कुछ फिल्में हैं बैजू बावरा, परिणीता, साहिब बीवी और गुलाम, दिल अपना और प्रीत पराई, काजल और पाकीज़ा जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय की ऐसी छाप छोड़ी जिसे आज भी याद किया जाता है। खासकर साहिबा बीवी और गुलाम की छोटी बहू हो या पाकीज़ा की साहिब जान, मीना कुमारी ने अपने किरदारों को सिर्फ पर्दे पर प्रस्तुत नहीं किया बल्कि उनमें भावनाओं की पूरी दुनिया बसा दी।
0: तो इसी खूबसूरत याद के साथ सुनते हैं पाकीज़ा फिल्म से ये खूबसूरत संगीत।

0: बातें करते करते अस्मिता हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे पहुंच
1: पहुंच
0: गए
1: गए
0: हैं,
1: हैं।
0: यानी कि
1: हाँ
0: कार्यक्रम का समय अब खत्म हो चला है। हम श्रोताओं से हमें अब लेनी होगी अनुमति, तो दीजिए अपनी दोस्त
1: अस्मिता
0: और रजनी को अनुमति। हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार
0: नमस्कार,
1: जोहार।
0: जोहार।

से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद का पहला गीत आइए सुनते हैं, इश्क फिल्म से। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने, आवाजें हैं उदित नारायण और विभा शर्मा की। और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं, आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, लवई से गुलाबदास मणिकपुरी, दंतरंगी से भागवत वर्मा। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये खूबसूरत सा गीत।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो खुद ही जान निकल जाएगी।

0: धीरे हाले हाले हाले हाले धीरे धीरे दिल को मिली है मंजिल।
1: भीगी भीगी रात में प्यारी प्यारी बात में खोया खोया रहता है दिल।
0: रुक रुक रुक रुक रुक रुक, रुक।

कार्यक्रम का अगला गीत ये सुनते हैं फिल्म बाजीगर से। आवाजें हैं विनोद राठौर और आशा भोसले की, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

0: इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे जतुका कुशनपुर से, आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, चांदनी नाज। हम लौटेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मी का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: फरमाइश नग में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची से। कार्यक्रम का अगला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है निखिल बिनई ने और फिल्म का नाम है मुस्कान।

0: बहनों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके प्रिय कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। इस पवित्र मास में भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हाजिर हैं हम दो सखियां। मैं हूं आपकी रेडियो सखी राखी
1: और मैं महजबीन। आज का कार्यक्रम बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे खजाने में बहुत कुछ आपके लिए है। आपके शिशु के स्वास्थ्य की बातें जो पहले हजार दिन के महत्व को ध्यान दिलाएगी
0: और आएंगी पकवानों की खुशबू भी महजबीन की रसोई से, और फिर मेरे साथ यानी राखी के साथ होंगी सावन की कुछ मजेदार यादगार बातें। तो बने रहना है आपको पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ, क्योंकि सावन का ये महीना भी तो है बहुत खास, क्यों महजबीन?
1: हाँ, हमारा नन्हा शिशु जिसमें हमारी जान बसती है, हर माँ अपने बच्चों के जो आगमन है उसकी खुशी में प्रसव पीड़ा तक झेल लेती है।
0: हाँ हाँ, 9 महीने गर्भ में रखकर वो सब कुछ सह लेती है जो उसके लिए कष्टदायक होता है बहनों। पर मातृत्व की जो प्रसन्नता होती है ना, उसके सामने तो हर दर्द छोटा पड़ जाता है।
1: हाँ बिल्कुल ऐसा ही राखी जी। और लेकिन बहनों, मातृत्व एक बड़ी जिम्मेदारी है और पूरे परिवार के लिए। ऐसे में हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि भारत सरकार ने शिशु के पहले हजार दिन को मातृ शिशु स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चरण माना है। इस अवधि के लिए कई पहल जो है शुरुआत की गई है ना, जो पहले की गई है, राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।
0: जैसे कि पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान और पेरेंटिंग ऐप भी लॉन्च किया गया है सखियों।
1: हाँ, और सखियों, गर्भधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें गर्भवती के पोषण, नियमित जांच,
0: सुरक्षित
1: प्रसव, हाँ, और स्तनपान, शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सहायता, टीकाकरण जैसी बातें शामिल हैं जो भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। क्यों?
0: हाँ मैं सभी, पहले संतान पर 5000 की सहायता, दूसरी संतान या अगर बेटी होती है तो 6000 की सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
1: और गर्भधारण के हर महीने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच होती है और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक आहार और सलाह भी मिलती है।
0: हाँ हाँ बहनों, एक और बात बताएं हम, किस संस्थागत प्रसव के लिए आर्थिक सहायता और सुविधाएं भी दी जाती हैं। साथ ही साथ बच्चे को पहले साल में जरूरी टीके भी जो हैं वो निशुल्क दिए जाते हैं।
1: बहनों, इस योजना का लाभ देने के लिए अपने आंगनबाड़ी केंद्र, आशा कार्यक्रम, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से आप संपर्क जरूर करें, अपना पंजीकरण भी करवाएं। नियमित जांच, पोषण और टीकाकरण की सुविधाओं का जो लाभ है ना, उसे जरूर ले आप।
0: और बहनों, हम आपको ये भी बता दें कि इसका लाभ लेने के लिए आपके पास क्या दस्तावेज होना चाहिए, जैसे कि अपना आधार कार्ड आपका होना चाहिए, बैंक खाता विवरण, मातृ शिशु एवं सुरक्षा कार्ड, आपका अपना मोबाइल नंबर आपके पास होना जरूरी है।
1: और बहनों, आपके शिशु को आपका होना भी काफी है क्योंकि आप उसके लिए वो सब कुछ सहती है जो कोई नहीं सह सकता।

0: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर,
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहनों, फिर से स्वागत है आपका गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में। और अब आपको आइए सुनाते हैं राखी के साथ सावन की बात।
2: हाँ, बहनों, सावन एक ऐसा महीना जहाँ मिट्टी की सौंधी सुगंध, हरियाली, पेड़ों के झूले, मेहंदी के रंग, कजरी, हरी चूड़ियाँ और प्रियतम का इंतजार तो रहता ही है, साथ साथ भाई की कलाई में बंधी राखी भी। सबकी सुमधुर यादें लेकर आता है ये सावन। रिमझिम फुहारों के साथ बचपन की यादें, शरारतें, शैतानियां भी तो याद आती है ना वैसे भी।
1: हाँ, और राखी, आपने ये सारी बातें करके मुझे तो ऐसा लगता है कि अब सावन हमेशा ऐसा लगता है कि रहे और ये जाए भी ना, क्योंकि इसका इंतजार हमें बहुत रहता है कि इसमें बहुत सारी तैयारी करनी रहती है।
2: और मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मेरे लिए सावन का सबसे मजेदार अनुभव झूले से जुड़ा हुआ है। किशोरावस्था के देहरी पर खड़ी हम सब सहेलियां नए मनोभावों का उमड़ना घुमड़ना बादलों के साथ, युवा होता मन, शारीरिक अवस्थाओं में परिवर्तन, बहुत कुछ बदल रहा था तब। और मुझे याद आता है जब पेड़ों में झूले लगाए जाते और झूला झूलना सिर्फ सुखद अनुभव ही नहीं होता बल्कि एक सुंदर परंपरा का निर्वहन भी होता था।
1: जब, और हाँ, ये तो बात है कि सावन में झूला झूलना, बहुत सारी यादें जुड़ी रहती हैं। तो आगे और क्या कहना चाहेंगी राखी?
2: जब मैं उत्साहित होकर झूले में बैठने जाती थी ना, तो बड़ी योजना बनाती थी उससे पहले, क्योंकि आनंद के साथ साथ थोड़ा डर भी लगता था मुझे। अब भगवान शिव का स्मरण कर क्या हुआ कि दुपट्टा संभालते हुए झूले पर बैठ जाती मैं, अक्सर ऐसा होता था, और सहेलियां धक्का देती तो फिर मैं डरने लगती। अरे उतारो उतारो, गिराओगी क्या, क्या कर रही हो? और मैं जितना डरती उतना ही कुछ शरारती सहेलियां जोर जोर से मुझे झुलाना शुरू करती थी और खूब हंसी ठिठोली होती थी तब मैं जबीन।
1: और ये भी बात है, ये जो सारी बातें बता रही हैं ना राखी आप, ये भी मेरे साथ होता था, ऐसा लगता कि आप मेरी बातें बता रही हैं।
2: और सखियों को भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ होगा। और क्या होता कि जब मैं झूले में होती तो मैं चिल्लाती और फिर झूले से उतरने के बाद मीठी सी झड़प भी हो जाती थी सहेलियों के साथ। एक बार तो मैं तैयार होकर मेहंदी लगाकर लंबी चोटी बनाकर गई झूले में बैठने, और उस दिन सहेलियों ने इतनी जोर से झुलाया कि अरे अरे रोको रोको, गिराओगी क्या, कहते कहते आखिर गिर ही गई मैं। मेरी प्यारी और अंतरंग सहेली तो बेचारी दुखी हो गई, बाकी सहेलियों की हंसी ऐसी फूटी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खैर, चोट नहीं आई ज्यादा, लेकिन घर आकर मम्मी की जो तीखी डांट पड़ी वो तो मुझे ही याद है, और फिर साथ ही साथ ये हिदायत भी मिल गई कि अब से झूला बिल्कुल बंद।
1: बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी यादें हैं राखी, आपने जो बातें बताई है ना, कि ये यादें हमेशा हर सावन में पता नहीं क्यों बार बार याद आता है, और ऐसा लगता है कि हर सावन में कुछ नई कहानी हमारे साथ हो रही है।
2: हाँ, सावन तो बस कहानियां लेकर ही आता है। और आज बहनों, जिंदगी की तमाम व्यस्तताओं के बावजूद सावन का वो जमाना याद आता है, अदरों पर बरबस मुस्कान तैर जाती है, मन फिर से बचपन की गलियों में लौट जाता है। दरअसल खुशियां तो इन्हीं छोटे छोटे पलों में ही कहीं छुप कर बैठी होती है ना सखियों। सावन वही, फुहारे वही, शायद झूले भी पड़े होंगे गांव के किसी पेड़ में, बस बैठने वाली वो किशोरी बदल गई होगी जो पीढ़ियों के साथ बदल ही जाती है। और मैं सभी इन बातों बातों में तुम्हें एक खुशी की बात बताऊं। हाँ, हमारा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी धीरे धीरे इतना लोकप्रिय होता जा रहा है कि हमारी बहनों के साथ साथ कभी कभी परिवार के अन्य सदस्य भी, यानी पुरुष भी, इसे सुनने लगे हैं। और इसी क्रम में शिक्षिका बहन सोनल प्रियवंदा जी के पति बैंक अधिकारी श्री रंजीत कुमार हरनौत नालंदा बिहार ने सावन के इस प्यारे से गीत की फरमाइश की है। तो रंजीत जी आइए आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये सुंदर गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रावणी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
4: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
5: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
4: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मी का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: विराम के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है बहनों, आपके ही कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। आपके साथ है आज दो सखियां राखी और महसबीन। और बहनों, सावन की बात हो रही है, हम खाने खिलाने की बात अगर ना करें तो कितना अधूरा सा लगेगा, है ना? तो चलिए आपको लिए चलते

0: देखते हैं महसबीन की रसोई की तरफ, जहाँ से आ रही है सोंधी सोंधी सी खुशबू। तो महसबीन, बताओ आज क्या बना रही हो तुम?
1: आज अपनी बहनों को हम झटपट सूजी का नाश्ता बन सिखा रहे हैं, तो आइए ले चलते अपने किचन में। आज हमको जो हमने आज सूजी का नाश्ता बनाना आपको सिखाएंगे, वो झटपट आप नाश्ता सुबह बना सकती हैं और ये 10 मिनट में तैयार हो जाता है। आइए शुरू करते हैं, आप इसे ज़रूर नोट करें। सबसे पहले 1 कप सूजी, अब इसमें 2 चम्मच गेहूं का आटा या बेसन भी ले सकती हैं। अब आप पानी डालकर इसे इस तरह से घोलें कि ये ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला। अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि इसमें गुठली ना रहे। अब इसे कवर कर 10 मिनट छोड़ दें इसे ढक करके। इधर आप तैयारी करें, 1 प्याज बारीक काटें, 2 हरी मिर्च लें बारीक कटी हुई, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया पत्ता, ये सभी को उस घोल में डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। अब आइए कुछ मसाले की तैयारी करते हैं। आप आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा और थोड़ा सा चुटकी भर हींग डालें और नमक स्वाद अनुसार डालें। और अंत में आप चाहें तो इसमें नींबू का रस या फिर अमचूर डालें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आप एक पैन में तेल लगा करके अच्छी तरह से इसे एक चीले की तरह तले और मीडियम फ्लेम में इसे धीरे धीरे पकाएं। अब आप इसे जब दोनों तरफ ये पक जाए तो इसे आप किसी धनिया की चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। तैयार है आपका सुबह का झटपट नाश्ता। बहनों, आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए, हम आपको अपनी रसोई से कुछ नई नई रेसिपी ज़रूर बताएंगे। तो ये थी झटपट सूजी का नाश्ता की रसोई रेसिपी। अब हम आपको ले चलते हैं मनोरंजन की ओर। तो सुनवाते हैं एक प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: तो बहनों, आपका हमारा साथ भी यूं ही बना रहे, यही कामना हम करते हैं। और चलते चलते थोड़ा सा समय है, क्या बता रही हो मैं जबेन?
1: कामकाजी महिलाएं और नवजात शिशु का पालन पोषण वो किस तरह से कर सकती हैं, इस चलते चलते हम आपको कुछ टिप्स दे देते हैं। बहनों, ये जो हमारी कामकाजी महिलाएं हैं जो घर और बाहर दोनों देखती हैं, और ऐसे में अगर उनके जो नवजात है उसकी देखभाल वो कैसे करें, आइए आपसे शेयर करते हैं। जो हमारी कामकाजी महिलाएं हैं अपने नवजात को समय पर वो इस अपना जो प्रबंधन करें, स्तनपान का सही योजना बनाएं, और अपने पार्टनर या परिवार के लोग भी उनकी मदद करें, यानी कि उनको जहां तक हो सके आप उनकी मदद करें कि उन्हें नवजात के साथ बिल्कुल भी अकेला न छोड़े। उन्हें जहां ज़रूरत हो, उनकी जहां पे खान पान की ज़रूरत हो, उनकी देखभाल की ज़रूरत है, आप उनकी मदद ज़रूर करें। हाँ, तो इसके साथ ही अब हम अपने प्रोग्राम को आगे,
0: हाँ, और चलते चलते बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की, और इसी के साथ अपनी सखी राखी
1: और महजबीन को दे इजाजत।
0: नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं शैक्षिक प्रसारण। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे छात्रों के लिए समय प्रबंधन पर वार्ता। वार्ताकार हैं संजय प्रसाद, प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की।

बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे समय का प्रबंधन कैसे करें। समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, हमें भी समय और ज्वार की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यह एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसमें जीवन का बहुत बड़ा सत्य छुपा हुआ है। समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। धन जाए तो जाए, फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ जाए उपचार के द्वारा सुधारा जा सकता है, लेकिन एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का उपयोग ही जीवन को सफल बनाता है। बच्चों, हम सभी को दिन के

अब इस घंटे सामान्य रूप से मिलते हैं। फिर भी कुछ लोग जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि किसी के पास अधिक समय होता है, बल्कि यह है कि सफल लोग अपने समय का बेहतर प्रबंधन करते हैं। समय प्रबंधन का अर्थ है केवल घड़ी देखकर काम करना नहीं, बल्कि अपने कार्यों को सही योजना के साथ सही समय पर पूरा करना है। जब हम अपने दिन की योजना बनाते हैं तो आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं, तभी हम अपने लक्ष्यों तक आसानी से पहुंच पाते हैं। आज के समय में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, अनावश्यक मनोरंजन हमारे समय के सबसे बड़े चोर बन चुके हैं। कई बार हम सोचते हैं केवल 5 मिनट के लिए मोबाइल चलाएंगे, लेकिन ये 5 मिनट कब बीत जाता है, 2 घंटे में परिवर्तित हो जाता है, पता ही नहीं चलता। यदि हम प्रतिदिन केवल 1 घंटा भी व्यर्थ गवाते हैं तो पूरे वर्ष में लगभग 365 घंटे हम यानी लगभग 15 दिन हमारा समय बर्बाद हो जाता है। सोचिए इन 15 दिनों में हम कितनी नई बातें सीख सकते थे, कितनी किताबें पढ़ सकते थे या अपने किसी सपने की ओर बढ़ सकते थे। विद्यार्थियों के लिए समय प्रबंधन का महत्व और भी अधिक हो जाता है। यदि छात्र नियमित रूप से पढ़ाई करें, समय पर होमवर्क पूरा करें, खेल, व्यायाम और आराम के लिए भी समय निकालें, तो वे न केवल परीक्षाओं में अच्छे अंक से प्राप्त करते हैं, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। समय प्रबंधन के कुछ सरल उपाय हैं। पहला, अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करें। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले करें। तीसरा, अनावश्यक मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करें। चौथा, हर कार्य के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। पांचवा, टाल मटोल की आदत छोड़ दें, क्योंकि आज का काम कल पर छोड़ना सफलता की राह में रोड़ा पैदा करता है। महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए समय का सही उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है। इतिहास में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद हो, डॉक्टर कलाम हो या अन्य कोई सफल लोग, सभी ने समय के महत्व को समझा और उसका सदुपयोग किया। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया उन्हें सम्मान देती है। प्रिय साथियों, हमें यह याद रखना चाहिए कि समय एक नदी की तरह होता है जो हमेशा अनवरत बहता रहता है। जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है वही आगे बढ़ता है, जो समय को व्यर्थ करता है समय भी उसके पीछे छोड़ देता है। आइए आज हम सभी एक संकल्प लें, हम अपने हर दिन की योजना बनाएंगे, समय का सम्मान करेंगे, आलस्य और टालमटोल से दूर रहेंगे तथा हर पल को सदुपयोग करेंगे, क्योंकि आज का सही उपयोग ही हमारे उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। समय प्रबंधन केवल हमारे छात्र जीवन का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भविष्य को तय करता है। समय का प्रबंधन किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त बदला है, वक्त बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। लेकिन यह सिर्फ उनके लिए सच होता है जो वक्त की कदर करना जानते हैं। समय इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और अमूल्य वस्तु है। धन खो जाए दोबारा कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य खराब हो जाए चिकित्सा से हम उसे सुधार सकते हैं। यदि एक बार एक सेकेंड भी बीत गया तो उसे दुनिया की सारी दौलत भी नहीं खरीद सकती। हम अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति जैसे कलाम, स्वामी विवेकानंद, अल्बर्ट आइंस्टाइन या एलोन मस्क के पास भी दिन में केवल 24 घंटे ही थे और हमारे पास भी 24 घंटे ही होते हैं। अंतर केवल इस बात का है कि उन्होंने अपने 24 घंटों का प्रबंधन कैसे किया और हम कैसे करते हैं। छात्र जीवन हमारे पूरे जीवन की नींव होती है। इस अवस्था में हम जो आदतें अपनाते हैं वे जीवन पर्यंत हमारे साथ रहती हैं। छात्र जीवन में समय प्रबंधन का सीधा संबंध हमारी सफलता से है। जब हम समय का सही प्रबंधन करते हैं तो हमें लाभ मिलता है। प्रथमतः तनाव और परीक्षा के डर से मुक्ति। जो रोजाना योजना बनाकर पढ़ते हैं उन्हें परीक्षा के दिनों में रातों की नींद खराब नहीं होती, वे बिना किसी मानसिक दबाव के परीक्षा कक्ष में जाते। एकेडमिक प्रदर्शन में सुधार। जब विषय को उसकी आवश्यकता के अनुसार समय दिया जाता है तो कमजोर विषय भी मजबूत हो जाते हैं, जिससे परीक्षा में बेहतर परिणाम आता है। आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आपके सभी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और रिवीजन समय

पूरे होते हैं तो आपके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास का संचार होता है जो आपके सर्वांगीण विकास के लिए जरूरत। सर्वांगीण विकास समय प्रबंधन का मतलब केवल पढ़ाई करना नहीं है, इसका मतलब है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, कला, परिवार और अपने दोस्तों के लिए भी पर्याप्त समय का मिल जाना। छात्रों के समय को बर्बाद करने वाले मुख्य तत्व टाइम वेस्टर जो होते हैं, वो समय प्रबंधन सिखाने से पहले हमें यह पहचानना होगा कि हमारा समय आखिर जा कहाँ रहा है। आज के आधुनिक युग में छात्रों के सामने ध्यान भटकाने वाली डिस्ट्रैक्शन चीजें बहुत सारी बढ़ चुकी हैं। उनमें प्रथमतः सोशल मीडिया और स्मार्टफोन, रील्स, शॉर्ट्स, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन आज के छात्रों को समय बर्बाद करने के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और 2 घंटे कब बीत जाता हमें पता भी नहीं चलता। टाल मटोल करने की आदत, इस काम को कल करूंगा या शाम में पढ़ना शुरू करूंगा, यह टाल मटोल की आदत धीमी जहर की तरह है जो हमारे कीमती समय को खा जाती है। बिना योजना के काम करना, बिना किसी लक्ष्य या दिशा के बैठ जाना, आज क्या पढ़े सोचने में ही आधा घंटा बर्बाद हो जाता। अत्यधिक गेमिंग और टीवी, मनोरंजन अति आवश्यक है लेकिन जब यह हमारी पढ़ाई के समय पर हावी हो जाने लगे तो यह बर्बादी का कारण बनता है। प्रभावी समय प्रबंधन के अचूक नियम है। अब सवाल यह उठता है कि आप छात्र अपने समय का सही प्रबंधन कैसे करें। इसके लिए मैं आपके सामने 5 व्यावहारिक और वैज्ञानिक रणनीतियां बताता हूं। नियम 1, आइजनहोवर मैट्रिक्स। ये आइजनहोवर मैट्रिक्स एक लोकप्रिय टाइम मैनेजमेंट का उपकरण है जो कार्यों को तात्कालिकता और इंपॉर्टेंस के आधार पर दर्शाता है। आइजनहोवर मैट्रिक्स के अनुसार अपने कार्यों को 4 श्रेणियों में बांट, महत्वपूर्ण और अत्यंत जरूरी कार्य, जैसे कल होने वाली परीक्षा की तैयारी, दूसरी महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं जैसे रोजाना का अध्ययन और व्यायाम, यह वह क्षेत्र है जहां आपको सबसे ज्यादा समय बिताना चाहिए, जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं दोस्तों का फोन उठाना बहुत जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी हमारी शिक्षा है, न तो जरूरी और न ही महत्वपूर्ण कार्य जैसे बिना वजह सोशल मीडिया का स्क्रॉल करना, इसे हम तुरंत बंद कर डालें। नियम 2, एक यथार्थवादी टाइम टेबल बनाएं। ऐसा टाइम टेबल न बनाएं जो इतना कठिन न हो कि एक दिन भी न चल पाए। अपने टाइम टेबल में पढ़ाई के बीच भी 10-15 मिनट का ब्रेकअप अवश्य डालें। नियम 3, पोमोडोर तकनीक। यह पढ़ाई का एक बेहतरीन वैज्ञानिक तरीका है। इसमें आप 25 मिनट पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ते हैं और 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं। ऐसा 4 बार करने के बाद एक लंबा 20-30 मिनट का ब्रेक लें। इससे आपके दिमाग में आराम लगेगा और वो थकेगा नहीं। नियम 4, डिजिटल डिटॉक्स। जब आप पढ़ाई करने बैठे तो स्मार्टफोन को दूसरे कमरे में रख दें या उसे साइलेंट मोड पे डालें। पढ़ते समय नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर नहीं चमकना चाहिए। नियम 5, सुबह के समय का सदुपयोग, अर्ली बर्ड एडवांटेजेस। सुबह का समय शांत होता है और हमारा दिमाग पूरी तरह फ्रेश होता है। कठिन और जटिल विषयों को सुबह के समय पढ़ें, वे जल्दी समझ में आएंगे। समय प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य। समय प्रबंधन का अर्थ खुद को एक जेल में बंद करना या एक रोबोट की तरह काम करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करना ताकि आप शांति से जी सके। जो छात्र समय प्रबंधन नहीं करते वो हर समय हड़बड़ी और चिंता में रहते हैं। इसका सीधा असर उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। अनिद्रा, अवसाद, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं अक्सर इन छात्रों को देखी जाती है। जो काम आखिरी समय के लिए टालते हैं इसके विपरीत एक अनुशासित छात्र अपनी नींद भी पूरी लेता है, अच्छा खाना खाता है, खेलता भी है, मुस्कुराता भी है, परीक्षा भी देने जाता। अनुशासन आपको बांधता नहीं है बल्कि आपको आजाद करता है। यह आपको इस बात की आजादी देता है कि आप बिना किसी अपराध बोध के अपने खाली समय का आनंद ले सकें। अंत में मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूं, समय एक नदी की धारा की तरह है। जो पानी एक बार आपके सामने से बह गया उसमें आप दोबारा नहीं छू सकते। आज आप छात्र हैं, आपके पास ऊर्जा है, सपने हैं, उन्हें पूरा करने का समय भी है। यदि आज आपने समय का कदर न किया तो कल समय भी आपका कदर नहीं करेगा। कबीरदास एक बहुत ही अच्छा दोहा उसमें आता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। आओ बच्चों, संकल्प लें कि हम

शैक्षिक प्रसारण, इसके अंतर्गत आपने सुना छात्रों के लिए समय प्रबंधन पर वार्ता। वार्ताकार थे संजय प्रसाद, प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दोस्तों, अब बातें थोड़ी पेड़ पौधे की भी हम कर लेते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे प्रकृति का सबसे सुंदर उपहार है। यह हमें सुंदर हवा, ठंडी छाया, फल फूल और जीवन जीने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन देते हैं। इनके बिना धरती पर जीने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन आज बढ़ती आबादी और विकास की दौर में बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। इसका असर हमारे मौसम, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर साफ दिखाई दे रहा है। गर्मी बढ़ रही है, वर्षा का संतुलन बिगड़ रहा है और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है।

पेड़ लगाना ही नहीं बल्कि उनकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है। जब तक लगाया गया पौधा एक मजबूत पेड़ ना बन जाए तब तक उसकी सुरक्षा और देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम सभी हर साल कम से कम एक पौधा लगाएं और उसे जीवित रखने का संकल्प लें तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, हरा भरा और स्वस्थ वातावरण दे सकते हैं। तो आइए आज हम सभी मिलकर एक यह संकल्प लें कि पेड़ लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे और प्रकृति का सम्मान करेंगे, क्योंकि हरा भरा पेड़ जीवन की नई उम्मीद होता है।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं श्रेयस घोषाल की आवाज में। शब्द रचना इरशाद कामिल के हैं, धुन बनाई है ए आर रहमान ने। फिल्म का नाम है रांझना।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आकर्षण से प्रसून जोशी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने। आवाजें हैं मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आंध्र प्रदेश में हैं और वे भोगमरमपुरम में सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: की विशेषता है कि उन्होंने दो क्षितिजों को छुआ है। एक तरफ ऊंची आसमान को सुनने वाली व्यवस्था

0: एयरपोर्ट का निर्माण और दूसरी तरफ मेरे यहां के आदिवासी बहनों के द्वारा भीमसा नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाना, मैं चंद्रबाबू के इस विजन को विशेष रूप से सराहना करता हूं। मित्रों,
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने 13,500 से अधिक आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक थिमसा नृत्य प्रस्तुति देखी, जो उत्तरी आंध्र की जीवंत आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। श्री मोदी आज राज्य में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम कर दी हैं। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2,738 रुपये हो गई है। वहीं कोलकाता में 2,872.50, मुंबई में 2,691.50 और चेन्नई में 2,906 हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेंगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन 2 श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाले पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Greenfield Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh today. On his arrival at the airport, the Prime Minister was received by Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazir, Chief Minister N. Chandrababu Naidu, Deputy Chief Minister Pawan Kalyan and other dignitaries. The Prime Minister inaugurated the passenger

0: राज्य में सुरक्षा बलों के कड़े अभियानों के कारण नक्सलवाद अब पूरी तरह खात्मे की कगार पर पहुंच गया है। आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह के अनुसार पिछले 15 वर्षों में पुलिस ने न केवल नक्सलियों से अपने लूटे गए हथियार वापस लिए बल्कि उनके गढ़ों को भी ध्वस्त किया है। उन्होंने बताया कि साल 2021 से जुलाई 2026 तक चले विशेष अभियानों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकानों से कुल 972 आधुनिक और देसी हथियार जब्त किए हैं।
1: जो नक्सलियों ने सरेंडर किए हैं या जो नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं उनसे पुलिस लूटेड हथियार, उसका एक डेटाबेस झारखंड पुलिस के द्वारा बना हुआ है। भारत सरकार के द्वारा भी इसका एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें देश भर के पूरे पुलिस लूटेड हथियारों का ब्यौरा उसके अंदर होता है। और जैसे कोई छत्तीसगढ़ पुलिस का कोई वेपन हमारे पास है तो हम वो रिफ्यूजन हम लोग वो करेंगे, हम लोग उनको दे देंगे, हमारा वेपन उनके पास है तो हम लोग उनको रिफ्यूजन करेंगे। और लगभग 1000 पुलिस लूटेड वेपन्स है जिनका डेटाबेस हमारे स्पेशल ब्रांच।
0: राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान एनुमरेशन फॉर्म जमा न करने वाले 43,68,000 से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि फॉर्म जमा न करने वाले अधिकांश मतदाता हटिया, रांची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर पूर्वी जैसे क्षेत्रों के हैं। प्रभावित लोग 5 अगस्त के बाद अपनी दावा आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।
2: ग्रामीण क्षेत्र में आपका जो एनजीडी का संख्या थोड़ा सा कम है, शहरी क्षेत्र में ज्यादा है। शहरी क्षेत्र में अर्बन का माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा है, वोटर्स का मूवमेंट भी बहुत ज्यादा है। फिर बाकी जगह पर भी आपका वो सूची है वो अपने बीएलओ का बैठक में फाइनल हुई थी, उसके बाद अब वो 5 अगस्त के बाद कोई आपत्ति होगी मतलब उसको नहीं रखा।
0: रांची के रिम्स ने प्रसव पूर्व अनुवांशिक जांच की सुविधा शुरू कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल के जेनेटिक्स विभाग में अब गर्भ में पल रहे शिशु में सिकल सेल, थैलेसीमिया और डीएमडी जैसी गंभीर जेनेटिक बीमारियों की जांच हो सकेगी। धनबाद के निरसा अनुमंडल में पुलिस ने अवैध लॉटरी कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी प्रिंटिंग प्रेस का भंडाफोड़ किया है। निरसा एसडीपीओ लीलेश्वर महतो के नेतृत्व में पुलिस ने बीसीसीएल के एक जर्जर क्वार्टर में छापेमारी कर करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिबंधित लॉटरी, प्रिंटिंग मशीन और उपकरण जब्त किए हैं। मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। देवघर का विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला अब पूरी रफ्तार पकड़ चुका है और सावन के शुरुआती 3 दिनों में ही करीब 2 लाख कांवरियों ने बाबा वैद्यनाथ का जलार्पण कर लिया है। मेले के दूसरे दिन सर्वाधिक 1,05,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। कांवरिया पथ पूरी तरह केसरिया रंग और बोल बम के जय घोष से गुंजायमान है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोयला नगरी धनबाद के बेलगड़िया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एंट्री से स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। इस नई उद्योग इकाई के शुरू होने से क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं और महिलाओं को सीधे रोजगार के अवसर मिलेंगे। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित हो रहे इस क्षेत्र से न केवल पलायन रुकेगा बल्कि धनबाद की अर्थव्यवस्था को कोयले से अलग एक नया औद्योगिक विस्तार भी मिलेगा।
3: टेक्सटाइल कंपनी से करा हुआ है, राजधानी टेक्सटाइल्स बिल्डा ग्रुप से, और हम लोग बेलगड़िया में जमीन चिन्हित कर लिए हैं। धीरे धीरे देखते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1500 से 2000 लोगों का कैपेसिटी का प्रॉपर टेक्सटाइल पार्क बने ताकि वहां रहने वाले कम से कम 2000 लोगों को वहां पर रोजगार मिल सके।
0: कोडरमा वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देने के लिए स्नेक रेस्क्यूअर प्रशांत तिवारी को विशेष किट देकर सम्मानित किया है। डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सौमित्र शुक्ला ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में घरों के आसपास सांप निकलने पर उन्हें मारे नहीं बल्कि रेस्क्यू टीम को 8789356215 नंबर पर सूचित करें। उन्होंने सर्प

0: अंश की स्थिति में झाड़ फूंक की बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर इलाज कराने की सलाह दी है।
1: जब भी सांप अगर आपको घर में आसपास कहीं निकल रहा है तो जो भी स्नेक रेस्क्यू टीम के मेंबर होते हैं इनसे संपर्क करें, या वन विभाग की टीम के भी थ्रू जो और लोग भी सांप पकड़ते हैं उनसे संपर्क करें, और अगर खुद आप दक्ष नहीं है उस चीज में तो सांप को डायरेक्टली हैंडल ना करें।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ओर साइक्लोनिक सर्कुलेशन खिसकने से झारखंड में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल कुछ धीमी पड़ गई है। हालांकि कल से रांची सहित कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य में इस सीजन में अब तक सामान्य से 26% कम वर्षा दर्ज की गई है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपने अपने स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
2: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा निवारण संशोधन विधेयक 2026 को दी मंजूरी। पेपर लीक करने वालों को होगी 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना। राज्य में खात्मे की कगार पर नक्सलवाद। साल 2021 से अब तक सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकानों से जब्त किए 972 आधुनिक और देसी हथियार। रांची के रिम्स में राज्य

पेपर लीक करने वालों को होगी 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना। राज्य में खात्मे की कगार पर नक्सलवाद। साल 2021 से अब तक सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकानों से जब्त किए 972 आधुनिक और देसी हथियार। रांची के रिम्स में राज्य

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भूपेंद्र और मिताली सिंह की आवाज में चंद गजलें।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: यदि माँ HIV से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को HIV का संक्रमण हो सकता है, इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की HIV जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को HIV के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0-9-7 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र और मिताली सिंह की आवाज में चंद गजलें।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।

0: अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहां शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
2: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: वस्तु और सेवा कर GST संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू GST राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
3: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उड़ीसा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि उड़ीसा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतुहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंवझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसुन को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्ष

0: राष्ट्रों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती। जय भारती का पहला गीत हमने लिया है श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाजों में। धुन बनाई है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है कृष्ण।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती। जय भारती का अगला गीत हमने लिया है श्रेया घोषाल की आवाज में, तर्ज बनाई है संजय लीला भंसाली ने। फिल्म का नाम है सावरिया।

संगीत डॉट कॉम का ये सफर फिलहाल इतना ही, तो संगीता को इजाजत दीजिए और इस वादे के साथ जाते हैं कि जल्दी ही होगी आपसे फिर मुलाकात। स्टूडियो में नुपुर आ चुकी हैं, लेकिन फिलहाल जो वक्त है वो है समाचारों का। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार आंध्र विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के नागर विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की की कड़ी निंदा की है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता दी जाएगी। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरों, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए मिलेगा। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ओडिशा में महानदी में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर बन गई है। निचले इलाकों के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केवंझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गाँव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। 17 साल की तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसुन को सीधे गेम में हराया, जबकि मुकाबले में अपनी जगह इन्होंने पक्की की। फाइनल में तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन ग्युएन से होगा। उन्नति हुड्डा सेमीफाइनल में थुई लिन ह्युएन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनते हैं पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रही है जया सिन्हा।
2: नमस्कार। कभी एले पैदे के मोहब्बत बने, कभी मिनले की मासूमियत, कभी रंग दे बसंती का जुनून दिखाया, तो कभी थ्री इडियट्स का सपना। तनुमेद्स मनु के मनु से लेकर रॉकेट्री के नंबी नारायणन और शैतान के रहस्यमय किरदार तक और उसके बाद धुरंधर, इनका सफर मानो हर दौर में एक नई कहानी लिखता रहा है। भारतीय सिनेमा के बहुमुखी कलाकार, अभिनेता, लेखक, निर्देशक आर माधवन को वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। स्वागत करते हैं आर माधवन का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही कि पद्मश्री मिला, काफी बधाई आई, लेकिन सबसे पहला विचार क्या आया?
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी, और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम रेडी फॉर इट।
2: ये सम्मान एक किरदार के लिए, एक फिल्म के लिए नहीं है, ये आपके पूरे सफर के लिए है। तो जब ये खबर मिली तो ऐसे में कोई किरदार याद आया कि ये किरदार मेरा सच में बेहद खास था? और साथ ही जिस जिम्मेदारी की बात की आपने, तो अब असर आया है कुछ जब फिल्म चुनाव करते हैं या कुछ सेलेक्ट करते हैं कि अब मैं पद्मश्री, थोड़ा सा अच्छे से मुझे सेलेक्ट करना होगा क्योंकि एक जिम्मेदारी है मुझे।
3: बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, क्यों है कि सबसे पहले तो मुझे इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि मैं एक कलाकार हूं, और कलाकार की जो जिम्मेदारी है वो सबसे सर्वोत्तम आ जाता है जब मैं कहानी सेलेक्ट करता हूँ। तो एज अ एक्टर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे पर्सनालिटी के साथ मैच करता है, मेरे बॉडी ऑफ वर्क के साथ मैच करता है। और फिर एक और फैक्टर हो जाता है कि क्या एक पद्मश्री को ऐसा एक्टिंग करना चाहिए, पर दैट्स वेरी लेट इन दी प्रोसेस। जहां तक सम्मान का सवाल है, ये सिर्फ जैसे कि आपने कहा बहुत फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ ये सम्मान है, चाहे वो तमिल हो जाए या इंग्लिश हो जाए या हिंदी। मैं सिर्फ बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड समाज की और मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी तो बढ़ी जाती है, जो भी आप करते आ रहे हो उससे अच्छा ही करना होगा।
2: माधवन की खासियत है कि हर एक दशक में एक किरदार इनका सुपरहिट हुआ, थ्री इडियट्स एंड फिर आपने धुरंधर वनराज। ये जो हर कोई आपसे ये सवाल पूछता है कि कैसे आप इतना रेलेवेंट रहने, हर दशक पीढ़ी को आप जोड़ा अपने से, क्या इसके पीछे का सीक्रेट क्या है?
3: हाँ, सीक्रेट तो है ही ना। देखिए, चाहे वो नंबे नारायण हो जाए या फिर आप धुरंधरी ले लीजिए जहाँ पे अजीत दोवाल साहब का किरदार है, उस फिल्म में अगर आप देखेंगे तो संजय दत्त साहब हैं, अर्जुन रामपाल जी हैं, अपने रणवीर सिंह हैं, अक्षय खन्ना जी, ये लोग जो असली किरदार हैं उसकी तरह दिखते तो थे, थोड़ी बहुत सेम्बलेंस थी। पर अगर आप फिल्म के डायरेक्टर होते और अगर आपसे कहा जाता कि अजीत दोवाल के लिए हम माधवन को कास्ट करें, जाहिर है कि आप मना कर देती, क्योंकि कोई सेम्बलेंस नहीं है। फिजिकल रिजेंबलेंस होगी तो आप एग्री करोगे ना। मैं जो कहने की मतलब ये है कि चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो मुकेश या आदित्य, उनका एक विजन होता है कि हाँ माधवन ये कर पाएंगे। जब उनको कॉन्फिडेंस होता है और वो ऑफर करते हैं तभी मैं ये रोल कर पाऊंगा। जो मेरे पास मौका आता है वो निडर होकर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो मेरी खासियत है बस। बट ये मौका मिलना ऊपर वाले की देना।
2: किस तरह से आपको लगता है कि इस समय जिस तरह

0: से अपॉर्चुनिटीज हैं, कंटेंट है, छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, ओटीटी, आपको लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन समय है? पिछले एक दशक में आप देखते हैं एक बड़ा बदलाव मिला है।
1: जी हाँ, ओटीटी की वजह से और रील्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से हमें ऐसे नए स्टार्स मिले हैं जो पहले हमें सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से आया करते थे। उनके लिए हमें वेट करना पड़ता था कि कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई किरदार आए जिसको हम स्टार मानने लगे। पर ओटीटी की वजह से इतने कमाल के एक्टर्स आए हैं, इतने कमाल के टैलेंट हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड में ले लीजिए, हाल ही में रिलीज हुए दो बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म के एक्चुअल डायरेक्टर जो है वो यूट्यूब के डायरेक्टर्स हैं। तो वहां के रॉयल्टी नहीं कर पा रहे, जो चीज जो आजकल के यंग जनरेशन जो है वो बड़ी बड़ी फिल्में बनाने लगे हैं। इट इज अ फैबुलस मूव, कंपटीशन भी बढ़ गया है, एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है।
0: आप एफसीआई से जुड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं युवाओं के लिए, क्योंकि एक ऑरेंज इकोनॉमी का उदय इस वक्त हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विजन रहा इंडस्ट्री को, अगर हम बात करें सब्सिडीज की बात करें या फिर हम बात करें ऐतिहासिक आयोजन हुआ वेव समिट का, किस तरह से देखते हैं ये जो एक सर्ज है ऑरेंज इकोनॉमी, उस लिहाज से भारतीय सिनेमा को आप कैसे देखा?
1: मुझे लगता है कि हॉलीवुड जो है वो हमेशा बहुत ही दूरदर्शक था। जो वो देश की खासियत थी, वो होने वाली जो संभावना है, जो होने वाली क्षमता है, उसके बारे में फिल्म बनाया करता था। और इस वजह से अगर हमें लगता है कि इस धरती पे कोई एलियन का अटैक हो जाए तो सिर्फ एक अमेरिकन ही जाके हमें बचा सकता है, या उनके पास ही टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम बच सकते हैं, तो उन्होंने वो पहले से प्रोजेक्ट करना शुरू किया, एक सॉफ्ट पावर को यूज करना शुरू किया। मुझे लगता है कि हम इस इंडस्ट्री में अभी तक अपना सॉफ्ट पावर और अपना जो हक है जो हमने आज तक बाकी फील्ड्स में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो साइंस हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, हर्बल मेडिसिन हो, योगा हो, हर चीज में जो हमने अपने आप को मशहूर साबित किया है पूरे दुनिया में, उस जगह को हमने अभी तक क्लेम नहीं किया एज फार एज आर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज कंसर्न। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है, एक एकम्प्लिश्ड इंडिया की, एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे किरदारों में कभी हम पहले से ही जयशंकर साहब जैसे कोई किरदार को नहीं दिखा पाए। वो आए, उन्होंने एस्टैब्लिश किया, वो पूरे दुनिया में हमारे जिस तरीके से वो प्रेस वालों के साथ डील करते हैं, और वो किरदार क्यों नहीं हम पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में सोच पाए। मैं इसकी छोटी छोटी जो है बातें कर रहा हूँ। सो आई थिंक जो प्रधानमंत्री जी और ये जो नया इनका एंडेवर है बहुत ही जरूरी है। एंड जब आप ये करोगे, होगा ये कि हमारे यंग जनरेशन जो है उनके लिए जो नंबर ऑफ हीरोज हैं, जो नंबर ऑफ आइडल्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और बहुत सारे फील्ड्स में हमें इन्वॉल्व होने का प्रोत्साहन मिलेगा।
0: एक ऐसी फिल्म है जो आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव रही, रॉकेटरी, द नाम ऑफ द इफेक्ट। कितना चुनौतीपूर्ण था निर्देशन की कमान संभालना, और ये फिल्म आपके लिए कितनी एक लाइफ चेंजिंग भी थी।
1: इस फिल्म ने मुझे जो कुछ सिखाया है वो मैं सिर्फ फिल्मों में नहीं, मैंने अपने निजी जिंदगी में भी अपनाया है, क्योंकि इसके सारे जो मार्गदर्शक थे वो है मिस्टर नम्बे नारायण जी, पद्म भूषण है, और उनकी कहानी इतनी कमाल की थी, लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं था और वो खुद उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे। ये हमारी खासियत है इंडियन की, जो अपनी अचीवमेंट के बारे में बात ही नहीं करना उनको ठीक लगता है, वो अपने दर्दनाक कहानी के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। उनसे जो मुझे 5 साल सीखने को मिला, और जैसे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि जब आपका मन वाकई में किसी चीज पे लगता है, पहले आपको एक सपना आता है, फिर उसके बाद दूसरी बार जब आता है तो वो आपके लिए एक पैशन बन जाता है, और तीसरी बार तो एकदम आप उसके पीछे ही लग जाते हो और वो आपके लिए एक ऑब्सेशन बन जाता है। रॉकेटरी मेरे लिए एक ऑब्सेशन बन गया था। मैंने ना आए दिखाए बाएं, मुझे लगा था कि ये कहानी बताना जरूरी है, इस इंसान के बारे में बताना जरूरी है, और इस देश को इस इंसान के बारे में जानना जरूरी है, ताकि हम अपने हीरोज को कम से कम सेलिब्रेट तो कर पाए। तो उस दौरान मैं उस माधवन को फिर से कभी देख नहीं पाया, उस सेट पे जो एक डायरेक्टर बनकर जो इंसान था, क्योंकि मैं सिर्फ ना ही एक्टर था, मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सब कुछ था उस सेट पर, और हम 3 लैंग्वेज में शूट कर रहे थे, हर एक शॉट को 3 लैंग्वेज में करना था। तो मुझे लगता है कि जब आपका दिल किसी चीज पे बैठ जाता है ना, तो फिर आप सामने में जितने चैलेंजेस हैं सब छोटे लगने लगते हैं। बस आप एवरी डे काउंट करते हो, एवरी मिनट काउंट करते हो, कि मुझे आगे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना कि हम कितने दूर जाने वाले हैं और क्या हासिल करना चाहता हूँ, मुझे बस ये देखना है कि आज मुझे क्या करना है और कितनी अच्छी तरीके से मैं कर पाऊंगा।
0: आपने बात की सॉफ्ट पावर की, आज हम देख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा को एक सॉफ्ट पावर के रूप में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सिनेमा आज दुनिया के कोने कोने में भारतीय संस्कृति, भारतीय कहानियां, भारतीय सितारों को लेकर जाती है और जोड़ती है। सिनेमा में वो ताकत है जो हमने देखा। आपकी ये फिल्म नामी की बात करें, राष्ट्र निर्माण को लेकर भी सिनेमा का एक बेहद बहुत ही सशक्त रोल हो सकता है, उस लिहाज से भी ये फिल्म बहुत ही खास रही। किस तरह से देखते हैं युवाओं पर इसका इफेक्ट?
1: नम्बी नारायण साहब जिस इलाके में रहते थे वहां पे वो पहले से ही रहते आ रहे हैं पिछले 40 साल से। एक हीरो थे पहले, फिर सबके आंखों के वो तारे बन गए, फिर अचानक उन्हें देशद्रोही का करार दिया गया, जिसके वजह से लोग उनके यहाँ आना नहीं जाना चाहते थे, दिवाली पे नहीं आते थे, उनको मंदिरों में अलाउड नहीं किया जाता था, और फिर इस फिल्म के बाद वो एक वापस सुपरस्टार बन गए हैं। और आज जब भी हम कोई कंपटीशन की बात करते हैं तो देखिए ना, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितने सारे कंपटीशन शुरू हो गए। आजकल यंगस्टर्स स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितना आगे बढ़ना

0: चाह रहे हैं। आज भी उनका जो इंजन आज तक फेल नहीं हुआ है, इट्स अ हाईली मोटिवेटिंग फैक्टर। और रॉकेटरी के पब्लिसिटी के दौरान मैंने एक बात कही थी, पहले कहा जाता था कि जिस इंसान के पास हथियार और घोड़े हों तो वो राज कर सकता है पूरी दुनिया पे, फिर कहा जाता था कि जिसके पास शिप्स हो वो दुनिया पे राज करेगा, फिर कहा जाता था कि जिनके पास एयरफोर्स हो और आसमान पर जो राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। आज ऐसा मौका आ गया है कि स्पेस के ऊपर जिसका राज है, जिसका कंट्रोल है, वही पूरे दुनिया पर राज करेगा, और वो सही है। और उस दौड़ में हम कभी पीछे नहीं रहना चाहते। इसी वजह से हमारे यंगस्टर्स को जो प्रोत्साहन मिलती है, व्हेन यू सी पीपल लाइक नंबी नारायणन और द अचीवमेंट्स ऑफ इसरो, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट।
1: कितने किरदार किए आपने, हर किरदार में एक अलग रंग माधवन का हमें देखने को मिलता है, ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि आपकी अपनी एक प्रिपरेशन है, यू नो कि मैं इस किरदार को इस तरह से देखूं, एक विजन है डायरेक्टर का, लेकिन ये मेरा विजन, क्योंकि आज आप उस मुकाम पर हैं कि आपके पास वो एक लिबर्टी है कि मैं अपने किरदार चूज कर सकता हूं, किस तरह से उसे अपनी बात कहनी है, क्योंकि कहानी कहने का अंदाज आज बदल चुका है, तो वो मैडी इफेक्ट कहां से आता है और कैसे आता है?
0: बहुत अच्छा सवाल है ये। बहुत लोगों ने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जो जिसके बारे में जवाब देना चाह रहा हूँ। जब भी कोई किरदार हमें मिलता है करने के लिए, चाहे वो फिक्शनल हो या रियल लाइफ पे बेस्ड हो, इतना तो तय है कि इस चेहरे में जो जेन्युइन एक्सप्रेशंस होते हैं वो लिमिटेड है। मैं कुछ 3-4 तरीके से हंस पाऊंगा जो मैं निजी जिंदगी में वाकई में हंसता हूँ, या मैं रो पाऊंगा जैसे निजी जिंदगी में, उसकी एक रियलिटी होती है और वो रियलिटी ही कैमरा में ट्रांसलेट होती है।
1: इतना तो मैं विश्वास नहीं करती, 3-4 एक्सप्रेशन है आपके पास
0: जो ओरिजिनल नहीं। एक होता है कि आपने किरदार निभाने के लिए अभिनय किया, और एक होता है कि आपने उस पर जान फूंक दी। जब आप जान फूंकते हो उसमें, तो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो लिमिटेड होते हैं जो जेन्युइन होते हैं। तो हमें यह तय करना पड़ता है कि इस किरदार को प्ले करते समय कौन से सीन में वो जेन्युइन मैडी की एक्सप्रेशन डाल दिया जाए, ताकि वो रस जो है वो आपको लगे कि ये वाकई में ये इंसान जी रहा है। बाकी जगह मैं एक्टिंग कर सकता हूँ बाकी पूरे सीन में, पर मुझे वो चंद सीन या चंद शॉट्स पे मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें मैडी आधा आधा वनराज को कैसे डालें, या आधा मैडी या माधव शास्त्री को कैसे ले आए, ताकि वो जेन्युइननेस के साथ वो किरदार निकल जाए, तो लोगों को वो एहसास हो जाता है कि वो रियल है। आई थिंक दैट इज द आइडेंटिफाइंग कि वो कौन सा शॉट है, कौन सा सीन है जहां पे आपको मैडी बनना है, असली लाइफ मैडी बनना है, और कहां पे आपको किरदार बनना है, वो आई थिंक इज द टैलेंट दैट इज इंपॉर्टेंट दैट आई हैव।
1: ऐसा शुरू में हुआ कि मैडी इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया, या आपकी जो रोमांटिक हीरो या चॉकलेट बॉय हीरो थी वो इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई कि गंभीर किरदार के लिए लोग आपको, मतलब उसको गंभीरता से लेने में समय लगा ऑडियंस को या फिल्म इंडस्ट्री को, निर्माता निर्देशकों को?
0: नहीं, देखिए अगर आप मेरी फिल्मों की फिल्मोग्राफी हिंदी में देखेंगे तो पहला फिल्म था रहना है तेरे दिल में, उसके बाद दिल विल प्यार व्यार, के बाद रंग दे बसंती, फिर गुरु, फिर हो गया 3 इडियट्स, तनुवर्ड्स मनु, तो वो एक प्रोग्रेसर नहीं था। मुझे एक ही टाइप की फिल्में करने का मौका नहीं मिला, हालांकि मैंने सिर्फ एक फिल्म का सीक्वल किया विच इज तनुवर्ड्स मनु, पर अगर आप देखोगे तो सारे किरदार अलग है। विक्रम वेदा ले लीजिए, फिर साला खड़ूस, फिर रॉकेटरी, उसके बाद शैतान, फिर दे दे प्यार दे, फिर ओटीटी में जो मेरे किरदार हैं जो कि मैंने रेलवे मैन में की है, या ब्रीद में, तो सारे सीरियस ही रहे एक्चुअली। और मैं चाह रहा था कि कभी यार हल्का फुल्का रोल भी कर लूं, तो उसमें दे दे प्यार दे 2 में मुझे एक मौका मिला। उसके अलावा मुझे लगता है कि लोग गंभीर रोल में मुझे ज्यादा पसंद करते हैं।
1: सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है आपको पर्सनली, कि आज सेट पे गए हैं, आज इसमें करने में मजा आएगा, क्या आपको लगता है कि मुझे मजा आता है सबसे ज्यादा?
0: देखिए, ये सवाल का जवाब शायद वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर। ये मजा तब आता है जब पूरे सेट में ना सारे लोग एक ही फिल्म को बनाने में लगे हुए हैं, सबकी नियत जो है वो उस एक फिल्म को बनाने की है। कभी ना लोग जुड़ जाते हैं अलग मकसद लेके, कि कभी किसी को यार फिल्म पैसों के लिए करनी है, कभी किसी को ये नाम के लिए करना होता है किसी को, पर जब एक सेट में सब कोई मिलकर एक ही किस्म की फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ही फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ही आइडिया को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि एक दोस्ती सी छा जाती है सेट पे, एक वननेस बन जाता है, तो फिर आपको ना मजा आता, बहुत मजा आता सेट पे, चाहे वो धुरंधर हो जाए, चाहे वो रंग दे बसंती हो जाए, सबको पता था कि हमें करना क्या है। कोई अपनी और अपनी दिशा पे जो है ना कहानी को ना अपनी क्राफ्ट को खींचने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी ये होता है अनफॉर्चुनेटली, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये फिल्म एक ही नियत से नहीं बनी है। तो जब सबकी नियत सेम होती है, सब जुट के एक ही फिल्म बनाने होते हैं, तो उसका जो मजा है ना, दैट्स अनकंपेरेबल। हम अपने फैमिली से दूर रहते हैं, हम कई महीनों तक एक ही यूनिट के साथ रहते हैं, पर वो जो दूर रहने का जो दर्द है वो अच्छे सेट में होने से वो दर्द दूर हो जाता है।
1: आखिरी सवाल, किसी ने समुद्र के किनारे चिल्ला चिल्ला कर कहा कि दुनिया को पागलों की जरूरत है, क्या आप ये मानते हैं कितना पागलपन अभी भी मौजूद है 3 दशकों के बाद, इतने किरदारों के बाद?
0: मुझे लगता है मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अभी तो शुरुआत ही है, क्योंकि ये पागलपन का मतलब ये है कि जो चीज पहले से चलती आ रही है उस पर हम लोग खुश होकर उसी चीज को फॉलो करने में, जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, और कभी कभार वो समाज के लिए सही नहीं होता। तो उस चीज को तोड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो किसी पागल के पास ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पागलपन मुझ में अभी भी
1: बिल्कुल

0: उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही रहें और मैडी लगातार हर नए किरदार के साथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कुछ कलाकार हिट फिल्में देते हैं, कुछ किरदारों से याद रखे जाते, लेकिन बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपनी पहचान बदलते हैं और फिर भी दर्शकों के दिलों में वही जगह बनाए रखते हैं। माधवन उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक है, एक कलाकार जिसने मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा भी दी और अब पद्मश्री के रूप में देश ने उनके योगदान को सलाम किया है। माधवन जी, इस विशेष बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, नमस्कार।
1: अभी आप पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रही थी जया सिन्हा। ये प्रसारण DD News के सहयोग से किया गया।
2: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

दो कलियां फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। विनायक नगर निजामाबाद से इस गीत को सुनना चाह ज्योति श्रीहरि, राजकमल, विनोद कुमार, रामानंद और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाह सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा ने। मोहाली पंजाब से ये पत्र आया है। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल की ये फरमा।

लेकिन हम तो जानते हैं श्रोताओं के, हमारे श्रोताओं की नजरें कभी खफा नहीं हो सकती। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपके ढेरों पत्र आए, और इसी तरह से आप पत्र लिखते रहिए, हमें रहता है आपके पत्रों का इंतजार। तो मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को कार्यक्रम मन चाहे गीत से। आप सभी का कार्यक्रम के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: यह है विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर, विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। आइए सुने नाटक विवाह का प्रस्ताव।

0: माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ दस्तक देकर ही अंदर चला आया।
1: और हम भी तुम्हें यूं ही बाहर नहीं जाने देंगे। आओ बैठो आइवन लोमोव।
0: धन्यवाद।
1: आइवन, तुमने तो हमें भुला ही दिया।
0: जी, एक उलझन के कारण मैं इधर आ नहीं पाया, इसके लिए बहुत लज्जित हूँ। लेकिन विश्वास कीजिए, आपकी याद सदा मेरे साथ रही।
1: ये तुम्हारा स्नेह है जो तुम हमें अपना समझते हो। मगर आइवन, आज खैर तो है, ये फर का नया कोट, ये रंग बिरंगी कराकली टोपी और ये सफेद दस्ताने, आज तुम जा कहाँ रहे हो?
0: जी कहीं भी तो नहीं, बात यह है कि मैं आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लाया हूँ।
1: अच्छा,
0: अब आपसे कैसे कहूँ?
1: तो और कौन कहेगा?
0: ये भी ठीक है, और कौन कहेगा? जी हाँ, मैं ही कहूँगा। लेकिन थोड़ा पानी पिलवा दीजिए। हाँ, मुझे
1: अभी लो।
0: मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, डरता हूँ अगर आपने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया तो मेरा क्या होगा?
1: पानी।
0: धन्यवाद।
1: अब ये मुझसे कुछ रुपया उधार मांगेगा और मैं इसे अंगूठा दिखा दूंगा।
0: देखिए, मैंने कई बार देखा है, महसूस किया है कि इस दुनिया में जितना आपको मेरा ख्याल रहता है, किसी को नहीं रहता। मैं आपके इस अपार स्नेह के योग्य तो नहीं हूं।
1: आइवन, आज तो तुम्हारी बातें भी तुम्हारी पोशाक की तरह बिल्कुल नहीं है।
0: जी जी जी, ये बात नहीं है।
1: तो वो बात क्या है?
0: वो बात ये है।
1: हाँ?
0: अभी कहता हूँ।
1: कहो।
0: बस मैं कहने ही जा रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: जहाँ हालत तक तो आ गई है
1: तो जबान पर ले आओ।
0: अच्छा,
1: शाबाश।
0: अपनी बेटी नतालिया का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए।
1: आइवन, मेरे प्यारे आइवन, एक बार फिर कहो
0: जी,
1: कहीं मेरे कानों ने वो तो नहीं सुन लिया जो पिछले कई वर्षों से मेरे दिल में था। कहो ना आइवन।
0: फिर किस मुंह से कहूं, कहां आप इतने बड़े जमींदार और कहां मैं आपका एक पड़ोसी छोटा सा जागीरदार।
1: ऐसा न कहो आइवन, ऐसा न कहो, जो जहां है वो वहीं रहेगा। लेकिन तुम पहले मेरे गले से लग जाओ। मैंने सदा तुम्हें अपनी बेटी नतालिया की तरह चाहा। अरे, मैं अभी तक यहीं क्यों खड़ा हूं? आइवन, तुमने देखा, मारे खुशी के मैं ये भी भूल गया कि मुझे नतालिया को तुम्हारे आने की खबर करनी चाहिए।
0: तो क्या नतालिया मुझे पसंद कर लेगी?
1: क्या कहते हो आइवन, तुम जैसे स्वस्थ सुंदर और नए नए कोट पहनने वाले गुलगुले जवान को भला कौन पसंद नहीं करेगा? मैं अभी नतालिया को भेजता हूँ।
0: जी। चुबोकोव चले गए, अब नतालिया आएगी। ये क्या? अरे, मैं तो सिर से पांव तक कांप रहा हूं। अरे बाप, मेरा सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हुआ जा रहा है। ये क्या? मेरे होंठ कांप रहे हैं, मेरी मेरी भारी आंख फड़क रही है।
2: अरे, यहाँ तो आइवन लोमोव विराजमान है।
0: आपको आपको आश्चर्य हुआ कुमारी नतालिया?
2: जी हाँ।
0: क्या?
2: आप पर नहीं, बाबा की बात पर।
0: बाबा की बात पर?
2: जी हाँ, बाबा बोले कोई मटर खरीदने आया है।
0: ओह।
2: और मैं जल्दी में इन मैले कपड़ों में ही यहाँ चली आई। अंदर आंगन में मटर की फलियों में से दाने निकाल रही थी।
0: जी।
2: आपके लिए कुछ खाने को लाऊं?
0: जी जी जी, आप कष्ट न करें, मैंने अभी खाना खाया है, आप कृपया बैठ जाएं तो।
2: लीजिए, बैठ गई।
0: जी।
2: आज तो आप अपने घर से खूब बन ठन कर निकले हैं।
0: जी
2: सच, इन नए कपड़ों में तो आप देखने में बहुत भले लगते हैं।
0: कुमारी नतालिया।
2: जी।
0: मेरी मेरी मेरी आपसे एक प्रार्थना है।
2: कहिए।
0: जी, मैं आज बहुत ठंड पड़ रही है,
2: आपके लिए कंबल लाऊं?
0: जी नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था।
2: बात क्या है? आप इस तरह घबरा क्यों रहे हैं?
0: देखिए कुमारी नतालिया, मैं आपके बाबा को तब से जानता हूँ जब आप अभी पैदा भी नहीं हुई थी, और ये तो आप भी जानती हैं कि आज मैं जिस जागीर का मालिक हूँ वो मुझे मेरे नाना नानी से मिली थी। मेरा मतलब है, मैं कहना ये चाहता था कि मेरे नाना नानी भी आपके बाबा को बहुत चाहते थे और आज भी हमारे घरों के आपसी संबंध बड़े अच्छे हैं। देखिए ना, आपके घर की दीवार मेरे घर की दीवार के साथ लगती है, आपके खेतों के साथ मेरे खेत हैं। आपकी सफेदा जमीन के किनारे मेरा चेरी का बगीचा खड़ा है।
2: क्षमा कीजिए
0: जी,
2: क्या क्या वो चेरी का बगीचा आपका है?
0: जी हाँ, क्यों?
2: यूं नहीं, सोच कर बताइए।
0: आप भी कमाल करती हैं, भला इसे सोचने की कौन सी बात है? और फिर क्या मेरे सोचने पर मेरा वो बगीचा किसी दूसरे का बन जाएगा?
2: लेकिन जो बगीचा हो ही दूसरे का, वो आपका कैसे बन सकता है?
0: मैं समझा नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
2: इसलिए कि वो बगीचा हमारा है।
0: अजी, मैं चेरी को उस बागीचे का जिक्र कर रहा हूँ जो आज तक कभी हरा नहीं हुआ, जिसके एक सिरे पर आपकी सफेदा जमीन है और दूसरे सिरे पर खाई है।
2: जी हाँ, मैं भी उसी बागीचे के लिए कह रही हूँ कि वो हमारा है।
0: कमाल है, ये तो मैं आज ही सुन रहा हूँ कि वो बागीचा आपका है।
2: और मैंने भी आज पहली बार सुना कि वो आपका है।
0: लेकिन मेरे बगीचे पर आप अपना कब्जा कैसे जता सकती हैं?
2: अरे, मगर वो बागीचा आपका कब से हुआ?
0: जब से मैंने होश संभाला।
2: फिर जब से आपने होश संभाला है, आप झूठ को सच समझते हैं।
0: जी नहीं, आप अब सच को झूठ समझ रही हैं। देखिए कुमारी निकालिया, मेरे पास ऐसे कागजात हैं जिनमें ये साफ साफ लिखा है कि मेरी नानी की दादी ने वो बागीचा आपके दादा के काश्तकारों को बिना पट्टा लिखवाए खेती करने के लिए दिया था, और आपके दादा 40 साल तक हमारी उस जमीन की कमाई खाते रहे। और फिर आप ही की तरह जब आपके दादा ने भी हमारी उस जमीन का मालिक बनने की कोशिश की, तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी।
2: देखिए, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ जो मैं आपकी इस मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर लूं।
0: मैं जानता हूँ कुमारी निकालिया, आप इतनी बुद्धिमान भी नहीं है जो किसी दूसरे की संपत्ति पर अपना हक जताना छोड़ देंगी।
2: आइवन, इस प्रशंसा के योग्य केवल आप हैं।
0: जी,
2: आपका मुंह बंद करने के लिए मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि वो सूखा सड़ा बागीचा जिसकी कीमत 300 रूबल से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं है, मैं आपको भेंट कर सकती
0: हूँ। कुमारी निकालिया, मैं आपकी उदारता का कायल हूँ, लेकिन आपको मेरी ही संपत्ति मुझे भेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगीचा तो मैं आपको भेंट कर सकता हूँ, मगर अब प्रश्न सिद्धांत का है, न्याय का है।
2: अन्याय भी ये है कि न्याय आप कर रहे हैं। 300 साल से जो बागीचा हमारे अधिकार में चला आ रहा है, आज उसे आप अपना बता रहे हैं।
0: फिर वही बात, आप किसी दूसरे की सुनती भी तो नहीं है। कुमारी निकाल गया, हुआ यूं था कि आपके परदादा के काश्तकारों ने मेरी नानी की दादी को मकान बनाने के लिए ईंटें पकाकर दी थी, इसलिए कुछ बख्शीश के तौर पर मेरी नानी की दादी ने उन्हें।
2: फिर वही दादी की नानी, नाना के दादा। अब मैं आपसे और कितनी बार कहूं कि वो बागीचा हमारा है, हमारा
0: जी है। नहीं जी, नहीं जी, नहीं, वो मेरा है। आप सुनिए तो, वो हुआ यूं था।
2: आइवन, अगर आप लगातार 2 दिन तक इसी तरह बहस करते रहेंगे और अपने घर से एक बढ़िया कोट पहनकर आते रहेंगे, तो भी ये बागीचा हमारा ही रहेगा।
0: देखा है ना सीना दूरी। कुमारी निकालिया, मैंने आज तक कभी किसी की संपत्ति पर अपना हक नहीं जताया, मैंने आज तक कभी किसी की जमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश नहीं की।
2: इसीलिए आप अपनी ईमानदारी का सिला हमसे वसूल करना चाहते हैं?
0: ओ, मेरे गले में कांटे उगाए हैं। ठहरिए, जरा पानी पी लूं तो बताता हूँ आपको। मैं फिर कहता हूँ कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है।
2: ये चीख आपकी है, मगर बागीचा हमारा है।
0: जी नहीं, वो मेरा है।
2: वो बगीचा हमारा है, और मैं आज ही अपने कारिंदों को वहाँ की सारी घास काटने के लिए भेजती हूँ।
0: क्या?
2: हाँ, मेरे आदमी अभी वहाँ पहुँच जाएंगे।
0: तो कान खोल कर सुन लीजिए, अगर मेरी धरती पर किसी ने कदम रखा तो मैं उसकी खाल में भूस भरवा दूंगा।
2: इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अंजाम से वाकिफ हैं?
0: मैं कहता हूँ इन बातों में कुछ नहीं रखा। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो बगीचा मेरा है, मेरा है, मेरा है।
2: आइवन, अगर ये घर मेरा ना होता तो आप इससे भी कहीं ज्यादा ऊंची आवाज में चीख सकते थे, चिल्ला सकते थे, दहाड़ सकते थे।
0: कुमारी निकालिया, कुमारी निकालिया, अगर मुझे दिल का रोग ना होता, अगर मेरे पुट्ठों में दर्द ना होता, तो आज मैं आपको बता देता कि किसी की संपत्ति पर आंख रखने का क्या परिणाम होता है। देखिए, अब भी भलाई इसी में है कि सीधी तरह से मान लीजिए कि वो बागीचा मेरा है।
2: नहीं, हमारा है।
0: जी नहीं, मेरा है।
2: हमारा है।
0: मैं कहता हूँ मेरा है।
1: जी क्या हो रहा है
2: बाबा? आप जरा इनकी समझ में ये बिठाइए कि हमारा वो चेरी का बगीचा किसका है?
1: हमारा है, और किसका?
0: आप अपनी बेटी की बोली में बोल तो रहे हैं, मगर कुछ पता भी है कि मेरी नानी की दादी ने यह बगीचा आपके दादा के काश्तकारों को थोड़ी सी मुद्दत के लिए ऐसे ही खेती करने के लिए दिया था, और फिर 40 वर्ष तक भी अपना पेट और आपके दादा का घर भरते रहे।
1: आइवन, तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि उन काश्तकारों ने तुम्हारी दादी को उस बगीचे के पट्टे की सारी रकम चुका दी थी। विश्वास न हो तो गांव के पटवारी से या तहसीलदार की कचहरी से जाकर मालूम कर लो कि उस जमीन का लगान आज तक कौन भरता रहा।
0: फिर तो आप सरकार को भी धोखा देते रहे।
1: धोखा? हाँ, अपनी जमीन का लगान तुमसे सरकारी खजाने में भरवा के हम तुम्हें अवश्य धोखा दे सकते थे,
2: लेकिन हमने ऐसा भी नहीं किया।
0: मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता कि वो बागीचा मेरा है और मेरे पास इसका सबूत है।
1: नहीं आइवन, तुम ये साबित नहीं कर सकते।
0: क्यों नहीं कर सकता?
1: आइवन, तुम इस भ्रम को अपने दिल से निकाल दो कि हम तुम्हारा वो बगीचा हड़प कर जाना चाहते हैं। और अगर तुमने यूं ही चिल्लपों मचाकर यह साबित करने की कोशिश की कि वो बगीचा तुम्हारा है, तो मैं उसे तुम्हारे हवाले करने की बजाय अपने किसी काश्तकार को यूं ही दे
3: दूंगा। जी हाँ क्यों नहीं, बेटी भेंट करने की बात कहती है और बाप किसी और को दे डालने की धमकी देता है। मैं पूछता हूँ किसी दूसरे की संपत्ति को आप इस तरह कैसे लुटा सकते हैं, क्या अधिकार है आपको?
1: ये तो मैं ही जानता हूँ मुझे अधिकार है या नहीं, लेकिन तुम अपनी जबान को काबू में रखो, मैं ऊंची आवाज सुनने का आदी नहीं।
3: तो हो जाएंगे, अब आपका वास्ता मुझसे पड़ा है।
1: आई बन, यूं ही आवेश में मत आओ।
3: वाह वाह, आप तो पड़ोसी होने के नाते मेरा बागीचा हड़प कर जाएं और मैं आवेश में भी नहीं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तुम चुप हो जाओ।
3: मैं तो जैसे आपके इस आदेश की प्रतीक्षा में ही था। मैं कह देता हूँ आप मेरे पड़ोसी नहीं है, मेरे पड़ोस में रहने वाले डाकू है।
1: क्या कहा?
2: बाबा, बाबा, इन्होंने आपको डाकू कहा?
1: अब मैं इसे क्या कहूँ?
3: जो मैंने आपको कहा है आप वही अपनी बेटी से भी कहिए।
2: बाबा, आप कुछ कहने के बजाय कुछ कीजिए।
1: मैं कुछ करूँ?
2: हाँ।
1: लेकिन मैं क्या करूँ?
2: आप अपने कारिंदों से कहिए कि वो बागीचे की सारी घास खोद लाए।
3: खोद लाए? कुमारी नितालिया, घास खोद लाना इतना आसान नहीं है।
1: इस बारे में आप अधिकार से बात कर सकते हैं।
3: आप मेरी यूं खिल्ली ना उड़ाइए, मैं अब इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा।
2: और जब इंसाफ होगा आप अदालत का दरवाजा तोड़ डालेंगे।
1: क्योंकि तुम इंसाफ उसे मानते हो जो इंसाफ के साथ खुद बड़ी बेइंसाफी।
3: हाँ, इसका फैसला अब अदालत में ही होगा।
1: आइवन, मैं तुम्हारी मुकदमेबाजी की लत से वाकिफ हूँ और मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पुरखों की सारी जिंदगी अदालतों में ही।
3: देखे, मेरे पुरखों का अपमान मत कीजिए, उनकी ईमानदारी के चर्चे आज भी लोगों की जबान पर हैं। हाँ, आप अपने चचा की ईमानदारी का डंका जरूर बजाइए जो गबन के अपराध में आज भी जेल में आटा पीस रहे
1: हैं। तुम्हारा तो दिमाग चल गया।
2: इनके घराने में ठीक किसका था?
1: हाँ, इसका दादा संकी।
3: हाँ, दादा संकी था। आपकी माँ का भी तो ऊंट की तरह कोहान निकला हुआ था। मेरा दिल पानी।
1: अरे तुम्हारा तो बाप पत्तेबाज था, क्रॉसवर्ड पजल भरा करता था।
2: आपकी नानी के मुंह में जबान नहीं तो तैयार मिर्च थी और वो हर किसी को काटने को दौड़ती थी।
0: मेरी बहन ठंड के था जन लगे।

0: तुमने खुद नहीं देखा कि वो रीच का बच्चा कैसा छैला बनकर आया?
1: वो मुझसे ब्याह करना चाहते थे।
0: अरे अरे क्या हुआ बेटी नितालिया, क्या हुआ?
1: बाबा बाबा उन्हें बुला लाइए, अभी बुला लाइए।
0: क्या अब उसे मैं बुलाना जाऊं?
1: हाँ बाबा अभी जाइए, अभी जाइए बाबा। ओह, मेरा सर चकरा रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है।
0: अरे मगर बेटी, अभी हमने उसे यहाँ से इतने शानदार स्वागत से निकाला और अब वो दोबारा यहाँ आने के लिए कभी नहीं मानेगा।
1: बाबा आप अभी जाकर उन्हें किसी भी तरह मना लाइए, मैं उनके
0: अरे बेटी नितालिया होश में आओ, ये क्या पागलपन है? हे भगवान, अब मैं कहाँ डूबने जाऊँ?
1: इससे पहले उन्हें बुला लाइए।
0: जाता हूँ बाबा, जाता हूँ, जा रहा हूँ।
1: आज उन्होंने फर का कैसा बढ़िया कोट पहन रखा था, फिर भी हमने उनका ऐसा सम्मान किया। कौन जाने अब वो आएंगे भी या नहीं।
0: नितालिया बेटी, हेलो, अब तुम अच्छी हो जाओ, वो आ रहा है। कम वक्त अभी सीढ़ियों पर ही था, मगर अब मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, अब मैं तुम्हारे मामले में कभी नहीं बोलूंगा, तुम जानो और वो जाने।
1: वो कब आएंगे?
0: अरे भाई उसके पर नहीं, पैदल आ रहा है।
1: आप उन्हें उठा कर क्यों नहीं ले आए?
0: ओ भगवान, तुम एक अच्छे भले आदमी को बेटी का बाप क्यों बना देते हो? मेरी तो मिट्टी खराब हो गई।
1: कैसे?
0: तुम्हारे कारण पहले मैंने उसे जली कटी सुनाई, उसे अपमानित किया और फिर उसे खड़े खड़े अपने घर से बाहर निकाल दिया। और अब
1: क्या क्या मेरे कारण?
0: और नहीं तो क्या?
1: बाबा अब आप मेरे साथ वैसा व्यवहार ना कीजिए।
0: अच्छा बाबा अच्छा, सारा दोष मेरा ही था। एक बेटी का बाप निर्दोष हो ही कैसे सकता है, और फिर वो भी अपनी बेटी की नजर में। लो वो आ गया और मैं अपने कमरे में जा रहा हूं।
2: मेरा दिल बड़े शोरों से धड़क रहा है
1: और मेरे दिल को बड़ा चैन मिला है आपको यहाँ अपने पास देखकर।
2: वो बगीचा मेरा है।
1: जी हाँ, वो बगीचा सचमुच आप ही का है। आपके जाने के बाद मुझे याद आया।
2: मेरी टांगें सुन्न हो गई हैं, लेकिन वो बगीचा मेरी नानी की दादी से पहले भी हमारा था।
1: जी हाँ जी हाँ, हमसे भूल हो गई, आप कृपया क्षमा कर दी।
2: बात असूल की थी, सिद्धांत की थी, नहीं तो आप जाने सूखा हुआ बगीचा जो कभी हरा नहीं हुआ चीज ही क्या है।
1: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब आप कोई और बात कीजिए।
2: तो ठीक है, लेकिन देखिए ना, इसके अतिरिक्त मेरे पास ऐसे कई प्रमाण पत्र हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि मेरी नानी की दादी ने आपके दादा के काश्तकारों को।
1: जाने दीजिए, मैं अपनी भूल पर पहले ही बहुत लज्जित हूँ। ये बात कैसे चलाऊं? आप शिकार खेलने के लिए कब जा रहे हैं?
2: मैं फसल की कटाई के बाद मैं मुर्गाबी का शिकार खेलने जाऊंगा, लेकिन अब मैं क्या शिकार खेलूंगा?
1: क्यों?
2: अपने डब्बू को तो आपने देख ही रखा है ना, उस बेजबान की अब टांग भी टूट गई है।
1: ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ।
2: जी,
1: मगर उसकी टांग टूट कैसे गई?
2: ठीक से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे डब्बू की टांग किसी कुत्ते ने ही तोड़ी है, क्योंकि कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है। और मेरे डब्बू की टांग क्या टूटी, मुझे यूं लगता है जैसे मेरी ही कमर टूट गई हो। मैंने उसे बड़े लाल प्यार से पाला था और अब जब मुझे उसकी जरूरत थी वह बेचारा अपाहिज हो गया। भाग्य पर किसी का जोर नहीं चलता।
1: डब्बू आपने लिया किससे था?
2: अजी, ये पहले मेरे नोब के पास रहता था, तब ये अभी ढंग से भौंकना भी नहीं सीख पाया था कि इत्तफाक से इस पर मेरी नजर पड़ गई और मैं इस पर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो गया। उधर मेरे नोब इससे बिछुड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने मेरे नोब के सामने 125 रूबल का ढेर लगा दिया तो वो कुछ न कह सका।
1: 125 रूबल?
2: हाँ, आपको अचंभा हुआ?

0: किया, इतने में तो हाथी आ जाता।
1: कुमारी निथालिया, मैं इसे हाथी का बच्चा ही समझ कर लाया था।
0: तब आपने कुत्ते के नहीं अपनी समझ के दाम चुकाए थे, नहीं तो मेरे बाबा मेरे लिए कालू 50 रुपए में लाए थे। और हमारा कालू आपके डब्बू से 1000 गुना अच्छा है।
1: मुझे तो इस पर भी संदेह है कि आपको 1000 तक गिनती आती है, नहीं तो आप अपने कालू का मेरे डब्बू से कभी मुकाबला नहीं करती।
0: मुकाबला हो ही कैसे सकता है, शेर का भेड़ से क्या मुकाबला।
1: जी
0: आइवन, हमारा कालू अभी बच्चा है। हाँ। एक पूरा कुत्ता बनने में उसे कुछ समय लगेगा, लेकिन अब भी हमारे सारे प्रांत में ऐसा कोई कुत्ता नहीं जो जीदारी और फुर्ती में हमारे कालू का सामना कर सके।
1: तो सुन लीजिए कुमारी निथालिया, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कालू का जबड़ा बहुत छोटा है और ऐसे कुत्ते बच्चों की गेंद भी उठाकर नहीं ला सकते।
0: जबड़ा छोटा है?
1: जी
0: ये बात भी मैंने आज पहली बार सुनी है।
1: विश्वास कीजिए, आपके कालू का निचला जबड़ा उसके ऊपर के जबड़े की अपेक्षा बहुत छोटा है।
0: क्या आपने उसे कभी नाप कर देखा है?
1: मैं अब नाप कर दिखा सकता हूँ, आप उससे अपनी टांग पर कटवाइए। वैसे मैं ये मानता हूँ कि ऐसे कुत्ते जिनके जबड़े छोटे होते हैं वे दौड़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन शिकार पर उनकी पकड़ अच्छी नहीं होती।
0: जरा ये भी फरमाइए, आपका वो लंगड़ा खाज का मारा डब्बू
1: जी
0: किस राजघराने में से है, किस कुल का दीपक है?
1: आपको जब जरूरत होगी तो मैं आपको उसका गोत्र तक बता दूंगा, उसकी जन्म कुंडली भी दिखा दूंगा। अभी तो इतना ही सहन कर लीजिए कि डब्बू उस किस्म का कुत्ता है जो अपने मालिक के लिए आर्थिक संकट की स्थिति में समुद्र से मोती निकाल कर ले आते हैं, और आपका वो कालू घर वालों को काटे और चोर के आने पर दुम दबा कर भागे।
0: स्वामी भक्ति की ऐसी परिभाषा केवल आप ही कर सकते हैं, मगर हमारा कालू ऐसा नहीं है।
1: ना ऐसा नहीं है तो ऐसा वैसा होगा।
0: आप होंगे, होंगे क्या आप हैं?
1: जी
0: भला ये भी कोई बात है, पहले हमारे बगीचे को अपना बताया और अब अपने खाज मारे लंगड़े डब्बू को हमारे कालू से बढ़िया बता रहे हैं।
1: अच्छे को तो अच्छा कहा ही जाएगा।
0: लेकिन आप ऐसा कह नहीं रहे, आपका दिल मानता है कि हमारा कालू कुत्तों का बेताज बादशाह है, लेकिन आप फिर भी अपने लंगड़े की शान बघारे चले जा रहे हैं।
1: यही बात तो मैं अपने डब्बू और आपके बारे में भी तो कह सकता हूँ।
0: लेकिन सच क्या है?
1: आप ही कहिए कि आपके कुत्ते का जबड़ा छोटा नहीं।
0: कहाँ छोटा है?
1: छोटा है।
0: नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मेरा मेरा बस चले तो मैं आपके डब्बू को कमेटी वालों से गोली लगवा।
1: और मेरा बस चले तो मैं वही गोली।
0: आपको कुत्तों के बारे में इतना ही पता नहीं है कि
1: वो मेरा दिमाग फट रहा है। अब आप चुप हो जाइए।
0: जब तक आप ये ना मानेंगे कि हमारा कालू आपके डब्बू से 1000 गुना बढ़िया है, मैं कभी चुप नहीं होऊंगी।
1: यही बात है तो बेशक चिल्लाइए, चीखिए, लेकिन मैं आपके उस मरियल कुत्ते की शक्ल के मेमने को कुत्ता नहीं कहूंगा। अगर वो आपकी संगत में कुछ दिन और रह गया तो वो दिन दूर नहीं जब वो बावला हो जाएगा। ओ मेरा कंधा, मेरी आंखें, अरे कनपटी कनपटी कनपटी।
0: और आपका कुत्ता तो जैसे टांग तोड़वा कर अमर हो गया है और अब उसे कुछ होगा ही नहीं।
1: मैं कहता हूँ खामोश हो जाइए, दुख से मेरा दिल फटा जा रहा है।
0: अब मैं चुप नहीं होंगी। हाँ।
1: अरे अरे अरे, ये फिर क्या हो रहा है?
0: बाबा बाबा, आप सच सच कहिए, हमारा कालू अच्छा है या इनका लंगड़ा?
1: पहले आप ये बताइए, आपके कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं? पक्षपात किए बिना कहिएगा कि कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं।
2: है, लेकिन फिर क्या हुआ पता है? हमारे कालू जैसा बढ़िया कुत्ता सारे प्रांत में नहीं।
1: मेरे डब्बू को छोड़कर आप ऐसा दावा जरूर कर सकते हैं।
2: तुम्हारा डब्बू भी बड़ा गुणवान है। उसके कान खड़े और शरीर गठीला है। पिछली टांगे पतली लंबी सुडोल है, लेकिन उसमें दो ऐसी त्रुटियां हैं जिसके कारण उसे कुत्ता कहना एक अच्छी नस्ल के कुत्ते का अपमान कर।
1: देखिए देखिए देखिए, मुझे दिल की बीमारी है, वास्तविकता को झुटलाने की कोशिश न कीजिए। कुत्तों की वार्षिक दौड़ में मेरा डब्बू राजा साहब के कुत्ते के बराबर रहा था और आपका वो कालू दौड़ दौड़ कर पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया।
2: तो बेचारा और क्या करता, दौड़ शुरू होने से पहले राजा साहब के कारिंदे ने उसे हंटर जो मारा था।
1: अरे काश वो उसे गोली मार देता।
2: आइवन, ये भूलो कि तुम्हें दिल की बीमारी है। हाँ। और मुझे गुस्सा बहुत आता है। और गुस्से की हालत में मैं बुरा भला बल्कि आप अपने कुत्ते की हिमायत में मुझे धमका रहे हैं।
1: अरे मेरा दिल फिर बड़ा जोर धड़कने लगा। अरे हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल,
0: हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। इस दिल से ये जंगल में शिकार खेलने जाएंगे बाबा। अजी आप, मैं कह रही हूँ रसोई घर में बैठकर मक्खियाँ मारा कीजिए।
2: मक्खियाँ उड़ाने के लिए कहो बेटी, इनका दिल बड़ा कमजोर है। आइवन, मैं तुम्हें जंगल में जाकर शिकार खेलने से रोकता नहीं। जहाँ पर

0: सकता कोई जानवर तुम्हारा शिकार बनने से पहले तुम्हें ही अपना शिकार बना डाले।
1: अरे शिकारी को जानवर अपना शिकार बना ले और जानवर को अपना शिकार मैं बना लूं, ऐसा भी हो सकता है अगर किसी रात आप मेरे साथ जंगल में शिकार खेलने चले।
0: आइवन, मुझसे ऐसी बातें कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
1: जब आप मुझसे ऐसी बातें बड़े गर्व से कहते हैं तो मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए?
0: तुम्हारा तो सर फट
1: गया। हां, देर ही कितनी लगती है, लेकिन कारण भी तो बताइए।
0: एक मूर्ख क्या समझेगा,
1: और जो स्वयं न समझ सके और दूसरों को समझा न सके उससे तो आप कुछ कहेंगे नहीं।
0: मैं कहता हूँ जहर उगलने से बाद आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा।
1: आप क्या सिर फाड़ेंगे, गलियों में बच्चे तक जानते हैं। अरे मेरी जान, कि आपकी पत्नी भरे बाजार में आपको पीट दिया करती थी।
0: और तुम भी तो अपनी उस नौकरानी से छिपते फिरते हो।
1: मेरी टांगे, मेरी टांगे आ गई, मेरा दिल, मेरा दिल कहाँ टूट गया। डॉक्टर, डॉक्टर,
0: कमीना, बेशर्म,
1: डॉक्टर,
0: गधा,
2: घोड़े पर सीढ़ी लगाए और स्वयं को शिकारी कहलवाए। पापा, जरा देखिए तो इन्हें हुआ क्या है। आइवन, आइवन, बाबा, आइवन चले गए।
3: क्या? नितालिया, नितालिया, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो। तुम, मेरा दिल फिट नहीं रहा। बेटी, तुम मेरा एक काम करो।
2: क्या बाबा?
3: मुझे मेरा पिस्तौल ला दो।
2: जाने दीजिए बाबा, अब आप मरे को क्या मारेंगे।
3: अरे बेटी, मैं पिस्तौल अपने लिए मंगवा रहा हूँ।
2: अपने लिए?
3: हाँ, मैं आत्महत्या कर लूंगा।
2: नहीं नहीं नहीं बाबा, नहीं।
3: अरे पिस्तौल नहीं तो मुझे चाकू भी ला दो, मैं अपना गला काट लूंगा।
0: ना तो ना।
3: अरे आइवन तो अभी जिंदा है। आइवन
2: जिंदा है।
3: लो लो, पानी पी लो, पानी पी लो।
0: मैं कहाँ हूँ?
4: तुम जहन्नुम में हो जो तुम्हारे आने से पहले जन्नत थी। हाँ? अब तुम घर से उठ के बैठो और नितालिया से ब्याह कर लो।
0: हाँ? क्या?
4: हाँ बाबा, हाँ, नितालिया ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है और वो तुम्हें बहुत चाहती है।
0: क्या सच?
4: चुप चुप। नितालिया बेटी, लाओ अपना हाथ इधर लाओ।
2: बाबा।
4: आइवन
0: जी, ये लो,
4: नितालिया का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ और अब तुम लोग मेरा पीछा छोड़।
0: ओ बाबा, मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। बाबा, मैं बिल्कुल अच्छा हो गया।
4: अच्छा?
0: जी हाँ। तो वो बात क्या थी? मुझे कुछ कुछ तो याद आ रही है।
2: जी, मैं बताऊं? मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
4: और मेरा भी जी का जंजाल कटा।
0: हाँ याद आ गई, ये आपको मानना पड़ेगा कि मेरा डब्बू आपके कालू से कई गुना बढ़ गया है।
2: ये कई गुना घटिया है।
0: जी नहीं,
2: ये आपको मानना पड़ेगा।
0: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
2: मैं कहती हूँ घटिया है।
0: जी नहीं, मैं कहता हूँ बढ़िया है। मैं कहता हूँ बढ़िया है।
2: बढ़िया नहीं है, घटिया है।
0: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
4: तुम लोग भी
0: है। जी है,
4: मैं ही।

अभी आप सुन रहे थे इंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में सन 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: बॉम्बे टॉकीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप सेन साहब। पिछले भाग में हमने आपके कुछ गीतों पर, आपके संगीत पर चर्चा की थी, तो आइए आज फिर से आपकी संगीत यात्रा पर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिलीप साहब, बात हो रही है आपकी संगीत रचना पर। आपने इतने गीत अब तक बना दिए हैं, तो 90 के दशक में आप लोग जब लाइव म्यूजिशियंस और क्रिएटिव सिटिंग्स के जरिए गाने बनाते थे, हाँ, और किसी एक साज वाले से गलती हो जाती थी तो पूरा गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता था, इस तरह से काम हुआ है, हाँ, इसमें क्या तकलीफें आती थी?
2: तो देखिए, आज जो टेक्निक है ये क्लिक पे रिकॉर्ड होता है।
1: हाँ,
2: पहले वो क्लिक ले लेते हैं, टक टक टक टक, प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो वो ऑलरेडी बज चुका है, अब उसको सुन के लोगों को बजाना है, समझ गए?
1: जी।
2: हमारे वक्त ऐसा नहीं होता था।
1: जी।
2: हमारे वक्त क्या, जैसे अभी गाना शुरू हुआ, वो जैसे गोरी चोरी चोरी कहाँ जाए पता, तेरा टाका बिगड़ा हमको है पता, कैसे आंखें लड़ी कैसे बात बड़ी, कैसे चुभा तुझे कुछ हुआ तुझे, हमको ना बनाना रे, हमसे ना छुपाना रे, गोरी चोरी चोरी मेरी नींद गई मेरा चैन गया, कब जब होश ना था कुछ बात हुई हाय मैं, ये जैसे गया।
1: हाँ।
2: अब आंखों की बनी तनम को बहुत भाव गई, राजन से मिलके घड़ी दो घड़ी में मैं देखो चली आ गई, कहां लाली गई। अब ये जो आता है,
1: हाँ,
2: यहां से क्या होता है, हल्का सा टेम्पो बढ़ जाता है,
3: की है
4: के बारे

हालातों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगभग 200 रुपए की कटौती की है। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ओडिशा में महानदी में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। निचले इलाकों में कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप इसे सुन रहे हैं और वक्त है कुछ प्यारे से फिल्मी गीतों का. पहुंचा रही हूं आप तक 1970 एक हिंदी रोमांटिक फिल्म का गीत. फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं. सुरेश सैगल द्वारा निर्मित और रमेश सैगल द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नजर आए धर्मेंद्र, साधना, बिस्वजीत, कामिनी कौशल, लीला मिश्रा, अभी भट्टाचार्य, जगदीप, नादिरा और हेलेन. वेल, इस फिल्म में धर्मेंद्र और साधना ने एक रोमांटिक पेयर के रूप में काम किया और माना जाता है कि जी एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें इन दोनों सुपरस्टार्स ने एक साथ काम किया और क्या खूब काम किया और गीत भी क्या खूब है. पहुंच रहा है आप तक, गाया है लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी साहब.

पहुंच रहा है आप तक इन्हीं दो प्यारी आवाजों में अगला गीत फिल्म धरती से 1970 की ही ये फिल्म है, एक एक्शन फिल्म है। इसे सी वी श्रीधर जी ने लिखा, निर्देशित भी किया। राजेंद्र कुमार, वहीदा रहमान और शिवाजी गणेशन मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। और कमाल की बात, 1969 में बनी तमिल भाषा की फिल्म शिवंदा मन का रीमेक है ये बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म धरती।

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
1: the Delhi Subordinate Services Selection Board, DSSSB, Government of NCT of Delhi, has invited online applications from eligible applicants of postcode 9009 year 2009 recruitment for participation in the ongoing recruitment process for 606 vacancies of Grade 2 Assistant Section Officer under postcode 804/26. The special online link will remain open till 17th August 2026. Applicants who have not previously registered on the DSSSB Online Application Registration Systems OARS must complete registration before applying. Candidates should note that this special link is only for 2009 applicants under the postcode 90/09 and is applicable only for 606 Grade 2 GNCTDSS Assistant Section Officers vacancies. Applicants must upload proof related to postcode 90/09 such as original application form, acknowledgement postcard or Tier 1 and Tier 2 examination admit card. Applications containing false information, incorrect claims or fabricated documents may lead to cancellation of candidature and further actions as per rules. For complete details and online application, kindly visit the official DSSSB websites. That is at www.dssb.delhi.gov.in. Or you could also go on to www.dssbonline.nic.in. The Office of the Development Commissioner of Handlooms, Ministry of Textiles, Government of India has invited applications from eligible officials for filling up various general central service posts on deputation basis. The vacancies include 3 posts of assistant, 3 posts of stenographer grade 1 and 2 of upper division clerk. The posts carry pay scales as per the 7 CPC pay matrix with assistant and stenographer grade 1 posts in level 6. The upper division clerk post in level 4. Eligible candidates should submit their applications through proper channel in the prescribed format within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For detailed eligibility criteria and application format, kindly visit the official website, that is at www.handlooms.nic.in. The Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Missouri, under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India, has invited applications for 1 post of administrative officer accounts on deputation, including short-term contract basis. The post is classified as per General Central Service Group B gazetted, non-ministerial and carries pay level 7. Interested and eligible candidates should submit their applications in the prescribed format within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Details regarding eligibility conditions, duties, age limit and required documents are available on the official website. Kindly do refer to www.lbsnaa.gov.in/vacancies. I repeat the website, it is www.lbsnaa.gov.in. The Department of Science and Technology, DST, Ministry of Science and Technology, Government of India, has invited applications for 2 temporary posts of Scientific Attaché Group A, gazetted on deputation, including short-term contract basis. 1 each at the Indian missions in Tokyo, Japan and Berlin, Germany. The posts carry pay level 13A for a period of 3 years. Eligible applicants include scientists, technologists from central or state governments, universities,
2: रोजगार के अवसर पैदा करें। दोस्तों, कभी आपने सोचा भी है सशक्त बनने का मार्ग क्या है? तो दोस्तों, सशक्त बनने के लिए शिक्षा, कौशल और मेहनत बहुत आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति को सही और गलत पहचान कराती है, जबकि कौशल उसे रोजगार और आत्मविश्वास पैदा करता है। जो व्यक्ति अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान कर मेहनत करता है, वह निश्चित रूप से सशक्त बनता है। महिलाओं की आत्मनिर्भरता भी समाज में विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर बनती हैं, तो परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं। आज महिलाएं शिक्षा, व्यापार, विज्ञान, खेल और राजनीति जैसे हर एक क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर रही है। साथियों, यदि हम बात करें कि आज के समय में युवाओं की भूमिका क्या है, तो दोस्तों, देश के युवा आत्मनिर्भर बनेंगे तो राष्ट्र तेजी से प्रगति करेगा। युवाओं को नौकरी के पीछे भागने के बजाय नए कौशल सीखकर स्वरोजगार की ओर भी ध्यान देना चाहिए। कृषि, हस्तशिल्प, डिजिटल तकनीक, छोटे उद्योग और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। आत्मनिर्भर युवा ही देश को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। मित्रों, आत्मनिर्भरता ही सशक्त जीवन का आधार है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है, वह मेहनत से आगे बढ़ता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। हमें शिक्षा, कौशल और आत्मविश्वास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनना चाहिए तथा दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। जब हर नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगा, तभी हमारा देश वास्तव में मजबूत और विकसित राष्ट्र बन सकेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की प्रस्तुतियाँ, बातें और गीत संगीत आपको पसंद आया होगा। अब दीजिए अनुमति अपने मित्र युवराज को, फिर से होगी मुलाकात अगले सप्ताह नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।

इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी। वाचन स्वर युवराज की थी और प्रस्तुति प्रभु शरण की। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगले कार्यक्रम को आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगले कार्यक्रम से पूर्व आइए आज के कुछ कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते चलें। अब से कुछ देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम होगा सांझ सरगम।

संध्या 5 बजे और संध्या 6 बजे आप सुना करते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार और संध्या 7 बजे का वक्त हुआ करता है प्रादेशिक समाचारों का। पांच बजकर 2 मिनट पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवावाणी। कार्यक्रम में आज आप फिल्म संगीत के साथ साथ इतिहास में आज का दिन, रोचक तथ्य और समसामयिकी के विषय में जानकारी ले पाएंगे।

6:02 पर कार्यक्रम होगा श्रमिक लोग। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा विश्व स्तनपान सप्ताह, मां का दूध सर्वोत्तम आहार। आपको जानकारी दी जाएगी पुरुषोत्तम दास टंडन के संबंध में, साथ ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के संबंध में। लघु उद्योग रोजगार में सहायक, इस विषय पर भी आपको जानकारी दी जाएगी।

किसान वाणी। इस कार्यक्रम का वक्त हुआ करता है संध्या 6:02 पर। कार्यक्रम में आज के लिए चर्चा का विषय होगा मिट्टी जांच की उपयोगिता। आज की बात में आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे डॉक्टर परवेज आलम से धान के समेकित रोग प्रबंधन के संबंध में। साथ ही डॉक्टर परवेज आलम ही आपको जानकारी देंगे धान रोपाई की उचित विधि और इसके देखभाल के संबंध में। हमारी दुनिया कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा सकारात्मक सोच रखें। आप सुन सकेंगे कुरमाली लोकगीत, नागपुरी लोकगीत और साथ ही वार्ता शिक्षित महिला विकसित राष्ट्र। वार्ताकार होंगी गीता कुमारी सिंह।

7:15 पर आप सुनेंगे हो लोकगीत, कलाकार होंगे दुखू सिंह हो और साथी। सात बजकर 20 मिनट पर आज के दिन यानी शनिवार को आप सुना करते हैं क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय समाचार। आप सुन सकेंगे क्रमशः नागपुरी, उरांव, मुंडारी, हो एवं संथाली भाषा में क्षेत्रीय समाचार। समाचार ध्वनि चित्र, इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे इसी सभा में 7:45 पर। रात्रि 8 बजे संसद में इस सप्ताह 8:15 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा में, 8:30 पर कार्यक्रम सुर्खियों में, 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9 और 9:15 पर उर्दू में समाचार। श्रोता इस समय हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम, कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं ऐसा भोसले और मोहम्मद रफी को फिल्म कुर्बानी में। शब्द रचना इंदिवर की है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम सांझ सरगम में आगे सुनते हैं। फिल्म साजन में कुमार शानू और अलका याग्निक को, शब्द रचना समीर की है, संगीत नदीम श्रवण का।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका।

से। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं कुमार शानू को फिल्म आशिकी में। शब्द रचना समीर की है, संगीत नदीम श्रवण का।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी को। शब्द रचना समीर की है, संगीत नदीम श्रवण का।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 और 10 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में आदिवासी कला, संस्कृति, शिल्प और व्यंजनों के प्रदर्शन के लिए

0: मास्क और निःशुल्क स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनके लिए 3 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं। कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षणों में ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल, ट्राइबल फैशन शो, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और भव्य आदिवासी शोभा यात्रा शामिल है। दिशम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि 4 अगस्त को पूरे राज्य में श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। झामुमो ने राज्य के सभी 24 जिलों में श्रद्धांजलि सभाओं की व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्य कार्यक्रम रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित लुकैया टाड़ में होगा, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुजी की 14 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्य आयोजन स्थल पर करीब 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। जमशेदपुर के 2 मुहानी नदी संगम तट पर 1 पौधा भविष्य के नाम अभियान के तहत पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और पद्मश्री चार्मी मुर्मू ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर दोनों ने लोगों से अधिक पेड़ लगाने और उनका संरक्षण करने का आह्वान किया। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित घोटालों और अनियमितताओं के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज गिरिडीह में आक्रोश पैदल मार्च निकाला। पपरवा टांड से शुरू हुआ मार्च समाहरणालय पहुंचा, जहां प्रदर्शन के बाद उपायुक्त रामनिवास यादव को ज्ञापन सौंपा गया। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल मूरी रेलखंड में तिरुलडीह और बकारकुड़ी रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक चानो गांव का निवासी था और कुछ समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ था। सावन की पहली सोमवारी को लेकर रांची पुलिस ने शहर के प्रमुख शिवालयों और कांवड़ मार्गों पर व्यापक सुरक्षा एवं ट्रैफिक प्रबंधन की व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए करीब 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी तथा सीसीटीवी, बाइक पेट्रोलिंग और सादे लिबास में पुलिसकर्मियों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 MHz पर। शाम के 5:02 हो रहे हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण के बारे में जानते हैं।

अब से कुछ देर बाद यानी कि 5:05 पर सुनेगा कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के इस गुलदस्ता कार्यक्रम में आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम, फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। 6:00 होगा मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 6:02 पर आप सुनेंगे बंगला कार्यक्रम सात रंग। 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य, इसमें आज भेंटवार्ता होगी डायबिटीज यानी मधुमेह कारण व बचाव, डॉक्टर सौम्य सेन गुप्ता डायबिटीज विशेषज्ञ चाईबासा। 6:55 पर हम आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:15 पर सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम, श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम, कार्यक्रम आपकी पसंद। 7:30 पर होगा कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। चर्चा होगी वर्षा जल का समुचित प्रयोग। लोकगीत होगा बाबूराम सोय और साथियों के स्वर में। एक और पंच परगनीय लोकगीत सुनिए इस कार्यक्रम में ब्रजमोहन लोहार और साथियों के स्वर में। 8:00 आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर सुनिएगा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 में हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के रांची क्षमा करेंगे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। 9:15 पर सुनिए आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 10:00 होगा गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 पर सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। 11:00 हिंदी में समाचार होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में, और 11:10 पर हमारी सभा संपन्न होगी। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz से। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम गुलदस्ता का। गुलदस्ता कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गजल से। गायक लगा रहे हैं लता मंगेशकर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 870-001-4242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
2: अगला गीत है फिल्म ठोकर से, गायक कलाकार हैं मुकेश।

अभी आपने सुना फिल्म दो वजन का ये नगमा, आवाज़ थी आशा भोसले की। और आइए सुनते हैं वक्त में आशा भोसले को।

आप तो ऐसे ना थे, इस फिल्म का गाना आपने सुना, आवाज़ें थी हेमलता की। श्रोताओं, इसके साथ ही हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गाने। पहला गाना है फिल्म अवतार से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। श्रोताओं, आज किसानवाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 से 8 बजे। और आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म बॉर्डर से। गायक कलाकार हैं सोनू निगम और रूप कुमार।

श्रोताओं, इसके साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz से। और आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देशभर के 10,000 स्थानों पर युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। माय भारत की राज्य निदेशक ललिता कुमारी और उपनिदेशक श्वेता सिंह ने बताया कि रांची में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि चयनित युवाओं को 14 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय नशा मुक्ति युवा सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिलेगा। गिरिडीह के नक्षत्र वन में आज नगर विकास मंत्री सुदिव्या कुमार ने पौधा लगाकर वन महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि पचम्बा से सटे कल्याणडीह में बनने वाला 28 एकड़ का रॉक गार्डन मॉर्निंग वॉक और पर्यावरण संरक्षण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित घोटालों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की धनबाद जिला इकाई ने आज मेमको मोड़ से उपायुक्त कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकाला। प्रदर्शन के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन धनबाद के उपायुक्त को सौंपा। रांची नगर निगम में आज महापौर रोशनी खलको की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तावित सखवा महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में उप महापौर नीरज कुमार और सभी वार्डों के पार्षद शामिल हुए। महापौर ने बताया कि महोत्सव के तहत सखुआ के साथ महुआ, पलाश, कुसुम, डाहू सहित स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। युवा व्यवसायी शुभम साहू की हत्या के विरोध में चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर आज लोहरदगा में बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान जिले के प्रमुख बाजारों में दुकानें बंद रहीं और बस, ट्रक सहित अधिकांश व्यवसायिक वाहनों का परिचालन प्रभावित रहा, जबकि रेल सेवा सामान्य रही। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा अपराधी फरार हो गया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रमेश दास। कैसे हैं श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आइए आज हम सबसे पहले बातें करते हैं डायबिटीज़ यानी मधुमेह पर। डायबिटीज़ जो है खून में शुगर का स्तर बढ़ने की स्थिति है, जो मुख्य रूप से अनुवांशिकी खराब खान पान और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण होती है। इसके मुख्य लक्षणों में बार बार पेशाब आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना और जल्दी थकान होना शामिल है। श्रोताओं, अगर हम देखें तो डायबिटीज़ के मुख्य कारण हैं पारिवारिक इतिहास अगर हो, जैसे माता पिता या परिवार में शुगर की बीमारी होने पर बच्चों में इसका खतरा रहता है। अगर आपका शरीर बहुत मोटा है यानी मोटापा है आप में, तो शरीर और पेट पर अत्यधिक चर्बी जमने से इंसुलिन सही से काम नहीं कर पाता। और अगर आप सुस्त जीवन शैली अपनाते हैं, यानी अगर रोजाना कसरत या शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं, तो ऐसे में जरा आप सचेत रहें। और खास बात मैं बता दूं कि गलत खान पान से भी होता है। जंक फूड, मीठी चीज़ें और अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन, ये हमारे लिए खतरनाक है, यानी डायबिटीज़ के हम शिकार हो सकते हैं। तो आइए इस पर हम कुछ विशेष जानकारी लें, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण संदेश लें।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: आले नवागे नहर में ना बले नवा नुकान परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहेगी आम बले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: मरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ मना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आई ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखंड बात हो जाए
5: तुम लोग बुरा मिसिंग काम सोए अनिता थाम सोए भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में नहीं है यापा में रियो तपा में रियो वाह बेटा मिका
6: अन्याम तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्याम हम दो कोदमरी कोड़ा उरो पटन पटन तुम कितमई कोड़ा मुनि में बुरी ने बागिया तो कि दुना से आरती कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमे बुरुरन गोया तब जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया अलिंग मुनि सुरेन पे ते आपी लेता ना
7: लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुराते ससन का है वो आगे बिटा उरेन का आले आया न तुम कहीं न अपील लेता।
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
9: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: श्रोताओं, इस भाग दौड़ की जिंदगी में हमें कहां फुर्सत मिलता है कि हम अपने स्वास्थ्य पर नजर रख पाए, ना खाने का समय, ना कसरत करने की, या फिर अपने शरीर को किस तरह हम देखभाल करें ताकि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख पाएं, इसकी भी फुर्सत कहाँ होती है। ऐसे में आहिस्ता आहिस्ता हमारे शरीर में कई बीमारियां हो जाती है, और ख़ासकर अभी के परिवेश में अगर हम देखें तो डायबिटीज़ बहुत ही खतरनाक रूप में सभी लोगों में प्रायः पाया जा रहा है। तो क्यों ना आज हम डायबिटीज़ पर कुछ विशेष जानकारी लें, और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सौम्य सेनगुप्ता जो डायबिटीज़ के विशेषज्ञ हैं, काफ़ी वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारा आज का ये आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नमस्कार।
12: नमस्कार।
11: सबसे पहला प्रश्न तो यही करेंगे कि ये जो डायबिटीज़ है क्या?
12: देखिए, सर्वप्रथम ये बोलना चाहूँगा कि डायबिटीज़ यानी इसका नाम मधुमेह है, इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये होता क्यों है। लोगों का सोचना है, लोगों का धारणाएं हैं कि अधिक शर्करा या अधिक चीनी या अधिक अगर हम मीठा खा लेंगे तो डायबिटीज हमको होगा, अगर नहीं खाते तो नहीं होगा, ये सरासर गलत है। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि शरीर में एक इंसुलिन नामक एक हार्मोन जो बनता है वो बन नहीं पाता है, और बनता भी तो है जितनी मात्रा में बननी चाहिए वह उत्पन्न नहीं होता है। ये एक डिफेक्ट है, एक शरीर का कमजोरी है जिसका कारण बहुत सारे हैं। अवश्य जो गलत धारणाएं जो हैं वो तो सरासर गलत है, ये एक डिफेक्ट है, जैसे कि ये पीढ़ी पे दौड़ता है। अगर माता पिता आपको अगर है तो हो सकता है कि संभावना 66% संभावना रहता है कि संतान पर वो आए, ना भी हो सकता है, हो सकता है कि दूसरी पीढ़ी में आए, ये एक हो गया। दूसरा जो हो है, हम लोग जो खास करके एशियन जो आते हैं, एशियन में एक कंडीशन होता है जिसको बताया जाता है कि विसेरल फैट, यानी गौर कीजिएगा एक बात पर, हम भारतीयों का जो पेट अक्सर बड़ा रहता है बनिस्पत अपना हाथ और पैर की अपेक्षा। अगर वही चीज़ अगर हम यूरोप यानी अमेरिका की विदेशियों को देखते हैं, उन लोग में मोटापा रहता है तो शरीर सब तरफ से फुला रहता है। ये जो पेट में जो ये जो मेद यानी कि चर्बी जो जमता है, ये चर्बी जो जिसको विसेरल एडिपोसिटी बोलते हैं, ये एक इंसुलिन नहीं काम करने का एक बहुत ही बड़ा वजह है जो ये भारत में ये विस्फोट के रूप में डायबिटीज फैल रहा है। तो यही है इसका विशेषतः कारण। आगे खान पान आदि व्यायाम से ये संतुलन में रहता है अवश्य, लेकिन उससे पहले डायबिटिक शनाक्त होना अनिवार्य है, जरूरी भी।
11: अच्छा, एक बात हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बहुत सारे कारण बताए, अगर उन कारणों के अलावा अगर हम देखें तो क्या हम इसका बचाव हम कैसे करते हैं, अपने शरीर से हम कैसे इस डायबिटीज को आने ना दें, इस पर कुछ?
12: विशेषतः दो ही रास्ता है, एक है संतुलित आहार यानी खान पान, दूसरा है व्यायाम। देखिए, व्यायाम अभी ऐसा हो गया है कि स्कूली बच्चे जो कि हमारे देश के भविष्य हैं, उनमें पढ़ाइयों का इतना लोड हो गया है, इतनी उन लोग व्यस्त रहते हैं कि उन लोगों का खेल कूद में उन लोग दिलचस्पी के अलावा उन लोग भाग ही नहीं ले पाते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो एप्लीकेशन टीवी मोबाइल आदि में उन लोग इतना उलझ जाते हैं कि वो खेल कूद में भाग ही नहीं लेना चाहते, एक बहुत बड़ी कारण ये भी है। दूसरा, ये जो हमारे जंक फूड की अवेलेबिलिटी जो होता है, पिज़्ज़ा बर्गर आदि वगैरह चाट आदि, इस पर ज़्यादा झुकाव बढ़ते जा रहा है। तो जो नियमित जो आहार जो मिलनी चाहिए, रोटी सब्जी चावल भात फल आदि, इससे लोग दूर भाग रहे हैं और इसी पर ज़्यादा झुकाव बढ़ते जा रहा है, ये भी एक कारण है। तो इसका मतलब ये होता है नियमित व्यायाम, चाहे जो भी हो, कोई दौड़ सकता है, कोई चल सकता है, कोई तैर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई खेल सकता है, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, कुछ भी, साथ ही साथ संतुलित आहार का कॉन्सेप्ट उसको लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, खास करके अभी नौजवानों जो कि 30 साल से ऊपर है, इन लोगों पे अधिकतर ध्यान देना चाहिए।
11: अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि ये जो है डायबिटीज, अगर मान लीजिए जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग अपने शरीर पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, मान लीजिए कि उनके शरीर में डायबिटीज हो गया हो, तो उन्हें कैसे पता चले, उसके लक्षण कुछ है क्या?
12: बिल्कुल, अभी डायबिटीज़ का कई चरण होते हैं। एक होता है प्री डायबिटीज़, मतलब डायबिटीज़ का पहला चरण, तब डायबिटीज़ पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता शरीर में। एक होता है डायबिटीज़ विकसित हो गया, और एक होता है डायबिटीज़ विद कॉम्प्लिकेशन, यानी डायबिटीज़ के सारे जो समस्याएं हैं, आँख के, किडनी के, हार्ट के आदि। तो तीन चरणों में से पहला चरण जो होता है वो अगर उस समय अगर शनाख्त, अगर डिटेक्शन, डायग्नोसिस अगर किसी का हो जाता है, तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी जीवन शैली में बदलाव ला के खान पान और व्यायाम से हम लोग हो सकता है कि डायबिटीज़ को और दूर ठेल दे, हो सकता है कि 5 से 10 साल बाद आए, या फिर अगर नियमित रूप से अगर ये किया जाए संतुलित आहार और व्यायाम, ये आगे आए ही नहीं। ये हो गया पहला। दूसरा, जो अगर डायबिटीज़ किसी का डिटेक्ट हो गया है तो दवा अनिवार्य है, दवा लेना ही है। साथ ही साथ व्यायाम और संतुलित आहार का भूमिका इतनी बड़ी है कि अगर इसको इसके साथ साथ अगर इसका भी पालन अगर ना करते हैं तो दिन पर दिन जाएगा और दवा का बोझ बढ़ते जाएगा। अगर हम लोग व्यायाम करते हैं, अगर हम लोग संतुलित आहार में हम लोग विश्वास रखते हैं और उसका पालन करते हैं, उसको अगर लेते हैं, तो क्या होगा कि डायबिटीज़ का संतुलन बिल्कुल बराबर रहेगा और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल आदि का भी संतुलन बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है।
11: मान लीजिए कि हमारे मुझे डायबिटीज़ हो गया है तो खान पान में कुछ
12: डायबिटीज़ का, जैसे कि हम अपने स्तर से बताते हैं कि डायबिटीज़ अगर किसी को अगर है तो चार चीज़ से दूर रहें, मीठा, मधु, गुड़ और चीनी।
11: अच्छा,
12: फल में आप सब ले सकते हैं सिवाय आम, लीची, अंगूर के। इवन तरबूज भी लिया जा सकता है, नाशपाती लिया जा सकता है, संतरा लिया जा सकता है, अनार लिया जा सकता है, सेब लिया जा सकता है, पक्का या कच्चा पपीता भी लिया जा सकता है आदि। साथ ही साथ अगर ड्राई फ्रूट्स की अगर बात है, ड्राई फ्रूट्स में केवल आमंड यानी बड़े बादाम और अखरोट, वॉलनट, ये हम लोग रिकमेंड करते हैं। और इसके साथ अगर दूसरी समस्याएं अगर नहीं हैं तो साग सब्जियां, चावल, आलू, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, अवश्य ग्रहण कर सकते हैं लोग। साथ में जो घर का जो सिंपल खाना बनता है वो तो ले ही सकते हैं।
11: एक बात जैसे आपने कहा कि डायबिटीज है, क्या इसकी कोई उम्र सीमा है?
12: जी नहीं, डायबिटीज दो तरह का होता है, पहले ये जान ले। एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2, और भी बहुत सारे हैं प्रकार, लेकिन उनके बारे में मैं उतना विवरण नहीं दूंगा। खास करके ये दो ही पाए जाते हैं। टाइप 1 जो होता है जिसमें शरीर में इंसुलिन बिल्कुल बनता ही नहीं है, और टाइप 2 जो होता है इंसुलिन बनता है लेकिन जितनी मात्रा में बननी चाहिए वो बनता नहीं है, यानी आप बोल सकते हैं कि वो इंसुलिन बनता है वो कमज़ोर है। और टाइप 1 जो है बहुत कम लोगों में संख्या में पाया जाता है, अबाउट 100 में अगर देखा जाए तो 5 से 7 प्रतिशत लोग टाइप 1 के पीड़ित होते हैं। ये टाइप 1 जो है ये नवजात शिशुओं में भी पाया जाता है, जो कि अक्सर देखा जाता है कि उनमें इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, बीटा सेल से माने ये जो हार्मोन जो है वो बन ही नहीं पाता है। ये हो गया टाइप 1। और टाइप 2 जो है ये आपका वयस इसका भी 18 से माने 80-90 या कुछ भी कभी भी ये हो सकता है। तो सबसे पहले शनाख्त में ये करना होगा कि क्या ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। और लक्षण आदि जो मैंने बताना पहले भूल गया, शुरुआती में लक्षण जो होता है अधिक प्यास लगना, भूख अधिक लगना, थकावट, घाव अगर कहीं होता है तो घाव ना सूखना, दांत का प्रॉब्लम, दांत से खून आना या ये दांत में सूजन हो जाना या बदबू आना, मुंह से बदबू आना, ये सारे लक्षण हैं डायबिटीज़ के शुरुआती पे।
11: अच्छा, क्या बच्चों में भी डायबिटीज़ देखा जाता है?
12: बिल्कुल, मैंने जो बताया जो टाइप 1 डायबिटीज़ वो नवजात में भी पाए जाते हैं। एक दिन का बच्चा में भी टाइप 1 डायबिटीज़ पाया जाता है।
11: अच्छा।
12: जिसका उपचार है, जिसका इलाज सिर्फ इंसुलिन ही है।
11: अच्छा, तो उनके क्या कारण हो सकते हैं?
12: ये पूर्ण रूप से जेनेटिक डिफेक्ट है। ये जीन स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वही डिफेक्ट होता है। वो एकदम मतलब शुरुआती में उसका जन्म जब होता है, जब उसका भ्रूण का जब विकास होता है, तभी वो पैंक्रिया सही तरीके से बन नहीं पाता है, इसीलिए इंसुलिन शरीर में बनता ही नहीं है।
11: इसका मतलब ये हुआ कि अगर माँ गर्भवती है और जो बच्चे को जन्म देती है, अगर माँ को अगर डायबिटीज है तो बच्चे को भी होना स्वाभाविक नहीं है।
12: करीब करीब 66% चांसेस रहता है कि बच्चे में भी ये डायबिटीज हो, ना भी हो सकता है, या दूसरा या तीसरा पीढ़ी में भी ये आ सकता है।
11: श्रोताओं, अभी हम जानकारी

0: अब आइए श्रोताओं कुछ और जानकारी लें मलेरिया व अन्य संक्रमण जनित बीमारियों के बारे में। जानकारी दे रहे हैं पश्चिम सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी।
1: मैं डॉक्टर मांझी सिविल सर्जन पश्चिमी सिंहभूम। अभी बरसात का सीजन है, पानी भी पड़ रहा है, जहाँ तहाँ पानी जमा भी हो रहा है, मच्छर की संख्या बढ़ भी रहा है, परंतु हम लोग स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन पर हम लोग लगभग विगत एक महीने से हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं मलेरिया कैसे रुके, मलेरिया से कोई कैजुअलिटी नहीं हो। तो हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, एवरीडे इवनिंग में हम लोग का ब्रीफिंग भी होता है, प्रगति लगभग हम लोग 160,000 के आसपास लोगों का जांच और जो पॉजिटिव मिले उसका उपचार भी किया गया है। परंतु जो सुदूर क्षेत्र में उस जगह ऐसे देखा जा रहा है जहां लोग अभी भी झाड़फूंक पर विश्वास कर रहे हैं, जिसके कारण हो क्या रहा है कि लोग गंभीर हो रहे हैं और सूचना के अनुसार कुछ कैजुअलिटी भी हुआ है। ये बहुत दुखद और दुर्भाग्य है। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, जिले के अंतर्गत जितने लोग हैं सभी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप जो है ना झाड़ फूंक कराइए, पूजा पाठ कराइए, परंतु आपसे अनुरोध होगा आप चिकित्सा भी कराइए। निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके जांच और उपचार कराइए। सभी जगह में सभी गांव में सहिया बहने हैं, NM है, CHO है, तो उनके पास जाएं और उपचार कराएं, तभी हम लोग मलेरिया से जो परेशानी है उससे हम बच सकते हैं। अलीन सिविल सर्जन डॉक्टर मांझी चौथो।
0: अभी हम जानकारी ले रहे थे मलेरिया व अन्य संक्रमण जनित बीमारियों के बारे में। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर जुझार मांझी। सच में श्रोताओं अगर हम देखें तो हमें जरा सचेत रहना होगा, खासकर

बरसात के मौसम में। ऐसे में जैसे आसपास जो है साफ़ सफाई की ज़रूरत है, जहाँ पानी जम रहा है उसे पानी जमने ना दें। इससे क्या होता है कि ये जो है मलेरिया जो मच्छरों के काटने से होता है, उसकी जहाँ से उत्पत्ति होती है उसे ही हम नष्ट कर दें। और ख़ासकर अगर बरसात की मौसम की हम बातें करते हैं तो हमें खान पान पर भी विशेष ध्यान देना होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण संदेश।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तो श्रोताओं, इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही हमारा आज का आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम समाप्त होता है। पर हाँ, जैसे मैंने कहा कि आज हम बातें कर रहे थे डायबिटीज पर, हम बातें कर रहे थे मलेरिया व अन्य संक्रमण जनित रोगियों पर, या हम यूँ कहें कि बीमारियों पर। तो जरा हमें सचेत तो रहना होगा, क्योंकि बरसात के मौसम में हम कई बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। इसके लिए सावधानियाँ जरूरी है। तो हमारा ये आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, खत हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारा पता है कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चाईबासा, पिन कोड है 833201। तो अब रमेश दास को विदा दे, अगली बार कुछ विशेष जानकारियों के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ से। और आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत देशभर के युवाओं को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। रांची में तैयारी पूरी। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए की कम। रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल से जुड़े कारोबारियों को राहत। रांची की ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुलाई में 1,20,000 से अधिक वाहनों का काटा चालान। 7,80,00,000 रुपए का लगाया जुर्माना। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4 अगस्त से देवघर से दुमका के बीच शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, आदेश जारी। और नेपाल के काठमांडू में आयोजित तीसरी वर्ल्ड मिक्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड के अंश, तेजस्वी और रोनिका ने देश के लिए जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर के 10,000 स्थानों पर युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। माय भारत की राज्य निदेशक ललिता कुमारी और उपनिदेशक श्वेता सिंह ने बताया कि रांची में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा।
7: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत थीम के ऊपर 8 तरह का कम्पिटिटिव इवेंट आयोजित किया गया है। जो जिला स्तर पे प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं वो सारे बच्चे हमारे राज्य स्तरीय कंपटीशन में भाग लेंगे और

0: राज्य स्तर पे कंपटीशन में जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे वो हमारा राष्ट्रीय स्तर पे 14 अगस्त को कार्यक्रम है जिसमें भाग लेंगे।
1: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी है। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: रांची की ट्रैफिक पुलिस ने जुलाई 2026 के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 1,20,000 से अधिक चालान काटे। इन मामलों में लगभग 7,80,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि 1,000 से अधिक मामलों को अभियोजन के लिए न्यायालय भेजा गया। झारखंड सरकार ने जाति सूचक और अपमानजनक नामों को हटाने के लिए नया अधिनियम अधिसूचित किया है, जिसके तहत अब सड़कों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थलों के नामकरण में भेदभाव वाले शब्दों पर रोक लगेगी। नए नियमों के अनुसार किसी भी जगह का नाम बदलने के लिए 30 दिन के भीतर नगरपालिका या जिला प्रशासन को प्रस्ताव देना होगा और आपत्ति मिलने पर गठित समिति 90 दिन में निर्णय लेगी। 1 से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत आज रांची के सदर अस्पताल में राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में डॉक्टरों और अधिकारियों ने माताओं को बताया कि जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीने तक केवल मां का दूध पिलाने से नवजात की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और संक्रमण का खतरा कम होता है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
3: जहाँ जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
4: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 की मेजबान।
3: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर FC सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
4: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
3: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
4: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए झारखंड सरकार 4 अगस्त से देवघर से दुमका के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगी। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए प्रति यात्री किराया 2,850 रुपए से लेकर 4,500 रुपए के बीच निर्धारित किया गया है। सावन की पहली सोमवारी को लेकर रांची पुलिस ने शहर के प्रमुख शिवालयों और कांवड़ मार्गों पर व्यापक सुरक्षा एवं ट्रैफिक प्रबंधन की व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए करीब 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी तथा CCTV, बाइक पेट्रोलिंग और सादे लिबास में पुलिसकर्मियों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। पहाड़ी मंदिर के आसपास भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध सहित विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने भी सभी जिलों को प्रमुख शिवालयों में सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। गिरिडीह के नक्षत्र वन में आज नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने पौधे लगाकर वन महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि पचम्बा से सटे कल्याणडीह में बनने वाला 28 एकड़ का रॉक गार्डन, मॉर्निंग वॉक और पर्यावरण संरक्षण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
5: शहर से बिल्कुल सटे हुए 28 एकड़ का यह भूभाग वास्तव में पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित। यहाँ पर बनने वाले इस रॉक गार्डन से पचम्बा वासियों को खास करके लाभ होगा। सुबह शाम जब वो टहलने के लिए सोचेंगे, उनके पास नगर वन जैसा एक विकल्प होगा, जहाँ पर शुद्ध वायु में सांस लेते हुए वो सुबह शाम टहलने का काम कर सकेंगे।
1: रांची नगर निगम में आज महापौर रोशनी खलको की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रस्तावित सखुआ महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की गई। महापौर ने बताया कि महोत्सव के तहत सखुआ के साथ महुआ, पलाश, कुसुम और डाहू सहित स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे।
6: सखुआ महोत्सव हम लोग करने के लिए उत्साहित भी है। एक जगह का चयन हो जाए जहाँ पर हम लोग पर्याप्त रूप में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सके, उसमें सखुआ को हम लोग लीडिंग पोजीशन पर रख रहे हैं। लेकिन हर तरह के पेड़ जो हमारे प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, सारे तरह के पेड़ हम लोग लगाने के बारे में सोचिए। एकीसो महादेव जब खोजा गया है, कहीं ना कहीं वो झाड़ियों की वजह से छिप गए थे। ऐसे पर्यटक स्थल को एक एक कोने कोने में पहुँचा सके, उसके लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं।
1: जमशेदपुर के दो मुहानी नदी संगम तट पर एक पौधा भविष्य के नाम अभियान के तहत पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और पद्मश्री चार्मी मुर्मू ने पौधारोपण किया। पद्मश्री चार्मी मुर्मू ने कहा कि आज लगाया गया हर पौधा आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की अमूल्य पूंजी है।
7: पहले विरोध होता था पेड़ पौधा लगाने से, हमारा जमीन सरकार ले लेगी, बंजर भूमि में पौधा लगाने से बैल कहाँ चराएंगे। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि आज हमारे स्कूल बच्चे, हमारे नेता मंत्री सभी पौधा लगाने में अपना भूमिका निभा रही है। लगता है कि अभी इस हमारे क्षेत्र में वातावरण को बदलने का असर आ गया है।
1: नेपाल के काठमांडू में आयोजित तीसरी वर्ल्ड मिक्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के अंश कुमार सिंह, तेजस्वी कुमार और रोनिका राशि ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। 11 देशों के भागीदारी वाली इस प्रतियोगिता में तीनों खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हुआ था। विजेता खिलाड़ी 4 अगस्त को रांची लौटेंगे, जहां उनके सम्मान में भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत देश भर के युवाओं को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। रांची में तैयारी पूरी। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए की कम। रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल से जुड़े कारोबारियों को राहत। रांची की ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुलाई में 1,20,000 से अधिक वाहनों का काटा चालान। 7,80,00,000 रुपए का लगाया जुर्माना। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4 अगस्त से देवघर से दुमका के बीच शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, आदेश जारी। और नेपाल के काठमांडू में आयोजित तीसरी वर्ल्ड मिक्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड के अंश, तेजस्वी और रोनिका ने देश के लिए जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
8: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरपीएल लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
9: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रांची संवाददाता।
1: रांची के धुरा स्थित पुराना विधानसभा परिसर में विधायकों के लिए साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल सुरक्षा, वर्तमान परिदृश्य एवं चुनौतियां विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर फ्रॉड की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार को इस संबंध में ठोस नीति बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधियों के द्वारा किए गए अपराध के अनुरूप उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए।
2: साइबर फ्रॉड के बारे में सरकार के तरफ से, चाहे केंद्र का सरकार हो चाहे राज्य का सरकार हो, एक ठोस नीति बनना चाहिए ताकि अगर साइबर फ्रॉड में कोई व्यक्ति अगर पकड़ाए तो कठोर से कठोर सजा होना चाहिए।
1: विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रांची में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जनसंख्या पर नियंत्रण पाने में काफी हद तक सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना सरकार का लक्ष्य है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब जनसंख्या की नहीं बल्कि जनशक्ति की जरूरत है।
3: अब आबादी में हम लोग कंट्रोल है, लेकिन चैलेंज है उन तक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे हम पहुंचाए, ये हमारा फोकस है और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और खासकर के 42,000 जो सैया बहने हैं, मैंने उनसे कहा कि आपका बहुत बड़ी जवाबदेही है कि जनसंख्या को कंट्रोल कैसे करें, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको हस्पताल कैसे पहुंचाए, ममता वाहन को ठीक कैसे करें।
1: रांची के अडरे हाउस में 2 दिवसीय जलवायु अखाड़ा का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि छोटे छोटे और निरंतर प्रयास करके जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जारी लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए समाज के सभी स्टेक होल्डर को एक मंच पर आना आज सबसे बड़ी जरूरत है। रांची विश्वविद्यालय ने अपना 67वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया। वर्ष 1960 में स्थापित रांची विश्वविद्यालय ने अपनी गौरवशाली शैक्षणिक यात्रा के 67 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया। विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सरोज शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के बच्चों को केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखा जा रहा है, बल्कि कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य, फाइन आर्ट्स और शोध को भी समान महत्व जा रहा है।
4: राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही कहती है कि करिकुलम सिर्फ पढ़ना नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है, उसके साथ साथ कला, संस्कृति, गीत, संगीत, फाइन आर्ट्स, ये सब है।
1: समारोह में उन विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया जिन्हें राष्ट्रपति के हाथों से सम्मान प्राप्त हो चुका है। इसके साथ ही खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रांची विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: अभी आप सुन रहे थे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।
5: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। पहली पसंद आप सबों की है, सुनना चाहा है खरसवा पतिसाई से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक, सोनुआ गांव पुड़ाहाट से मिथुन नायक, राकेश नायक, मुकेश नायक, मखरू आचार्य, गाँव कीता सरायकेला से राधा कृष्ण गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती, आराध्या, अमित, सुमित, अंकित, अभिषेक, विनोद, आशीष, विक्की, राजू, राजन, माहिर और शुभम गोप, बरियातू रांची से नितेश मेघा, आकांक्षा और अरब, उत्तराखंड रुद्रपुर से राजीव, सुमन और आदित्य, सरू चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयसा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, सोएब खान, पोतरा मुश्तबा खान, राऊ भाई, साहिद भाई, गांधीबाग अंकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, छोटा निमडी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन, कोमल, ऋतिक, वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से भोलाराम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल कुमार मधुर, प्रशांत कुमार मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठा मधुर और शनि मधुर। बड़ी बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी, समीमा खानम, निम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, परी, मुस्कान, नबिया। बड़ी बाजार चाईबासा से भगीरथ महतो एवं इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहे मोहल्डिया सोनुआ से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविबारी, बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अन्नू, तन्नू, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनुआ से गुरुचरण नायक, अनसुया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पानी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पानी प्रधान, निक पानी प्रधान। बड़ा बाम्बो सुपाईसाई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान और देवेंद्र जी। ग्राम के लिए लोहर से कोमल बेसरा, बसंती, अन्नू बनमाली, सिद्धू कुमारी और पूजा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म पाकीजा का ये नगमा, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की।

अगली पसंद आप सबों की है अमला टोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और सोनू। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया। चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनमोहिनी महतो, मनोरमा और दीनबंधु। कुचाई बिद्री से केपी सेठ सोए, सरिता सोए, दुर्गामती, राजकुमारी, रेशमी, विशाल, मुन्ना और सनी। ग्राम सुराबेड़ा से बासिंग सरदार, बीरू सरदार, रमेश, कमल सिंह और अंशु एवं सरदार परिवार। खरसवां बड़ा बाम्बू उड़ियासाई से नायडू महतो, उषा महतो, प्रिया महतो, डॉली महतो, तरुण महतो, समस्त परिवार के सदस्य। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर। मुगाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश, अरसलान, यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी, समस्त तड़वी परिवार। बड़ा निमड़ी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितु रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, सुमित कुमार। न्यू कॉलोनी निमड़ी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद, रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना देवी, खुशबू, खुशी, अभिषेक, अंश, अंशु और अनीश। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म कोहरा का ये नगमा। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की।

अगली पसंद आप सबों की है, सुनना चाहा जो जो कुड़मा से मनोज गागराई, बासंती गागराई, सोनाली गागराई, आयशा गागराई, रचना गागराई, जितेंद्र गागराई, तुरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी, अर्पिता कुमारी, आमजोड़ा पोखरिया, मालुका से शिवा गोप, प्रेम गोप, प्यारी बहने संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप, महालीसाई से बिरबल महाली, सरस्वती महाली, प्रेमचंद महाली, फूलमणि महाली, शकुंतला महाली, सुमंती महाली, यशोदा महाली और शांति महाली, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, पटेल नगर मलौट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया और बेबी आरजू जजोरिया। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म प्यार का सागर का ये नगमा, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की है।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं आज का आपकी पसंद कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसान वाणी।
1: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को ठाकुर चंद्र मुर्मू
2: और डोबरो बुड़ले तकिन पैते
1: जोहार। किसान भाई बहनों, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, और आज हमारे साथ हैं डोबरो बुड़ेली जी। डोबरो जी, हम इस किसान वाणी के कार्यक्रम में कुछ ना कुछ विषय को लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं, चाहे वह खेती से संबंधित हो, चाहे वो कृषि के अन्य बातें हों।
2: या या,
1: हम सभी चर्चा के विषय में लाते हैं, और आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्षा जल संचय एवं समुचित उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं।
2: या
1: जी हाँ किसान भाइयों, हम लोग वर्षा जल का प्रयोग हम लोग अपने स्तर पर, अपने खेतों में, बागवानी पर कर सकते हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है, वर्षा होती है और वर्षा जल का जो पानी होता है वो बह जाता है।
2: yeah.
1: क्योंकि हमारा खेत खलियानों में हम अभी उस हद तक तैयारी नहीं किए हैं कि पानी को हम रोक पाएँ, तो वैसा स्थिति में हमको किस तरह से भविष्य के लिए पानी हमको रोकना है, उस पर हमको थोड़ा सा आज हम लोग चर्चा करते हैं।
2: या एंड्र दो ठाकुर जी अलिंग अलग आचार्य को होयम ते निकावल हम इता दिए को ना गामा असड़ा रे अपना गामा दा हो बावा इंदो इना वो असलांदी को ते जोर हुआ मारिए कुरन समारे हाड़ी इंडा ना जाप हाजता इना को जो दी अब कैसेट कोड़ों उरे कहते बांधा कोरियो सूट कोरियो डकुट कोरियो बु इना बु कैसेट उरे या इंदो इना पैटी रे ऐसो बुगन पैटर जो ओंडोगा रिंगेतन समय रे दा रिया पैटे छ बगान रे चास बस दा दुल रे आरियो पूरी को दा कोनो इतरो ची ऐसो इना रिया पैटी हुजो गया जदि आबो नेलेकन दा को बो कोसो पूरे दिसुम रे बो ओडो कैसेट उरे या इंदो जो कोना ओतरे जल स्तर जो लतार पाते सेनो उतना इना जो का प्राकृतिक रूप ते इना कोमो आ उन डॉ भरण दाई।
1: जी हाँ जी हाँ, और ये एक तरह सा हम लोग जैसा इसको भी जानना होगा कि जल संचय हम लोग किस किस तरह से कर सकते हैं डोबरो जी, क्योंकि जल को हम लोग उसका उपयोग हम लोग समुचित रूप से हम लोग सही काम के लिए करें।
2: yeah.
1: जैसा हर चीज में हमको बचाना भी होगा, और बचाने के साथ साथ उसको उचित उपयोग हम लोग करेंगे, मतलब सही काम में उसको लाएंगे ताकि पानी की बर्बादी ना हो। निकट भविष्य में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हो सकता है कि अब हमारा कृषि में वर्षा जल की जो आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग वर्षा पर निर्भर हैं, और समय पर अगर वर्षा ना हो तो हमारा कृषि पर उसका कुप्रभाव पड़ता है।
2: या या
1: जी हाँ, तो इसके लिए हमको बहुत सारा है, जैसे वर्षा जल संचय हम किस तरीके से कर सकते हैं, जैसा घर की छत से पाइप के जरिए पानी के टैंकों में हम लोग जमा कर सकते हैं उसको।
2: या
1: अच्छा, दूसरा हो सकता है कि अतिरिक्त पानी जो कहीं पर हम लोग उसको कोई गड्ढा में, कोई तालाब में, पोखर में, वहाँ एकत्रित कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग उसकी कहा जा सकता है तो हम जल को एकत्रित कर सकते हैं।
2: या
1: और समुचित प्रयोग तो हमको उसका करना है, जैसे हम लोग अभी कृषि के समय है, खेत जमा या गड्ढा या डोभा का हम लोग निर्माण करते हैं, तो आने वाला भविष्य में क्या होगा कि जब पानी वर्षा जल घटेगा तो उस स्थिति में हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कढ़ान का काम हो या तो फिर अभी रुपाई का काम हो तो उसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं।
2: या इंदो नेलेका के साबिन तेरब कोड़ों के सिडका अब इन बोरिंग द्वारा ते नोहित या दाओ इन पाते बुगल का पुयुर लेने तो हुजू तैयार है अब लगीडो हुजू है चास बास लगीडो हुजू ना अबन का जी कर लेका इसो मनत मरंग पाइटी के निया दो नमनते मार चास गया को अलंग दा अब कोटों के सिडका अंडो बुगिन पाइट रे रिंगे समय रे अगुजो इके।
1: हाँ डोबरो भाई, अभी हम लोग जैसे हम लोग बातें कर ही रहे थे कि कुछ चर्चा करेंगे और कुछ मनोरंजन भी करेंगे,
2: या, या, या।
1: और हमारे जो श्रोता हैं जो रेडियो के करीब बैठे हुए हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब थोड़ा मनोरंजन हो जाए। तो चलिए ना हम लोग आज मनोरंजन करते हैं इस होलो गीत से, बाबूराम सोय और साथियों के स्वर में।
2: या।

0: किसान भाई बहनों, अभी हम लोग मनोरंजन कर रहे थे इस हो लोकगीत से बाबू रामसोय और साथियों के स्वर में। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग जानते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आज 1 तारीख और आज का दिन में तापमान था 26 डिग्री सेल्सियस और शाम में रात में जो होगा 32 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना है और 2 अगस्त को जो रविवार है उस दिन का तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस और शाम को तापमान रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस। आसमान में बादल छाए रहेंगे, हो सकता है कहीं गरज के साथ छींटे। मौसम की जानकारी समाप्त हुई। किसान भाई बहनों, इसके बाद आइए हम सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है। तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
0: किसान भाई बहनों, इस संदेश के बाद आइए पुनः हम अपने कार्यक्रम पर आते हैं और आज हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं भेंटवार्ता के माध्यम से। तसर कीट पालन कैसे करें विषय को लेकर, और ये जानकारी दे रहे हैं कोलाय बारी जी और उनसे बातें कर रहे हैं डोबरो बुड़ेउले जी। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
2: तो जपगर या विषय तो मिना गया मैं दो आबेना उपरूम अबेन तक जगर तब
3: ने दो आतु दो तलिंग कोई दो सोसो आतु अलिंग तसार को बुमने हो को तो बुमने लुगेम को बुमने दिकु को तो कुमने तसार को बुमने इनको जो को अलिंग चास से कट को अलिंग अब नंदिस मिना को चास को बागे तन हिसाब से नेना को आर चिली के मुनो को चास के ना एन हिसाब से नंदिस में ते अलिंग ना नहीं नलिंग तो रो है तना तलिंग चास हो
2: सो नासरे का जी चास के किन में दो अबे नानु तुम दो कबे का जी किना
3: अलिंग है नुतुम दो आतु तलिंग सोसो आतु नुतुम दो तलिंग किली कुलाय बारी
2: ও কোলাই বাড়ি এসো রাস্তার একা যে কোলাই বাড়ি থেকে যাবেন আবেন নতুন কবেন কাজে কেটা কোলাই বাড়ি থেকে এন্দো আবু তো পোস্ট অফিস তো বারকুন্ডি কেটো
3: বারকুন্ডি
2: আচ্ছা এন্দো না কই বসু তেনে চি সস আতো নিপাদ
3: না টোলা তো কই বসু টোলা সস আতো
2: আচ্ছা আচ্ছা এন্দো কোলাই বাড়ি থেকে এসো রাস্তার একা যে আবু নিনা কো লুগেম আনাচি লুগেম চাস তো না তো ᱵᱟᱜᱤᱭᱟᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱱᱮᱞᱮ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱟᱭᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱞᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱛᱳ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱜᱤᱭᱟᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱮᱞ
3: ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱟᱨ ᱫᱟᱨ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱟᱛᱱᱟᱜ ᱫᱟᱨ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱮᱱᱥᱟᱵᱤᱱ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱛᱱᱟᱜ ᱟᱭᱛᱨᱮ ᱨᱚ ᱵᱟᱠᱟᱨ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱢᱟᱞᱤᱝ ᱱᱟᱢᱨᱮ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱜᱮᱞᱤᱝ ᱤᱭᱩᱱᱤᱴ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱤᱛᱮ ᱜᱮᱛ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱟᱨ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱢᱟᱞᱤᱝ ᱱᱟᱢᱨᱮ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱜᱮᱞᱤᱝ ᱤᱭᱩᱱᱤᱴ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱤᱛᱮ ᱜᱮᱛ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱟᱨ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱢᱟᱞᱤᱝ ᱱᱟᱢᱨᱮ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱜᱮᱞᱤᱝ ᱤᱭᱩᱱᱤᱴ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱤᱛᱮ ᱜᱮᱛ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱟᱨ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱢᱟᱞᱤᱝ ᱱᱟᱢᱨᱮ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱜᱮᱞᱤᱝ ᱤᱭᱩᱱᱤᱴ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱤᱛᱮ ᱜᱮᱛ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱟᱨ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱢᱟᱞᱤᱝ ᱱᱟᱢᱨᱮ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱜᱮᱞᱤᱝ ᱤᱭᱩᱱᱤᱴ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱤᱛᱮ ᱜᱮᱛ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱟᱨ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱢᱟᱞᱤᱝ ᱱᱟᱢᱨᱮ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱜᱮᱞᱤᱝ ᱤᱭᱩᱱᱤᱴ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱤᱛᱮ ᱜᱮᱛ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱟᱨ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱢᱟᱞᱤᱝ ᱱᱟᱢᱨᱮ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱜᱮᱞᱤᱝ ᱤᱭᱩᱱᱤᱴ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱤᱛᱮ ᱜᱮᱛ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱟᱨ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱢᱟᱞᱤᱝ ᱱᱟᱢᱨᱮ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱜᱮᱞᱤᱝ ᱤᱭᱩᱱᱤᱴ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱤᱛᱮ ᱜᱮᱛ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱟᱨ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱢᱟᱞᱤᱝ ᱱᱟᱢᱨᱮ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱜᱮᱞᱤᱝ ᱤᱭᱩᱱᱤᱴ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱤᱛᱮ ᱜᱮᱛ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱟᱨ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱢᱟᱞᱤᱝ ᱱᱟᱢᱨᱮ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱜᱮᱞᱤᱝ ᱤᱭᱩᱱᱤᱴ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱤᱛᱮ ᱜᱮᱛ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱟᱨ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱢᱟᱞᱤᱝ ᱱᱟᱢᱨᱮ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱜᱮᱞᱤᱝ ᱤᱭᱩᱱᱤᱴ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱤᱛᱮ ᱜᱮᱛ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱟᱨ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱢᱟᱞᱤᱝ ᱱᱟᱢᱨᱮ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱜᱮᱞᱤᱝ ᱤᱭᱩᱱᱤᱴ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱞᱤᱝ ᱤᱛᱮ ᱜᱮᱛ ᱠ
2: ᱫᱟᱨᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱟᱨᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱠᱚ ᱚᱠᱚᱱ ᱯᱟ ᱵᱮᱱ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱠᱚᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱵᱮᱱ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱠᱚᱛᱟᱱᱟ?
3: ᱱᱤᱱᱟᱹᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱠᱚ ᱞᱩᱜᱮᱢ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱠᱚ ᱞᱩᱜᱮᱢ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱠᱚᱛᱟᱱᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩᱭ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱮᱛᱮ ᱮᱱ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱛᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱞᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱛᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚ

0: कर
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
2: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा
5: का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
6: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
5: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
7: हमने 1800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
5: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित

0: बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
1: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
0: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
2: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
3: मैं APO का डायरेक्टर हूँ। मेरा APO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया।
0: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
4: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
0: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
5: इस महत्वपूर्ण संदेश के बाद आइए डॉक्टर बाबू, हम लोग क्यों ना थोड़ा सा मनोरंजन कर लेते हैं।
6: या तुंडो सुमय रे नादो अलग आके तिसिया करोड़ को जो का चबा हो जो उतन अंतरची तुंडो सुमय रे मियन उंडो मिसे अलग आ चास गया कुलंग आरा सारी रिकवा।
5: तो चलिए ना आपकी मन की मुराद भी पूरी करते हैं, और हमारे जो श्रोता है रेडियो के करीब है उनको भी कार्यक्रम के आखिर में हम सुनाते हैं इस 5 परगनिया लोकगीत ब्रजमोहन लोहार और साथियों के स्वर में।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे इस सप्ताह संसद में। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी है, अब आप जया भारती से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं PTI भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का यह दूसरा सप्ताह था। यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से मिला जुला रहा। इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सदन की बैठक 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 5:15 की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा जारी रखा और बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति CP राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक शाम 5:15 तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार की विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक के पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस

0: की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। विधेयक के समर्थन में भाजपा के बृजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एनटीए ही नहीं बल्कि यूपीएससी रैंकिंग और रेलवे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम फरमाइशी गीतों का, कार्यक्रम रजनीगंधा का। तो रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। पहली फरमाइश है आप सबों की, छत्तीसगढ़ भाटपारा दतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजिला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म क्यामत से क्यामत तक का ये नगमा। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

अगली फरमाइश है पोंडा काटा से, नरसिंह महाली, सावन महाली, रॉकी महाली, कविता महाली, हर्षमणि महाली, पार्वती सुहानी महाली, संजय सोरेन, नंदनी गोपाल महाली, साजीव सोरेन, करीना महाली, एनेश महाली। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म निकाह का ये नगमा, आवाज़ें हैं सलमा आगा की।

अगली फरमाइश है, न्यू कॉलोनी नीमरी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशबू, खुशी, अभिषेक, अंश, अनीश, अंबिका, अंकिता, अमित, मनीष और मुन्ना की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म कभी कभी का ये नगमा। आवाज़ें लता मंगेशकर और मुकेश की है।

अगली फरमाइश है, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर बेबी, मनमीत, मनमिंदर पांधा, गोलू काकू, जी एस राम गढ़िया की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दो बदन का ये नगमा, आवाज़ें लता मंगेशकर की है।

अगली फरमाइश है मोहल्डिया सुनवा से नंद किशोर महतो राधामणि महतो रविवारी वंदनी दीपक संतोष राहुल बिट्टू आयुष गीतेश अन्नू तन्नू डिस्को महतो भाई नंदू महतो मेन रोड सुनवा से गुरुचरण नायक अनसुईया नायक देवाशीष नायक गुलशन नायक पिनाक पानी प्रधान तनुश्री प्रधान नील पानी प्रधान। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सिलसिला का ये नगमा। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम के अंत में आई सुनते हैं आप सबों की फरमाइश पे अगला गीत। पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमेध कुमार दामोदर और गोपाल पाटिल। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म भीगी पलकें का ये नगमा। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का रजनीगंधा कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। FM के 101.7 MHz से कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया

0: समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं

0: दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
0: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MP स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
0: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 44 करोड़ 55 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किस्त के रूप में 379 करोड़ 35 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 193 करोड़ 95 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट PG 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
3: भारत की सेना को आधुनिक बनाना,

0: समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
1: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
2: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट समाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
4: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया, तो काफी खुश। अगला कंपटीशन में और ज्यादा फोकस करूंगा और आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल ले मेडल मैं मेरे अंकल को दे दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे दे करूंगा।
3: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
1: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वोल वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekananda Cultural Youth Center in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Center approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athlete Oman Rana bags gold in men's shot put F57. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the areas of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekananda Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekananda's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
6: Swami Vivekananda ji युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
5: Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIIMS and increasing medical seats as well.
6: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MP स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
5: Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar, Governor Thavarchand Gehlot and the President of Ramakrishna Math, Srimad Swami Gautamanandji Maharaj were present on the occasion. Earlier in the day, Prime Minister Modi launched development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure at Vizianagaram in Andhra Pradesh. Addressing a public meeting, the Prime Minister said Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and the centre is fully committed to realising the vision of Swarna Andhra and Vikasit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development.
6: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
5: Prime Minister Modi also inaugurated the Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram and said it is a launchpad for the aspirations of the state's youth. He announced that the airport has been named after freedom fighter Alluri Sitarama Raju, which will inspire future generations with the spirit of patriotism and public service.
6: बीते 12 इयर्स में देश के एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की। 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे, आज ये संख्या 166 है। एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है।
5: Prime Minister Narendra Modi will launch the Nasha Mukt Yuva for Vikasit Bharat Sankalp Abhiyan tomorrow through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the program. Union Home Minister Amit Shah has approved the advance release of 2,117.85 crore rupees from the central chair of the State Disaster Response Fund, SDRF, to support the states affected by floods during the ongoing southwest monsoon. We have a report.
7: The assistance approved for the affected states includes 44.55 crore rupees to Arunachal Pradesh as advance release of the first installment for the financial year 2026-27. For Assam, 379.35 crore rupees has been sanctioned as the first installment, while Gujarat has been approved 500 crore rupees. Himachal Pradesh, which had already received the first installment, has been sanctioned 193.95 crore rupees as advance release of the second installment, while Odisha has been sanctioned the second installment of 500 crore rupees. Further, Maharashtra has been approved 500 crore as advance release of the first installment. The Home Ministry noted that since the onset of the monsoon, the government has been continuously monitoring the flood situation in close coordination with the state governments. It added that the government has also extended all possible assistance, including pre-deployment of National Disaster Response Force team and logistical support from the Ministry of Defense wherever required. Interministerial central teams have already been deputed to Arunachal Pradesh and Assam to assess the damages. It added that on the request of the government of Nagaland, an IM city is also being constituted for the state. The Home Ministry further underlined that this approval aims to strengthen the ongoing relief and response measures of the flood-affected states. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
5: Meanwhile, the flood situation in Odisha continues to remain grim, with the Mahanadi and its tributaries in spate, posing a fresh threat to low-lying areas of Katak, Puri, Jagatsinghpur, Kendrapara and Khordha districts. 10 downstream districts remain on high alert as Hirakud Dam continues releasing flood water through 22 gates. More than 8 lakh people have been affected, while over 2,69,000 people have been evacuated to safer places. Chief Minister Mohan Charan Maji today conducted an aerial survey. Meanwhile, IMD has forecast more rainfall over parts of the state, keeping the flood threat alive. In Kerala, incessant heavy rain has caused widespread havoc, triggering landslides and severe waterlogging across the state. 6 rain-related deaths have been reported today from Kottayam, Idukki and Malappuram districts, while 6 people remain missing. More from our correspondent.
8: Amid the possibility of extreme heavy rainfall, the India Meteorological Department has issued a red alert for 9 districts and an orange alert for 5 districts in Kerala today. More than 1,400 people have been shifted to relief camps opened in the affected areas. The State Disaster Management Authority has informed that 17 houses were completely destroyed, while 127 houses were partially damaged in rain-related incidents today. Widespread damage to agricultural crops has also been reported from several districts. Shabarimala pilgrims have been advised to avoid visiting the temple on August 2nd and 3rd in view of the heavy rainfall and the rising water levels in the Pamba River. As water levels in several rivers and dams continue to rise, authorities have issued alerts to people living in nearby areas. Fishing activities have been banned along the Kerala, Karnataka and Lakshadweep coast until tomorrow. Anila Balakrishnan, Akashavani News, Tiruvananthapuram.
5: In Maharashtra, continuous rainfall has led to a sharp rise in the water levels of rivers, streams and lakes, with water entering homes in several low-lying areas due to flooding. Jalgaon district has been among the worst affected, where 4 people have lost their lives due to the heavy rains till now. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back, here with us on the news at 9. Cross-border trade between India and China through Nathula Pass in Sikkim resumed today, ending a suspension of more than 6 years. A report.
9: Nathula, located at an altitude of over 14,000 feet in East Sikkim, served for centuries as a vital trade route along the ancient Silk Route connecting India with Tibet. Border trade was formally revived in 2006 after remaining closed since the 1962 India-China skirmishes and continued uninterrupted until it was suspended in 2020 due to the COVID-19 pandemic. The resumption marks a positive sign in bilateral engagement between India and China. Border trade will operate from Monday to Thursday with the gate opening at 7:30 a.m. IST, and each registered trader will be allowed to conduct trade worth up to rupees 2 lakhs per day. Officials confirmed that the existing list of approved imported and exported items and the standard operating system remain unchanged. This is Moinak Chatterjee with Manush Pratim Sharma from Akashvani News Gangtok.
5: In Himachal Pradesh, the cross-border trade between India and China also resumed through Shipkila in Kinnaur today after a gap of around 6 years. State Revenue Minister Jagat Singh Negi inaugurated the Chupan Trade Mart at Namgya, a border panchayat in Pooh subdivision of Kinnaur district, and flagged off a group of 17 traders to commence cross-border trade. National Security Advisor Ajit Doval was conferred the Lokmanya Tilak National Award 2026 at a function held at Pune today. The award, instituted by the Lokmanya Tilak Smarak Trust, was presented by Union Home Minister Amit Shah on the occasion of the 106th death anniversary of Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. The Delhi BJP today lodged a complaint against leader of opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi, independent MP Rajesh Ranjan, alias Papu Yadav, SPMP Avadhesh Prasad and other concerned individuals for allegedly hurting religious sentiments in the Parliament complex yesterday. The BJP delegation, led by New Delhi MP Bansuri Swaraj, demanded registration of an FIR against the opposition leaders. In view of the closure of Jammu-Srinagar National Highway NH-44 between Jammu and Srinagar, the railways has decided to operate a special train between Badgam and Sri Mata Vaishno Devi Katra to facilitate stranded passengers and manage the heavy rush at railway stations. At the ongoing Commonwealth Games in Glasgow, Indian boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar won gold medals in their respective finals, while para-athlete Soman Rana also bagged a gold in men's shot put F57 event. We have more from our sports desk.
10: India climbed to 6th place today after its medal tally rose to 30, including 8 gold, 15 silver and 7 bronze medals. Indian boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar delivered dominant victories in their respective finals to win gold medals. Preeti claimed the women's 54-kilogram boxing title with a commanding 5-0 victory over Canada's Scarlett Delgado. Jasmine secured another 5-0 win in the women's 57-kilogram final, defeating Michaela Walsh of Northern Ireland. India also celebrated a historic achievement in para-athletics with Soman Rana winning gold and Shubham Jual taking silver in the men's shot put F57 event. The result marked India's first ever Commonwealth Games gold medal in the men's shot put F57 event and the nation's first double podium finish in the category. In athletics, triple jumper Praveen Chitrawal won silver while Silva Prabhu earned bronze. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Union Sports and Youth Affairs Minister Dr. Mansukh Mandviya congratulated the medal winners. With Vikas Churagja from Sports Desk.
5: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekananda Cultural Youth Centre in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athlete Soman Rana bags gold in men's shot put F57. That is all in the news at 9. Good night.
11: Adab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmeen. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर का इफ्तिताह किया और साइंस टेक्नोलॉजी और खेलों के शुबे में पेशरफ्त का सिहरा भारतीय नौजवानों को दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। मरकज ने सैलाब से मुतासर रियासतों के लिए इमदाद के तौर पर 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेशगी रकम जारी करने की मंजूरी दी है। सिक्किम में नाथुला पास के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू हो गई है। उड़ीसा में सैलाब का जोर जारी है। केरलम में लगातार बारिश होने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और 6 अफराद की मौत हो गई है। और दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय मुक्केबाजों जैस्मीन लंबोरिया और प्रीति पवार ने सोने के तमगे जीते हैं, जबकि मर्दों के शॉर्ट पुट F57 में पैरा एथलीट सोमन राणा ने भी सोने का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साइंस टेक्नोलॉजी और खेलों के शोबे में पेशरफ्त में नुमाया रोल के लिए भारतीय नौजवानों की सताइश की है और उन पर जोर दिया है कि वो सफाई सुथराई की मुहिम, पानी की बचत और कुदरती वसाइल को महफूज रखने के शोबों में भी अपना रोल अदा करें और भारत में बनाई गई मसनूआत तोहफे में दें। जना मोदी आज मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि हमारे नौजवानों को राह दिखाना और मुल्क की तामीर के लिए काम करने की खातिर उन्हें बाइख्तियार बनाना स्वामी विवेकानंद का नजरिया था।
6: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
11: जना मोदी ने कहा कि हमारे नौजवानों की सलाहियत की बदौलत भारत दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल फोन मार्केट बन गया है। سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ، اختراعات اور پرائیویٹ سیکٹر کے خلائی مشن میں نئی نئی پیش رفت ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب مودی نے آئی ٹی آئیز، آئی آئی ایمز، آئی آئی ٹیز اور ایمز سمیت نئی یونیورسٹیاں اور کالج قائم کر کے نیز میڈیکل سیٹوں کی تعداد میں اضافہ کر کے تعلیم کے شعبے میں گزشتہ 12 سال کے دوران کی گئی ترقی کو اجاگر کیا۔
6: پچھلے 12 برسوں میں 650 سے زیادہ نئی یونیورسٹیز بنی ہیں، پچھلے 12 برسوں میں قریب 14,000 نئے کالج بنے ہیں، 4,000 سے زیادہ نئی آئی ٹی آئی بنائی گئی، 9 نئے آئی آئی ایم، 7 نئی آئی آئی ٹی اور 13 نئے ایم بی स्थापित किए गए हैं। आज देश में एमबीबीएस की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
11: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश रियासत तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और मरकजी सरकार बड़े पैमाने के बुनियादी ढांचे और सनअती तरक्की के जरिए سورن آندھرا اور وکست بھارت کے نظریے کو حقیقت کی شکل دینے کے تئیں پوری طرح عہد بند ہے۔ بھوگپورم میں الوری سیتارام راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کرنے کے بعد ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہوائی اڈے، سڑک اور توانائی سے متعلق بنیادی ڈھانچے سمیت تقریباً 18,000 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں سے مرکز اور ریاست میں این ڈی اے سرکاروں کے تحت ریاست کی تیز رفتار ترقی کی عکاسی ہوتی ہے۔ جناب مودی نے نئے ہوائی اڈے کو آندھر پردیش، خاص طور پر شمالی آندھرا کی ترقی کے رن وے اور ریاست کے نوجوانوں کی امنگوں کے لیے ایک لانچ پیڈ سے تعبیر کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سیلاب سے متاثرہ ریاستوں کی مدد کے لیے قدرتی آفات کی صورت میں کام آنے والے ریاستی فنڈ ایس ڈی آر ایف کے لیے مرکز کے حصے کی 2,117 کروڑ روپے سے زیادہ کی پیشگی رقم جاری کرنے کی منظوری دی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ 7 ریاستوں میں سے ہماچل پردیش، اڈیشا اور ناگالینڈ کو اس سے قبل مالی سال 2026-27 کے لیے ایس ڈی آر ایف کی پہلی قسط موصول ہوئی تھی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
12: متاثرہ ریاستوں کے لیے جس امداد کی منظوری دی گئی ہے اس میں مالی سال 2026-27 کے لیے پہلی قسط کی پیشگی رقم کے طور پر اروناچل پردیش کے واسطے 44,55,00,000 روپے شامل ہیں۔ آسام کے لیے پہلی قسط کے طور پر 79,35,00,000 روپے منظور کیے گئے ہیں، جبکہ گجرات کے لیے 500 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ ہماچل پردیش کو پہلے ہی امداد کی پہلی قسط مل چکی ہے اور اب دوسری قسط کی پیشگی رقم کے طور پر 193,95,00,000 روپے منظور کیے گئے ہیں، جبکہ اڈیشہ کے لیے 500 کروڑ روپے کی دوسری قسط منظور کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مہاراشٹر کے لیے پہلی قسط کی پیشگی رقم کے طور پر 500 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ عمر داخلہ کی وزارت نے کہا ہے کہ مانسون کی بارش کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد سے حکومت ریاستی سرکاروں کے ساتھ قریبی تال میل قائم رکھتے ہوئے سیلاب کی صورتحال پر لگاتار نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ سرکار نے جہاں کہیں بھی ضرورت پیش آئی ہر ممکن امداد فراہم کی ہے۔ اس میں قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی فورس، این ڈی آر ایف کی ٹیموں کو پہلے سے تعینات کرنا اور دفاع کی وزارت کی طرف سے لاجسٹکس مدد فراہم کرنا شامل ہے۔ دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
11: سکم میں ناتھولا پاس کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت آج صبح سے پھر شروع ہو گئی ہے۔ گزشتہ 6 سال سے زیادہ عرصے سے یہ معطل تھی۔ اس تجارت کا دوبارہ شروع ہونا بھارت اور چین کے درمیان باہمی رابطوں میں ایک مثبت علامت ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ بھارت اور چین دونوں ملکوں کے عہدیداروں نے آج صبح اس مقام پر ملاقات کی جو دونوں میں سے کسی کے بھی قبضے میں نہیں ہے۔ چین کی نمائندگی کامرس اور سرحدی تجارت کے محکموں کے نمائندوں سمیت تبت خود مختار خطے کے انتظامی سربراہ نے کی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
13: سرحد کے دونوں طرف تجارت کی بحالی بھارت اور چین کے درمیان باہمی رابطے کے سلسلے میں ایک مثبت قدم ہے۔ 1962 میں بھارت چین محاذ آرائی کے پیش نظر بند رہنے کے بعد 2006 میں سرحدی تجارت باضابطہ طور پر بحال کی گئی تھی اور 2020 میں کووڈ-19 وبا کے سبب معطل کیے جانے سے پہلے بلا رکاوٹ جاری رہی۔ یہ سرحدی تجارت پیر سے جمعرات تک انجام دی جا سکے گی اور بھارتی وقت کے مطابق صبح 7:30 بجے گیٹ کھولے جائیں گے اور ہر اندراج शुदा ताजिर को रोजाना की बुनियाद पर 2,00,000 रुपए की तजारती सरगर्मियां अंजाम देने की इजाज़त होगी। अहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की है कि मंजूर शुदा दर आमदाती और बर आमदाती अशिया की मौजूदा फहरिस्त और कामकाज के मेयारी जाब्तों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
11: सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रसाद नड्डा ने पोस्ट ग्रेजुएट 2026 के लिए कौमी एहलियत दाखिला इम्तिहान की तैयारियों का आज जायजा लिया ताकि बिला रुकावट महफूज शफाफ और टेक्नोलॉजी पर मबनी इम्तिहान को यकीनी बनाया जा सके। ये इम्तिहान इस माह की 30 तारीख को होगा। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने तिब्बी साइंस से मुतालिक इम्तिहानात के कौमी बोर्ड टेक्नोलॉजी शराकत दारों और उन दीगर मुतालिका फरीकों की तैयारियों का जायजा लिया जो इम्तिहान के इनेकाद से मुंसलिक हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उड़ीसा में महानदी और उसकी मुआविन नदियों में तोगयानी के साथ सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खोरदा अजला के नशेबी इलाकों को एक बार फिर खतरा लाहक हो गया है। 10 नशेबी अजला मुसलसल हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि हीराकुंड बांध से 22 गेट के जरिए सैलाब का पानी छोड़ा जा रहा है। 8,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं जबकि 2,69,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया है। केरलम में लगातार बारिश होने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकयात पेश आए हैं और कई इलाकों में पानी भर गया है। कुटायम, उडुकी और मलापुरम जिलों से आज बारिश से वाबस्ता 6 अमवात की इत्तला मिली है जबकि 6 अफराद अब भी लापता हैं। जम्मू और श्रीनगर के दरमियान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH-44 के बंद होने के पेश नज़र रेलवे ने फंसे हुए मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने और रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ से निमटने के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के दरमियान एक खसूसी रेलगाड़ी चलाने का फैसला किया है। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने खबर दी है कि शाहरा बंद होने के बाद श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र कमर्शियल कंट्रोल जम्मू तवी की दरख्वास्त के बाद ये फैसला किया गया है। मरकजी सरकार ने टैक्स मुंतकली की एक इजाफी किस्त के तौर पर रियासती सरकारों के लिए 1,09,019 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं जो 10 अगस्त के लिए तयशुदा महाना मुंतकली के अलावा हैं। एक बयान में वजारत खजाना ने कहा है कि इस इजाफी किस्त का मकसद रियासतों को सरमाया अखराजात और तरक्याती अखराजात के अमल में तेजी लाने के लिए मजीद सहूलत फराहम करना है। वजारत की जानिब से मुख्तलिफ रियासतों के लिए जारी किए गए अलहदा अलहदा दादोशुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 19,208 करोड़ रुपए मौसूल हुए हैं जबकि बिहार को 10,845 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए मिले हैं। उधर मगरबी बंगाल को 7,866 करोड़ रुपए मौसूल हुए हैं जबकि महाराष्ट्र को 7,022 करोड़ रुपए मिले हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आगाज करेंगे। मुनशियात के खिलाफ 100 हफ्तों की मुल्कगीर जन भागीदारी मुहिम शुरू होने के मौके पर इसका आगाज हो रहा है। इस प्रोग्राम में 10,000 से ज्यादा मकामात से मुल्क भर के नौजवान हिस्सा लेंगे। मजकूरा मुहिम के तहत पूरे मुल्क में हर इतवार को हफ्तेवार सरगर्मियों का अहतमाम किया जाएगा ताकि बेदारी को फरोग देने और एक ऐसा मुआशरा बनाने में अवाम की शमूलियत की हौसला अफजाई की जा सके जहां मुनशियात की लानत ना हो। एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने आज फजाइया के नायब सरबराह की जिम्मेदारी संभाल ली है। इस मौके पर उन्होंने कौमी जंगी यादगार पर गुलदायरा नजर किया और मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सूरमाओं को खिराज अकीदत पेश किया। 16 जून 1990 को एक फाइटर पायलट के तौर पर फजाइया में शामिल हुए एयर मार्शल तेजपाल सिंह को 3,500 से ज्यादा घंटों की परवाज का तजुर्बा है। वो कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। एयर मार्शल तेजपाल सिंह भारतीय फजाइया में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। आज दिल्ली बीजेपी ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, आजाद रुकने पार्लियामेंट राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद और दीगर मुतालिका लोगों के खिलाफ कल पार्लियामेंट के अहाते में मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के सिलसिले में एक शिकायत दर्ज की है। नई दिल्ली की रुकने पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज की क्यादत में बीजेपी के वफद ने अपोजिशन लीडरान के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने का मुतालबा किया। ग्लासगो में दौलत मुश्तरक खेलों में तमगों की तादाद 30 होने के बाद भारत आज छठे मकाम पर पहुंच गया। भारत ने सोने के 8, चांदी के 15 और कांसे के 7 तमगे जीते हैं। भारतीय मुक्केबाजों जैस्मीन लंबोरिया और प्रीति पवार ने अपने अपने फाइनल मुकाबले में सोने के तमगे जीते। प्रीति ने खवातीन के 54 किलोग्राम के जुमरे में कैनेडा की स्कारलेट डेलगाडो को 5-0 से हराकर खिताब जीता। मौजूदा आलमी चैंपियन जैस्मीन ने खवातीन के 57 किलोग्राम के जुमरे में शिमाली आयरलैंड की मिशेला वाल्श को 5-0 से शिकस्त दी। पैरा एथलेटिक्स में मर्दों के शॉटपुट F57 मुकाबले में सुमन राणा ने सोने का और शुभम जोयाल ने चांदी का तमगा जीता। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मैसूर में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर का इफ्तिताह किया और साइंस टेक्नोलॉजी और खेलों के शोबे में पेशरफ्त का सिहरा भारतीय नौजवानों को दिया। वजीर आजम ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। मरकज ने सैलाब से मुतासर रियासतों के लिए इमदाद के तौर पर 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेशगी रकम जारी करने की मंजूरी दी है। सिक्किम में नाथुला पास के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू हो गई है। और दौलत मुश्तरक खेलों में भारतीय मुक्केबाजों जैस्मीन लंबोरिया और प्रीति पवार ने सोने के तमगे जीते हैं, जबकि मर्दों के शॉटपुट F57 में पैरा एथलीट सुमन राणा ने भी सोने का तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। ये पत्रिका शब्दों की उस यात्रा का हिस्सा है जो हमारी भाषाओं, हमारे साहित्यकारों और हमारी राष्ट्रीय चेतना को आपस में जोड़ती चलती है। आज के अंक में हम काव्य से लेकर गद्य तक, वीरता से लेकर भाषा एकता तक और वर्तमान से लेकर स्मृतियों तक एक संश्लिष्ट यात्रा करेंगे। करगिल की चोटियां आज भी उस अदम्य साहस की गवाह हैं, जब हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की थी। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज के संपादकीय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक काव्यांजलि, काव्य अनुगूंज उस विजय की। विजय केवल युद्ध भूमि में प्राप्त होने वाला एक परिणाम नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, साहस और त्याग का अमर घोष है। करगिल विजय दिवस हमें उन वीर सैनिकों की अदम्य वीरता का स्मरण कराता है जिन्होंने दुर्गम हिम शिखरों पर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अस्मिता की रक्षा की। युद्ध के इतिहास में तलवारें और बंदूकें विजय का मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु विजय को अमरत्व शब्द देते हैं। यही कारण है कि भारतीय काव्यधारा में वीर रस केवल उत्साह का संचार नहीं करता, बल्कि राष्ट्र चेतना को जागृत भी करता है। कवियों ने समय समय पर अपनी लेखनी से उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की। ये सभी ज्ञात अज्ञात सैनिकों के प्रति राष्ट्र की सामूहिक कृतज्ञता का स्वर है जो हर मौसम, हर परिस्थिति और हर चुनौती के बीच हमारी सुरक्षा के प्रहरी बने खड़े हैं। देश के सैनिकों से कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, फतह तिरंग आज क्यों न फिर गड़े, जगत प्रसिद्ध शूर सिद्ध तुम सभी, जवान हिंद के अडिग रहो डटे, न जब तलक निशान शत्रु का हटे, हजार शीश एक थौर पर कटे, जमीन रक्त रुंड मुंड से पटे, तजो न सूचिकाग्र भूमि भाग भी। युद्धरत सीमाओं पर सैनिकों को विदा करने का भाव दर्ज करते हुए कवि आमिर हमजा ने लिखा है, चौतरफा गूंजते सायरन के बीच जंग में जाते एक हथियार बंद सिपाही को सरेराह गले लगाने वाली स्त्री, जो उसकी माँ हो सकती है या कि बहन, प्रेमिका हो सकती है या कि दोस्त या कि फिर पत्नी, उससे बेहतर भला कौन जान सकता है कि हर अलविदा एक यात्रा की समाप्ति है। इसी तरह एक और बेहद भावपूर्ण कविता की इन पंक्तियों में, जिनका अनुवाद किया है रमेश कौशिक ने, कवि अलेक्जेंडर प्रोकोफ्येव कहते हैं, किंतु सैनिक क्रांतिकारी चीखता है, मर नहीं सकता कभी मैं नहीं अब तक मरा हूँ, मैं मरूंगा भी नहीं। तभी थर्राहट हुई, दीवार जो घेरे हुए थी उसमें दरारें पड़ गईं और सैनिक के हृदय से सेब तरु की शाख फूटी, फिर बड़ी हो वो खुशी से झूमती है मकबरे पर और गुलाबी श्वेत फल उस पर गिराती है, सैनिक के हृदय की शिरा अब तक धड़कती है। इसी क्रम में एक सशक्त भोजपुरी गीतकार और कवि राम जियावन दास बावला ने लिखा, करगिल न कुल कश्मीर छोड़ भागू, बापू का हमरे जगीर छोड़ भागू, भाई समझ के जुगवली बहुत हम, आगी लगवले मड़ैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में, कसके कमरिया अखाड़े जवनवा, उमड़ल बा भीर जस बरसे सवनवा, के बावला मति मरले बा तोहरी, डाकेले ताती तलैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में। और हमारे समय के बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वीर सैनिकों की प्रशस्ति में कहा, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक
धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्र के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छांह सभी को देते हैं, वीर प्रसूमा की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान।

0: वीरता की अनुगूंज हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र केवल भूमि से नहीं बल्कि उसकी विविधता में एकता से बनता है, और इस एकता का सबसे सुंदर माध्यम है भाषा। भारत जैसे बहुभाषी देश में हर भाषा, हर बोली एक सेतु का काम करती है, जो हमें एक दूसरे से और राष्ट्र की सामूहिक चेतना से जोड़ती है। इसी विचार पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति, भाषाओं का सेतु, राष्ट्र का स्वर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोंकणी मराठी साहित्यकार श्री दामोदर मावजो इस विषय पर कहते हैं,
1: भाषा एवं साहित्य अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। कोई भी भाषा हो, हमारे विविधताओं से भरे भारत देश की ज्यादातर भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखकर भाषा वृद्धि तथा समाज समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखना चाहिए। भाषा राष्ट्रीय एकात्मता सबल और संपन्न हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है।
0: स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी पणजी। इसी विचार बिंदु को आगे बढ़ा रहे हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र।
2: भाषाएं संवाद के लिए एक उपयोगी टूल्स के रूप में काम करती हैं, लेकिन केवल टूल्स ही नहीं होती, इनके साथ संस्कृति, समाज, लोगों के अपने जुड़ाव, लोगों की अपनी परंपराएं, लोगों के अपना अस्तित्व, सब कुछ का जुड़ा हुआ होता है। इसलिए भाषाएं जो जोड़ती हैं, जुड़िया काम करती हैं, वो केवल भाषाई आधार पर ही नहीं करती हैं, बल्कि वो सांस्कृतिक, सामाजिक सभी आधारों पर लोगों को जोड़ती हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापकता थी, जो उसे विस्तार मिला, जो उसे प्रचार प्रसार मिला, उस प्रचार प्रसार में भाषा की भूमिका सबसे अधिक केंद्रीय और अग्रणी भूमिका है। इस रूप में हम भाषा को देखते हैं और बस एक कह सकते हैं कि भारत में जो भाषाई वैविध्य है, इस भाषाई वैविध्य के साथ भी, लेकिन भारत में भाषाई वैविध्य जरूर है, लेकिन भारत में सांस्कृतिक एकता, जो जुड़ने के तार हैं आपस में लोगों की, वह एक है। हम सभी भारतीय हैं, इसलिए भाषाएं अलग होते होते भी हमारे भाव एक हैं, और इस भाव की जो एकता है वह हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में बड़े महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। इसलिए पहली बार जब अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, मुगलों की सत्ता को विस्थापित करते हुए, तब हम देखते हैं कि उस समय जो लेखन है, उस लेखन का तरीका अलग है, लेकिन जब वो यहाँ के लोगों पर शासन करना और निरंकुशता और यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू करते हैं, तब उनकी नियति और उनका कार्य पद्धति बदल जाती है। दोनों में जो पत्रकारिता है, जो भाषा है, जो हमारी भूमिकाएं हैं, वो अलग अलग ढंग से दिखाई देती है, इसकी ताकत भी है। और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम बंगला की बात करें, चाहे मराठी की बात करें, चाहे गुजराती की बात करें, तमिल की बात करें, इन सभी भाषाओं में स्वाधीनता आंदोलन के लिए स्वर उठे और मजबूती के साथ खड़े हुए और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही व्यवस्था के निरंकुश, व्यवस्था के व्यभिचारी, व्यवस्था के कदाचरण के विरुद्ध खड़ी हुई पत्रकारिता के रूप में भारत में पत्रकारिता विकसित हुई है। हम पहले ही पत्र से अगर देखें तो हम देखते हैं कि वह सत्ता के जो गलत मंशा है उसके खिलाफ पत्रकारिता खड़ी होती है। वह पत्रकारिता चाहे हिंदी की हो, चाहे अन्य भाषाओं की हो, हिंदी उसमें एक प्रमुख भाषा थी, हिंदी एक बड़ी भाषा थी, क्योंकि बोलने वाले समुदाय का व्यापकत्व तो ज्यादा था। तो देखें तो हिंदी में तमाम पत्र पत्रिकाएं थीं, जिसमें प्रताप एक महत्वपूर्ण पत्र था, जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित अभ्युदय, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित हिंदी का कर्मवीर, बंगला में हम देखें तो अमृत बाजार पत्रिका किशोर कुमार घोष ने संपादित की, मराठी में तो पत्रकारों की और पत्रिकाओं की सीरीज है पूरी, अगर संक्षेप में चर्चा करें तो केसरी जो प्रतिनिधि पत्र है मराठी का, बाल गंगाधर तिलक ने उसको संपादित किया, स्वयं महात्मा गांधी ने गुजराती में नवजीवन नाम का पत्र निकाला, स्वदेश मित्रन तमिल में सुब्रमण्य अय्यर ने निकाला, उर्दू में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अल हिलाल नाम का पत्र निकाला। और इन सभी पत्र पत्रिकाओं को आप लेकर के देखें, इन पत्र पत्रिकाओं का एक ही मंशा थी, वह मनसा थी कि भारत में स्वाधीनता की स्थापना करना, और यह स्वाधीनता सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह स्वाधीनता स्वदेशी स्वदेश के प्रति एक प्रेम के जागरण की स्वाधीनता थी, जिसमें इन पत्रिकाओं ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, लोगों में जनमत तैयार किया, स्वदेशी के प्रति लोगों की में रुचि जागृत की, और इन सब के बाधक तत्व जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने का काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार चल रहा है, इसकी सूचना इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। पत्र पत्रिकाएं वे साधन थे जिनके माध्यम से हम पूरे देश को एक साथ जोड़ पा रहे थे। आप देखेंगे कि यह समय था, यह दौर था, जब अखबारों की एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पे इकट्ठा हो जाते थे। यह अखबारों के प्रति, पत्र पत्रिकाओं के प्रति लोगों का विश्वास था। लोगों को लग रहा था कि पत्र पत्रिकाएं, ये अखबार हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी स्वाधीनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास जीतकर पत्र पत्रिकाएं इस देश को एकता में बांधने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। हम भारतीय मेधा को, भारतीय जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, इसको हम किस तरह से पीछे के समय से लेकर के बाहर आए हैं, और हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, और हम पीछे किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन में हम इनके माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके थे, इस सबकी पूरी मुकम्मल जानकारी अनेक आयामों, अनेक विषयों, अनेक संदर्भों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर दिया जा रहा है। जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो अंग्रेजों का एक माइंडसेट था, उस तरह के जो माइंडसेट को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। वह उद्देश्य था भारत पे अधिकतम समय तक शासन करना, यहाँ की संपदा को लूटना, यहाँ के संसाधनों को लूटना, अपने यहाँ ले जाना, और हमारे संसाधनों का जितना दोहन इस समुदाय ने किया, जिसे हम ब्रिटिश नाम से कहते हैं, वह लोगों को जानना चाहिए, और वह जानने का माध्यम ही है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय की पत्रकारिता की चर्चा करें, उस समय के इतिहास की चर्चा करें, उस समय के ज्ञान संपदा की चर्चा करें, उस समय हमारी स्कूलिंग सिस्टम की चर्चा करें, उस समय की हमारी सारी व्यवस्था, जो समाज की व्यवस्था थी, उसकी चर्चा करें, न्याय प्रक्रिया की चर्चा करें, तो लोगों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि जो 200 वर्ष बीता हमारा अंग्रेजी शासनकाल में, वो किस प्रकार का बीता। और इसीलिए स्वतंत्रता आंदोलन भारत की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकता थी, जो एक समय में खड़ी हुई, और उसके आंदोलन के जरिए ही हम इस बड़े अपने अवरोधक तत्व को, जो हमारे विकास में, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में जो बाधक था, उसे हम हटा सके। इसलिए तमाम तरह की जानकारियां दी जानी चाहिए और अनेक प्रकार से दी भी जा रही हैं। भाषा को लेकर के हमारा काम, जो निदेशालय का काम है हमारा, उसका जो मैंडेट है वो प्रोपगेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज है। हम उसके माध्यम से, हम भाषाई परिवारों की संकल्पना के माध्यम से, हम भाषाई एकता के माध्यम से, हम सांस्कृतिक संदर्भों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं, और लोगों के बीच जाकर के उसकी चर्चा करते हैं। हम तमाम प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित करते हैं, और विशेष करके जो हिंदी क्षेत्र से इतर क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में, उन क्षेत्र के लोगों को हम भारत के साथ उनके कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हजारों हजार वर्षों से रहे हैं, इसे एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत में एकता, एकात्मकता और एकीकरण का भाव हम प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति के बीच जागृत कर सकें।
0: भाषाओं की इस विविधता में जब राष्ट्र प्रेम शब्दों में ढलता है तो वो कालजयी बन जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति भारत भारती ऐसी ही एक रचना है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित रखी है। थोड़े शब्दों में गहन भाव समेटे इस कृति पर आधारित है हमारी अगली प्रस्तुति, लघु रूपक अत्यल्प में संपूर्ण।
3: किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक संचेतना का पुनरुत्थान राजनीतिक मंचों से नहीं, बल्कि किसी निष्ठावान साधक की लेखनी से निश्रित होता है। सन 1912 का वो दौर जब औपनिवेशिक सत्ता के दंश से संपूर्ण भारतवर्ष की चेतना सुप्त पड़ी थी, तब झांसी के चिरगांव से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। एक ऐसी अमर कृति जिसने बहुत कम शब्दों में यानी अत्यल्प में पूरे भारत के गौरव, उसकी चेतना और उज्जवल भविष्य के सपनों को समेट लिया। भारत भारती, अत्यल्प में संपूर्ण, और इसे अपनी लेखनी से रचा था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने। तीन खंडों की इस कृति में मैथिली शरण गुप्त ने भारतवर्ष के त्रिकाल का संपूर्ण दर्शन उखेर दिया। भारत भारती का पहला खंड था अतीत खंड। वो पन्ने केवल कविता नहीं थे, वो सोई हुई कौम को जगाने के लिए ऋषियों की वाणी की तरह गूंजे थे।
0: उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी, हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है, अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला।
3: मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्र प्रेम केवल अतीत के यशोगान तक सीमित रहने वाला भावुकता का संजाल नहीं था। भारत भारती की वास्तविक अग्नि उसके वर्तमान खंड में धधक रही थी।
0: तुम सभ्य हो मार्केट जिनका सात सागर पार है, पर ग्राम की वो हाट ही उनका बड़ा बाजार है। तुम हो विदेशों से मंगाते माल लाखों का यहाँ, पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। तुम दार्शनिक हो ईश का अस्तित्व सत्य न मानते, है भूत

0: एक समय पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जैसा हो गया था और आम जन के बीच में बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक रही थी वह। ये हिंदी की पहली कृति थी जिसने राष्ट्रीयता के प्रसार प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
1: प्रभात फेरियों से लेकर स्वाधीनता संग्राम की गुप्त बैठकों तक भारत भारती की पंक्तियां आजादी के दीवानों का पाठ्य बन गई। इसी अप्रतिम जनचेतना और अनूठी राष्ट्र सेवा को देखते हुए सन 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के अमर समादर से अलंकृत किया।
2: हे नव युवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में, देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। सुख शांतिमय सरकार का शासन समय है अब यहाँ, सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा फूलती फिर शूल है।
1: भारत भारती का तीसरा और अंतिम खंड, भविष्यत खंड, मात्र एक राजनीतिक आजादी की मांग नहीं था, बल्कि वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, ज्ञान विज्ञान की उन्नति और विश्व बंधुत्व का संकल्प था। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजरानी शर्मा बताती हैं,
3: हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें आदर्श की ओर उन्मुख किया। भारत भारती काव्य उन्होंने रचा और किस प्रकार से जीवन की संचेतना को उभारता है, देशभक्ति जगाता है, हमें हमारे अतीत के गौरव से मिलवाता है, वर्तमान का स्वरूप दिखाता है और भविष्य की राह बताता है।
1: भौतिक साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, शासकों के आदेश पन्नों में सिमट जाते हैं, किंतु राष्ट्र चेतना के प्रांगण में रोपे गए शब्द अजर अमर रहते हैं। भारत भारती केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, ये भारतीय संविधान संग्राम की वैचारिक पीठिका है जिसने हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को अक्षुण रखा है। साहित्य मनीषी KBL पांडे कहते हैं,
4: भारत भारती को याद करना न केवल इसलिए जरूरी है कि वो समय की एक प्रमुख पुस्तक है, बल्कि इसलिए कि स्वातंत्र्य चेतना की प्रेरणा के रूप में उसका मुख्य स्थान है। हम जब अपने त्रासद वर्तमान से मुक्ति कामना के लिए संघर्ष करते हैं तो हमारे साथ हमारा वर्तमान ही नहीं होता, बल्कि हमारा प्रेरक और गर्वीला अतीत भी होता है और नए सूर्योदय के भविष्य का प्रकल्प भी होता है। जब हम समय के इन तीनों आयामों के बोध से संपन्न होते हैं तो रचना की समग्रता के विचार में होते हैं, यानी जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी पूरी दृष्टि होती है काल के तीनों आयामों के साथ।
1: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का ये कालजयी शब्द शिल्प आज भी हमें यही स्मरण कराता है कि स्वदेश प्रेम ही हर राष्ट्र का शाश्वत प्राण तत्व है।
5: आलेख और वाचन प्रांजल, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी ग्वालियर। राष्ट्रकवि की कविता के स्वर अभी थमे भी नहीं कि हमें याद आते हैं एक और कालजयी रचनाकार प्रेमचंद, जिनके कलम ने केवल कहानियां ही नहीं लिखी, आजादी के सपनों को भी शब्द दिए। उनकी महान कृतियों में बसा वतन का दर्द और आजादी की आकांक्षा आज भी उतनी ही जीवंत है। उदाहरण के लिए सोजे वतन, जिसकी रचना प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से की थी। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, कलम का दम और सोजे वतन।
6: तारीख अक्सर युद्ध भूमि की चीखों, तोपों की गूंज और साम्राज्यों के ढहने का हिसाब रखता है, लेकिन किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक इबारत किसी निष्ठावान साहित्यकार की मेज पर रखी स्याही से निस्तृत होती है।

0: सन 1908 का वो दौर याद कीजिए, जब आजादी केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा की आकुलता बन चुकी थी। ठीक उसी दौर में हमीरपुर की एक शांत मेज पर जन्म होता है सोजे वतन का, रचनाकार नवाब राय। यहां सोज केवल एक शब्द नहीं बल्कि पराधीनता के दंश से पीड़ित किसी स्वाभिमानी हृदय की वो अंतर्वेदना है जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी। इसमें शामिल अमर रचनाएं, दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, केवल कहानियां नहीं थी बल्कि पराधीन भारत की आत्मा की आकुलता थी। संग्रह की कहानी यही मेरा वतन है में प्रेमचंद ने अपनी मातृभूमि के प्रति जो भाव उकेरे थे वे किसी श्रेष्ठ कविता से कम नहीं थे।
1: साहित्य मनीषी डॉक्टर मनीषा कहती हैं,
2: जब वे सोजे वतन में दास्तानों की शैली में दुनिया का सबसे अनमोल रतन और शेख मखमूर कहानी सुनाते हैं तो उनका लक्ष्य अपने समय की सबसे बड़ी सच्चाई से ही भेंट कराना था, जिसे हुब्बे वतन कहते हैं। प्रेमचंद के समक्ष कहानी की शैली के लिए कोई दुविधा या संकट की स्थिति कभी नहीं रही। इस संकटहीनता को समझने के लिए सोजे वतन एक सुंदर नमूना है, क्योंकि उसमें दास्तानों की शैली से भिन्न कथा रूप की इश्क दुनिया और हुब्बे वतन भी सम्मिलित है। इन सबसे अलग कहानी के कहन का एक रूप यही मेरा वतन है और सिले मातम दिखाई पड़ता है। ये दोनों उत्तम पुरुष शैली की कहानियां हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के आरंभ, विस्तार, अंत, घटनाओं के चुनाव, भाषा शैली आदि के विषय में बहुत सचेत थे। वे किसी परफेक्शनिस्ट से कम नहीं थे।
0: 20वीं सदी के प्रथम दशक में जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम अपनी राजनीतिक चेतना के नए क्षितिज तलाश रहा था, तब इस संग्रह ने कथा साहित्य को क्रांति का एक सशक्त माध्यम बना दिया। संग्रह की 5वीं कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम में प्रेमचंद ने ये स्थापित किया कि व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ऊंचा स्थान राष्ट्र प्रेम का है। निरंकुश साम्राज्यवादी सत्ताएं शास्त्रों से अधिक विचारों की शक्ति से भयभीत होती है। हमीरपुर के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर ने जब सोजे वतन के पृष्ठ पलटे तो उसे प्रत्येक कथा में विद्रोह की गूंज सुनाई दी। इस कृति की 500 प्रतियों को जब्त करके सरेआम अग्नि के समर्पित कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत को ये भ्रम था कि उन्होंने कागज जलाकर क्रांति की ज्वाला को शांत कर दिया, किंतु वे भूल गए थे कि विचारों की राख से ही नए इतिहास का प्रादुर्भाव होता है।
1: साहित्य मर्मज्ञ मजरुल वासे कहते हैं,
3: ये कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार की बर्दाश्त से बाहर था। जिला कलेक्टर हमीरपुर उत्तर प्रदेश ने इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां अपने सामने जलवा कर नष्ट करवा दी और लेखक नवाब राय, जो उस समय उप विद्यालय निरीक्षक थे, को सरकारी कर्मचारी होने के कारण और ये चेतावनी देकर क्षमा कर दिया कि आगे से वे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई साहित्य नहीं लिखेंगे। दो विशेष परिवर्तन हुए। प्रथम तो ये कि नवाब राय का नाम बदल गया और वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। ये नाम उन्हें अखबार जमाना के संपादक दयाराम निगम ने दिया और दूसरा ये कि अब उनकी भाषा उर्दू से हिंदी हो गई।
0: आज जब हम स्वतंत्र भारत की अक्षुण हवाओं में सांस ले रहे हैं तो हमें उस समर्थ लेखनी को भी नमन करना होगा जिसने बंधनों के कालखंड में स्वाधीनता के दीप प्रज्वलित किए थे। सोजे वतन केवल एक पुस्तक नहीं, हमारी आजादी की साहित्यिक हुंकार थी।
1: वाचन आनंद श्रीवास्तव, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी आगरा। साहित्य की ये यात्रा उन सबके बिना अधूरी है जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जिनकी रचनाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, कथाकार भीष्म साहनी, उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी, जंग के हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई, कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, कन्नड़ साहित्य के ज्ञानपीठ विजेता विनायक कृष्ण गोकक, असमिया साहित्यकार सैयद अब्दुल मलिक और कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, भारतीय साहित्य में इन विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चाय भाषा केंद्र है, FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, समय है गजल का, तो आइए सुनते हैं पहला गजल। जगजीत सिंह की आवाज में

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इसके साथ ही श्रोता, हमारा आज का गजलों का कार्यक्रम महफिल अब ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे सुरों के रंग।

सुरों के रंग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। पहला गाना है फिल्म कभी कभी से, गायक कलाकार है मुकेश।

अभी आपने सुना फिल्म बरसात का ये गाना, आवाज़ें थी लता मंगेशकर की। और आइए सुनते हैं मेरे हमसफर में लता मंगेशकर और मुकेश को।

अभी आपने सुना फिल्म आवारा का ये गाना, आवाजें थी लता मंगेशकर की, और आई सुनते फिल्म आई मिलन की बेला, इस फिल्म का गाना आवाजें लता मंगेशकर की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

अभी आपने सुना फिल्म बहू बेगम का ये गाना, आवाज़ें थी लता मंगेशकर की। और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म आवारा का ये नगमा, आवाज़ें लता मंगेशकर की है।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं, और आज का सुरों के रंग कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि
1: हजार हो चुकी है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।